ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

संजय सारे करते रहे सदा राम मेरा आधार सदना आधार मेरा दुखा सब भगवानिया हर शाम सुभरिया बसिया जनेचा सब भगवानिया सदा कुर्बान माता गुरबिन हो जिस दिया ये वडिया कहे नाम सुनो सब शब्द करो मेरे आरो सच्चा नाम मेरा आधार मते पंत सत्कार सत्कार सत्कार

आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक माफ करनी सचे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ा प्रसाद भेटा किया गया है इन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दारों करों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनी आप जी दे हाजूर कड़ा प्रसादी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत ला

चंदन बड़न समाप्त करण कारण प्रभ सोई मना कर दिन जागियो जन्म

गुर रामदास राम शरणाई, गुर रामदास राम शरणाई।

सम्राट गुरु से हाथ धरे हो।

Ponedeljkove valjda bacim ja. Ne nosi dohranu.

Allah, who's in my head? Allah, who's in my head?

Yeah.

I love you.

प्रोग्राम करण साहब जन जी मिठके आवाज में कलाम गुजरा ये आकाशवाणी जी सिंधी सरस आए हिंदर पेश है तबसरो हाउसिंग ए अर्बन अफेयर्स के वजीर श्री मनोहर लाल जे सरबराह तहत भारतीय मेड़ ग्रुप वी एनर्जी अबेंडेंस वजरात कर्जानी में हिस्सो वरतो जेका अमेरिका में थी 14 का वी 16 सेप्टेम्बर 2026 दरमियान यह कर्जानी थी ग्रुप वी सरबराह दौरान मेड़ घणनि बहसन में हिस्सो वरतो तंहिंमें टे ख़ासि आहे पाणी सुरक्षा ऐं पहुचंदड़ ॿियो मौज़ू हो रेगुलेटरी एफिशंसी टियों क्रिटिकल मिनरल्स ऐं रिसेलेंट सप्लाई चेन्स ॻाल्हियुनि दौरान वज़ीर ज़ोर ॾींदे चयो त हिकु सलामत पहुच जे अंदरि ऐं भरोसेमंद तवानाई वधाइण लाइ तमामु घणी लाज़मी आहे ख़ासि करे उभरंदड़ मुल्कनि जे लाइ हुन ज़ोर ॾींदे चयो त इन ॾिस में आलमी तावन ऐं कॉम्प्लीमेंट्रीज़ मुल्कनि खे अॻिते वधण लाइ हथी ॾियणु घुर्जे होड़ा मुल्कनि जे अलॻि अलॻि हालतुनि खे ऐं तरक़ियाती अवलतुनि खे पिण इज़त ॾियणु घुर्जे वज़ीर श्री लाल रोशनी अंत भारत हिकु लचकेदार मुस्तक़बिल लाइ तयार तवानाई ते आधारित सिस्टम तयार करे रहियो आहे जेको डिजिटल गैर मर्कज़ी ऐं ग्राहकनि ते आधारित आहे त भारत जो बिजली जे खेत्र में वाधारो तमामु घणो अहम रहियो आहे तंहिंमें बिजली जी पैदावार कोत 552 गीगावाट ताईं पहुची वई आहे तंहिंमां अध खां वधीक बिजली गैर मैदानी ॿारण वसीलनि मां हासिल कई पई वञे हुन वधीक रोशनी आंदो त भारत अॻु में NDC यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन जा मक़सद मुक़रर वक़्त खां अॻु में हासिल करे चुका आहिनि ऐं साल 2070 खां अॻु में नेट ज़ीरो मक़सद खे हासिल करे वठंदो वज़ीर ज़ोर ॾींदे चयो त घणाई सुधारा भारत पारां खया पिया वञनि त जीअं रेगुलेटरी एफिशंसी खे पुख़्तो बणायो वञे हिन खां अलावा चटाभेटी खे वधाए ॾिनो वञे सीरप ऐं तवानी सेक्टर में खेत्र में सीरप खे हिमथाए वञे हुन ॿुधायो त हिन ॾिस में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम हिन खां अलावा परिवेश पीएम गतिशक्ति कार्रवाई आंदियूं आहिनि जिन सां अगकथी ऐं बुनियादी ढांचे खे वाधारे खे मंज़ूर ॾियण जो सिस्टम सही थी वियो आहे क्रिटिकल मिनरल्स ते वज़ीर ज़ोर ॾींदे चयो त सुरक्षाजनक लचकेदार ऐं वसीअ सप्लाई चेन्स हुअणु लाज़मी आहे भारत जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन तंहिंमें वैल्यू चेन खां वठी करे रिसाइकलिंग ताईं खेत्र अची था वञनि ऐं ॾिस में हिन ग्रुप वीह खे रिसाइकलिंग रिकवरी ऐं डाइवर्सिफिकेशन जे लाइ सॾु ॾिनो ग्रुप वीह वॉटर यूस इनिशिएटिव खे पिण हिकु वॉलंटरी कार्रवाई करे आंदो पियो वञे तंहिंमें साइंस ते आधारित तमामु ई घटि ख़र्च जे अंदरि ऐं सभिनी जे पहुच अंदरि पाणी खे ॿीहर कतब आणण जी क़ौमी पॉलिसी तयारु कई वई आहे ऐं असां सहकार वधे थो हिन खां अलावा पाणी जे सुरक्षा ऐं रिसेलेंस में बहितरीन आदतुनि खे हथी ॾिनी पई वञे वज़रात गॾिजाणी जे साइडलाइन से वज़ीर अमरीकी तवानी खाते जे सेक्रेटरी श्री क्रिस राइट तंहिंखां अलावा अमरीकी घरू खाते जे सेक्रेटरी श्री दोब बर्गम तवानी ऐं कुदरती ज़खीरनि जे सेक्रेटरी हिन खां अलावा पार्लियामेंट सेक्रेटरी श्री कोरी हुगन सां गॾिजाणी कई ऐं घणनि बाहिमी फ़ाइदनि ते बहस बहस कयो तंहिंमें अची थो वञे रिसाइलेंट एनर्जी बुनियादी ढांचो सप्लाई चेन्स बिजली खेत्र में तब्दीली आणणु सुधाराइण वज़ीर ग्रुप वीह एनर्जी एबंडेंस वज़रात गॾिजाणी में शामिल थी करे आलमी एनर्जी डिस्कोर्स में भारत जे योगदान खे रोशनी आंदो ऐं ॿुधायो त भारत हिकु सलामत बरक़रार रहंदड़ पहुच में ईंदड़ ऐं सभिनी लाइ शुमार तवानी ते कोलबद आहे तव्हां तफ़सरो ॿुधी रहिया हुआ

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशा प्रोग्राम सॼो तोखे ख़बर कहिड़ी।

सुबह तो के खबर खड़ी सन ये प्रोग्राम खड़ी करे अवां जी के संबंध में एक दफो बेर का हाजिर थे हूं असने पड़े मुल्क में जेके कर्ज जी हालत है जेका माशी हालत है सड़ियों में बदतरीन पे थी वही तैसा बाबा सा सिंध एक्सप्रेस में एडिटोर शायद है जिनो टाइटल है पड़े कर्ज ए माशी पॉलिसी लेकिन मुल्क जी माशी मारन वट इकोनॉमी के बेहतर करने की का भी पॉलिसी को है जैसा मुल्क है पान से दारोमदार कर सके मुल्क में जडे भी इकोनॉमिकल क्राइसिस है तो सरकार आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ए चीन का कर्ज वी है पर कें भी मुल्क के ओदर के रकम से घो अरसो नो ला सकते पाकिस्तान पैं इकोनॉमी के आईएमएफ के डल कर्ज जरिए जी तीन खींचे रो है अज भी मुल्क में एक्सपोर्ट घट पर इम्पोर्ट है नतीजन पब्लिक के हैवी टैक्सिस डेनी थी पवन जैसे इकोनॉमी की हालत बदतर थी तो गवर्नमेंट आवाम से महंगाई जो बम किराई है नवा नवा टैक्स हणी संदस खीसे में पैसा कढ़ी माली खोट के पूरा कन्दी है इतने भी आवाम से सागीकार थी रही है बशूँ आवाम के पहुंच का बहर थी एक बिजली बो है पेट्रोल पेट्रोल के अगन में बिजली के अगन में लगी रहे तो मुल्क इकोनॉमी के बिजली

पेट्रोल जे अगन वसीले पियो हलाए। पाकिस्तान बि हिन वक़्ति जिन जिन मुल्कनि खां कर्ज़ वरितो आहे तिन में हिकु चीन आहे ऐं चीन वेझण में पाकिस्तान खे ॾिन कर्ज़ जी वापसी जी घुर कई। चीन पाकिस्तान खे 30 अरब युआन करंसी जो कार्ड ॾिनो आहे जंहिं लाइ पाकिस्तान मुदे जी एक्सटेंशन जी अपील कई आहे। हुन अमरीका खां 10 अरब डॉलर लाइ रिक्वेस्ट कई जंहिंजी पाण खे उमीद आहे। हैरानी जी ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान में जहिड़ी रीति सियासी तजुर्बा थींदा आहिनि ओड़ी रीति माशी तजुर्बा थींदा आहिनि। नतीजनि अवाम खे त को लाभ न मिलंदो आहे पर मार हमेशा अवाम ते ई पवंदी आहे ऐं हिन ॾिस में गवर्नमेंट तमामु घणी इनोवेटिव आहे त कहिड़े नमूने नवां नवां टैक्स आया वञनि। पाकिस्तान एक्सप्रेस में शायदि एडिटोरियल ॿुधी रहिया, टाइटल हो पर डे कर्ज़ ऐं माशी पॉलिसी।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा हिंगर असाजे प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी रहा है वरी असा मुलाकात थी सुभाने सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तेसी तीन इजाजत सदाई कर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुरूप में ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिन्दी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग बोरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के दो दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में 2026 से 2029 के दौरान स्वापक नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। प्रमुख उद्योग सूचकांक ICI में इस वर्ष अगस्त में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई में ये 5% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। इसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इनमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 34 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें 14 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिला प्रशासन में भी बदलाव किया गया है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक के मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारत ने एशियाई खेलों में अब तक 4 रजत और 2 कांस्य पदक समेत कुल 6 पदक जीते हैं। इससे पहले भारत ने कल निशानेबाजी में 3 पदक जीते, जबकि सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। Marking a new chapter in India cinema, President Draupadi Murmu will present the historic 72nd National Film Awards this evening at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. A report from our correspondent.
1: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत का, आकाशवाणी दिल्ली का यह इंटरप्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब वक्त हुआ है आपकी पसंद यानी कि आपकी फरमाइश का, और साथ में आपकी फरमाइश के साथ साथ मुझे याद आ रहा है कि गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और आपकी यही तो फरमाइश है कि आपके मनपसंद गीत हम लेकर आए। और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी इच्छा क्या है, हम क्या खोज रहे हैं? खुशी, आनंद हम सदियों से तलाश कर रहे हैं और ये अभी तक हमें नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? ये कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे अंदर खुद है और हमें इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है।

दोस्तों, हंसी सिर्फ हमारे चेहरे की खूबसूरती नहीं बढ़ाती बल्कि मन को भी हल्का करती है। जब हम खुल के हंसते हैं तो तनाव कम होता है और हमारे आसपास का माहौल भी खुशनुमा बन जाता है। तो इसीलिए हमेशा मुस्कुराती रहिए।

और दोस्तों इसीलिए जिंदगी को इन गंभीरता से लेने के लिए बातों के लिए छोड़ दीजिए। बच्चों की तरह खिलखिलाइए, दोस्तों के तहत हंसी, अपनी पसंद का संगीत सुनिए और उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।

है क्यों? बताइए क्यों है? क्योंकि आप मुस्कुराते नहीं, इसीलिए है। आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग अपनी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर के साथ। अब बात करते हैं कुछ मुस्कुराहट की। जब मुस्कुराहट की बात जब हो रही है तो मैं ये कहूंगी कि जब आप रास्ते में किसी अनजान इंसान से मिले, उसे देखकर हल्की से मुस्कान दीजिए। हो सकता है वो इंसान किसी परेशानी से गुजर रहा हो सकता है उसे कई दिनों से मुस्कुराया ही ना हो उसने, तो इसीलिए आपकी छोटी सी मुस्कुराहट शायद उसके उस दिन को खूबसूरत और भी ज्यादा बना दे

दोस्तों, कभी आपने सोचा मुस्कुराहट छोटी सी प्यारी सी अगर आपके चेहरे पर हो तो पूरी दुनिया बदल सकती है, क्योंकि इसके कुछ पैसे नहीं लगते। लेकिन हाँ, प्यार में लड़ाई झगड़े थोड़ी थोड़ी बातें ये तो सब होती ही रहती हैं। कभी हंसते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, तो इससे कुछ नहीं होता। लेकिन हंसी हंसी होती है, मुस्कुराहट मुस्कुराहट होती है। और कहते हैं ना कि हम जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियां तो ढूंढते रहते हैं, महंगे तोहफे, बड़ी सफलता, बहुत सारा पैसा, लेकिन कभी कभी छोटी सी खुशी सिर्फ एक मुस्कुराहट से आने से ही, यानी कि चेहरे पर अगर सजी हो तो फिर आपके सब गमों को दूर कर देती है।

बात तो ठीक है कि हंसाना और रुलाना तो चलता ही रहता है, लेकिन देखिए ना, एक छोटा सा काम कीजिए अगले कुछ समय के लिए, यानी कि मतलब मुस्कुराने से है। आपकी जिंदगी में कोई परेशानी भी हो, फिर भी मुस्कुराइए और अपने फोन को एक तरफ रखिए, गहरी सांस लीजिए और बस मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और मुस्कुराइए, क्योंकि पैसे से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन एक सच्ची मुस्कुराहट किसी के दिल तक मुफ्त में पहुंच जाती है। तो फिर देर किस बात की, बस मुस्कुरा दीजिए।

आप यूं ही सुनते रहिए हमें, खास तौर पर गीतों भरे कुर्बानी के साथ। और फिर कभी आगे मैं इसी खूबसूरत सी गीतों भरी कुर्बानी लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे यानी सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
3: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिन्दी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमृत के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ आकाशवाणी समाचार अहमदाबाद।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
4: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों

0: चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
3: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए पीएलआई योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉ जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
4: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के 4 देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमरीका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को यह बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
5: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
6: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
5: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की है।
7: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
5: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वर्जर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति, संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
8: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ों में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेशवासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। आज शाम अखड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
9: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव M-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान, न्यूजीलैंड में भारत में अगले 15 वर्ष में 20 अरब डॉलर निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है छत पर मुफ्त सोलर पैनल 1,56,000 तक की सब्सिडी, सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी ली है हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू प्रेजेंट 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स एट एकता नगर इन केवाड़िया दिस इवनिंग। Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat this evening. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The ceremony at Ekta Nagar brings together cinematic talent from across the country, embodying the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. The President will also honour the veteran actor Anant Nag with the Dada Saheb Phalke Award for 2024. A report.
11: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film.

0: sidelines of the UN General Assembly in New York last night and discussed regional and global issues. Mr. Jaishankar arrived in New York City on Sunday, leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. Mr. Jaishankar will address world leaders at the general debate from the UNGA podium on 26th of September. His engagements commenced with a meeting with French Foreign Minister Jean-Noël Barrot. In a social media post, Mr. Jaishankar said, "The regular meetings and telecons enable both countries to maintain the momentum of special global strategic partnership." He said that during the meeting, regional and global issues, specifically the Ukraine and Gulf crisis, were discussed. Both the leaders also exchanged views on multilateral issues, including the reform of UN Security Council. Britain has agreed to provide limited support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. Riyadh has requested the support after the Houthis, who control the most populous parts of Yemen, intensified their attacks on Saudi Arabia, a new front in the wider war that began with US and Israeli strikes on Iran in late February. For the new air-to-air refueling support, Britain will deploy one Voyager plane in the coming days. Britain and Saudi Arabia have been close military allies for decades, with Britain serving as one of the kingdom's largest arms suppliers. Earlier this year, Britain deployed its Sky Sabre air defense system to Saudi Arabia to help protect it from Iranian missile attacks during the US-Israeli conflict with Iran. In Bihar's Jamui district, police have detained three accused in connection with an incident involving the alleged molestation and indecent behavior with a minor girl student. We have a report.
1: Jamui Superintendent of Police Vishwajit Dayal said that an FIR has been registered under relevant sections of the Bharatiya Nyaya Sahita and the POKSO after a detailed investigation of the viral video. He said that a special investigation team constituted under the leadership of Sub-Divisional Police Officer Deepti Munale is conducting raids to arrest other absconding accused. He added that the action is also being taken to remove the uploaded video from the social media platforms.
2: के आधार पर तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। ये सभी जो है मरवा गांव है, यहीं पे जमुई थाना क्षेत्र में वहीं के लोग हैं।
1: स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड जमुई एमएलए शेषी सिंह हैज आल्सो कंडेम्ड द इंसिडेंट। शी सेड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन इन द मैटर।
3: जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं, उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
1: सविता पारीक, आकाशवाणी न्यूज, पटना।
0: करम फेस्टिवल, अ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन ऑफ झारखंड्स रिच ट्राइबल कल्चर, नेचर एंड द बॉन्ड बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट टुडे विद ट्रेडिशनल फर्वर एंड एंथुसियाज्म। स्पेशल कल्चरल एंड स्टेट लेवल प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस झारखंड टू मार्क द ऑस्पिशियस ओकेजन। हियर इज अ रिपोर्ट फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट।
4: Karam Festival, one of the most significant celebrations of Jharkhand's folk culture and nature worship, is being celebrated across the state today with great enthusiasm. Governor Santosh Kumar Gangwar attended the program on the eve of Karam Festival, organized in Bero Ranchi as the chief guest, and extended his greetings to the people of the state. He also delivered a message on nature conservation. Yesterday, a seminar cum cultural program was organized at Audrey House in Ranchi, where the entire premises came alive with Jharkhand's cultural spirit to the beats of drums, nagaras and mandar, accompanied by traditional Karam songs. A program was also organized yesterday evening at the Deekshant Mandap in Morabadi, where a tribal fashion show was the main attraction. Karam Festival is considered a symbol of crop protection, respect for nature and the enduring bond between brothers and sisters. On this occasion, sisters observe a Nirjala fast, praying for the well-being and long life of their brothers. Navish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: On to sports now. In women's cricket, India will face Sri Lanka in the gold medal clash at Asian Games Indus in Japan today. The match will begin at 10:30 a.m. IST. India sealed their spot in the final with a dominant 114-run victory over Bangladesh. Sri Lanka had secured their place in the title clash with a win over Pakistan. A deep depression over the West Central Bay of Bengal is likely to intensify further into a very deep depression during the next 24 hours and move west-northwestwards. The Alipur Met Office said the system is likely to cross the coast between Vishakhapatnam and Gopalpur later tonight or by Wednesday morning. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
5: Thank you, Saira.
0: The Hindu headlines, India-New Zealand FTA to come into effect on October 20. Hindustan Times headlines, Delhi court revives complaint against Sonia in voter list case, while the Pioneer says Sonia voter roll row probe revived. The Indian Express informs IIT Bombay removes professor named in student suicide from Dean post, while Hindustan Times says IIT Bombay suspends Dean as student stir rages. The Times of India notes grounds in writing a must during arrest even in UAPA, says Supreme Court. The newspaper also writes swept away elephant calf saved by fishermen, adding that the newborn elephant calf had nothing left above water but its trunk. And finally, the Pioneer says, keep faith, drop cruelty. Delhi urges temples to swap live jumbos for mechanical ones. And with that, it's back to you, Saira.
5: Thanks, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister Jay Shankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
6: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा. आदाब. खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर. पहले इस वक्त की खास खास खबरें. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया में एकता नगर के मकान पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक टास्क फोर्स के सरबराहों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे. वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर फ्रांस, इक्वेडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वज़राए खारजा के साथ बातचीत की है. बरतानिया ने ईरान की पुष्ट पनाही वाले हौसियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तेफाक कर लिया है. और खवातीन क्रिकेट में जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सुबह भारत सोने के तमगे के लिए श्रीलंका से मुकाबला करेगा. अब खबरें तफसील से. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी. ये अवार्ड देने का सिलसिला 1954 में शुरू हुआ था और ये अवार्ड्स सिनेमा में फीचर, गैर फीचर और कहानी समेत मुख्तलिफ जुमरों में फनकारी और तकनीकी महारत को तस्लीम करते हुए मुल्क के आला तरीन सिनेमा एजाज की नुमाइंदगी करते हैं. इत्तला-ओ नशरियात की वजारत की जानिब से एक बड़े पॉलिसी कदम के तौर पर अवार्ड दिए जाने की ये तकरीब कौमी राजधानी से बाहर किसी दीगर रियासत में हो रही है. सदर जमहूरिया मुमताज अदाकार अनंत नाग को 2024 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सरफराज करेंगी. मजीद तफसील हमारे नामा निगार से.
7: तारीखी एकता नगर में रोशनियों के साथ शानदार स्टेज सज चुका है क्योंकि केवड़िया पहली बार तारीखी 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है. भारतीय सिनेमा के इस अजीमशान जश्न के लिए मुल्क भर से नामवर अदाकारों, मारूफ फिल्मसाजों और तकनीकी माहिरीन ने तकरीब का पहुंचना शुरू कर दिया है. ये तकरीब साल 2024 की शानदार सिनेमाई कामयाबियों को सराहने के लिए मुनक़िद की जा रही है. फीचर फिल्मों के अहम ऐलानात में आर्टिकल 370 को बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि यामी गौतम ने इस फिल्म में अपने किरदार के लिए बेहतरीन अदाकारा अवार्ड जीता है. बेहतरीन अदाकार का एजाज ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरक तौर पर दिया गया है. राजकुमार वीरास्वामी ने अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड हासिल किया है, जबकि कल के 2898 एडी को बेहतरीन मकबूल फिल्म का अवार्ड मिला। रणदीप हुड्डा ने स्वतंत्रिया वीर सावरकर के लिए बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड जीता। रवि राय मुर्मू ने संथाली फिल्म अंगेन के लिए बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर गैर फीचर फिल्म का एजाज हासिल किया। एकता नगर से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट।

0: कहा कि बाकायदगी से मीटिंगों और टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों मुल्कों को खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी की रफ्तार बरकरार रखने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान इलाकाई और आलमी उमूर, खासतौर पर यूक्रेन और खलीज के बहरान पर तबादले ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात समेत कसीर रुखी मामलात पर भी बातचीत की। बरतानिया ने ईरान की पुष्पनाही वाले हौसियों के हमले से निपटने की खातिर सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तेफाक किया है। हौसी यमन के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों पर कंट्रोल रखते हैं। सऊदी अरब ने उनकी तरफ से हमलों में इजाफे के बाद बरतानिया से मदद तलब की थी। इस साल फरवरी में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के आगाज के बाद से जारी जंग के दौरान ये एक नई महाजराई है। आने वाले दिनों में बरतानिया फजा में ही लड़ाकू तैयारों को ईंधन फराहम करने की खातिर एक वॉयजर तैयारा तैनात करेगा। बरतानिया और सऊदी अरब दहाइयों से करीबी फौजी इत्तेहादी रहे हैं और बरतानिया सऊदी अरब को हथियार सप्लाई करने वाले बड़े मुल्कों में से एक है। बिहार के जमुई जिले में पुलिस ने एक नाबालिग तालिबा के साथ मुबैना छेड़छाड़ और नाशायस्ता बर्ताव के एक वाकये के सिलसिले में तीन मुलजिमों को हिरासत में लिया है। दीगर मफरूर मुलजिमों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने की कार्रवाई जारी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: जमुई के पुलिस सुपरिंटेंडेंट विश्वजीत दयाल ने बताया है कि वायरल वीडियो की तफसीली छानबीन के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की मुतालिका दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो को हटाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।
2: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो एसआईटी जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर तीन लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।
1: इधर बिहार के खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन अप्सरा ने इस वाकये की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि कमीशन की एक टीम बहुत जल्द मुतासरा लड़की से मुलाकात करके इस केस के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेगी।
3: पुलिस प्रशासन सभी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने त्वरित गिरफ्तारी की है, और भी गिरफ्तारी हो जाएगी और इस तरीके से जो भी समाज में गलत संदेश देने का काम करेंगे वो दंडित होंगे।
1: खेलों के महकमे के वजीर और जमुई की मेंबर असेंबली श्रेयासी सिंह ने भी इस वाकये की मजम्मत की है और कहा है कि इंतजामिया इस मामले में फौरी कार्रवाई कर रही है।
4: जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करे। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट भी हो और ये चाहती भी हो कि आगे भी इस गति में कोई कमी न आए और इसी तरह से कार्रवाई हो।
1: पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: झारखंड में करम त्यौहार आज रिवायती जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार पर झारखंड की कबायली सकाफत और फितरत का जश्न मनाया जाता है और भाई बहन के रिश्ते को याद किया जाता है। इस मौके पर झारखंड में खसूसी सकाफती और रियासती सतह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: करम त्यौहार आज रियासत भर में पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार झारखंड की लोक सकाफत का जश्न होता है और इस त्यौहार पर फितरत की पूजा की जाती है। रियासत के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने करम त्यौहार के मौके पर रांची के बेरो में एक प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की और रियासत के लोगों को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: जापान में जारी एशियाई खेलों में खवातीन क्रिकेट में भारत सोने के तमगे के लिए फाइनल में श्रीलंका से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। भारतीय खवातीन की टीम बांग्लादेश को 114 रन से करारी शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची थी, जबकि श्रीलंका ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था। भारत ने कल मुख्तलिफ जुमरों में चांदी के 4 और कांसे के 2 तमगों समेत 6 तमगे जीते। मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल इन्फरादी मुकाबले में हिमांशु ढिल्लों ने चांदी का तमगा जीता, जबकि रुद्रांश पाटिल को कांसे का तमगा मिला। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
6: शुक्रिया कॉनन। قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کی انشاء سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پرتاب نے تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل کے اس بیان کو انشاء سرخی بنایا ہے.

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आज आपने सुना विदुषी उमा गर्ग का गाया राग बैरागी। तबले पर संगत दी थी दुर्जय भौमिक ने, हारमोनियम पर थी प्रमिता मुखर्जी और सारंगी पर एहसान अली। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों आपको बताते हैं 10:10 पे आप सुन पाएंगे अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश और आपकी पसंद। इसमें आप हमें मैसेज भेज सकते हैं और आपकी पसंद के गीत हम आपको सुनवाएंगे। और अब वक्त हुआ है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
2: अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 27 अगस्त 2026 को लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत भारतीय मानक समय को देश भर के सभी कानूनी, प्रशासनिक और कमर्शियल कामों के लिए एकमात्र आधिकारिक टाइम रेफरेंस बना दिया गया है। इस वन नेशन वन टाइम के मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें किस किस तरह के क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं, इसके लिए जो तकनीकी और फैसिलिटी कार्यान्वयन किस तरह के किए जाएंगे, इस सब को लेकर के विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं CSIR के नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान, वहाँ की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पूनम अरोड़ा। पूनम अरोड़ा जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले ये जो अभी अधिसूचना जारी की गई है समय को लेकर के, एक देश एक समय, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए।
3: जैसा कि आपने कहा कि हम भारत का माप विज्ञान केंद्र हैं, सो CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, टाइम भी उनमें से एक है। तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से, 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी हम एक भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है, जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं। तो कुछ नैनो सेकेंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है। ये कार्य हम कर रहे हैं, जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं। अलग अलग तरह के माध्यम है, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है हमारी जो स्पेस एजेंसी है, उसको नैनो सेकेंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं, आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं। अब ये जो अधिसूचना है, इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है, इसका सेंट्रल एक नेशनल रेफरेंस, वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था। कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जो वो समय को रखता है, उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है। तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है, ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हर पर्पज से, जैसे इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा। उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं, इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है, तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हों। अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे, अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, ज्यादातर की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे। तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफ कोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है।

0: पावर ग्रिड्स हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है।
1: निश्चित रूप से, और इससे शायद जो मौसम के पूर्वानुमान संबंधी जानकारियां होती है, या इसरो जब कुछ सैटेलाइट छोड़ना चाहता है या कुछ आकलन करना चाहता है, उसमें भी कुछ फायदा और हो सकता है।
0: इसरो पहले से ही जुड़ा हुआ है, अब और बाकी क्रिटिकल सेक्टर्स भी अगर जुड़ जाएंगे और इसी समय को सब लोग फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पर एफिशिएंसी और सिक्योरिटी दोनों ही बेटर होगा।
1: एक है, चूंकि अधिसूचना जारी हुई है, तो इसकी क्या कोई समय सीमा तय की गई है इसे लागू करने की, तो ये क्या है? और दूसरा है कि अगर कोई अधिसूचना के विरुद्ध कोई संस्था या व्यक्ति कार्य करता है, क्या उसमें कुछ जुर्माना या सजा का भी प्रावधान किया गया है? कुछ इस तरह की बात है इसमें?
0: एक तो अधिसूचना में ही लिखा गया है कि 180 दिन का समय दिया जा रहा है। ये इसीलिए है ताकि जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी यूजर्स हैं, वो अपने आप को इससे अवगत करा पाएं, इसमें क्या प्रावधान है उनसे अवगत करा पाएं, और फिर उनको जो भी जरूरतें हैं, जिस एक्यूरेसी से जिसको समय चाहिए, तो उसका वो प्रावधान कर पाएं कि मुझे इस टेक्नोलॉजी से समय लेना है, मुझे अपने कंप्यूटर को कैसे सिंक्रोनाइज करना है, या मुझे अपने पूरे सिस्टम को कैसे सिंक्रोनाइज करना है, उसके लिए 180 दिन का समय दिया गया है। अब बात आती है कि इसके लिए जुर्माना क्या होगा। तो हम जो सीएसआर राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है, हमारा काम है स्टैंडर्ड बनाना, तो हम समय को निर्धारित करते हैं, हम समय को संजो के रखते हैं, इंटरनेशनल टाइम से हम इसको फॉलो करते हैं, लेकिन हम एनफोर्समेंट जो हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, ये उनके अधीन आता है ये कार्य। तो निश्चित तौर पे जब ये गाइडलाइन बनाई जाती है, तो इसके बाद उसका भी प्रावधान किया जाएगा कि किस तरह से इसको चेक किया जाए, तो उसके लिए ऑडिट भी होंगे एंड उसके प्रावधान भी लाए जाएंगे।
1: अंत में जानना चाहेंगे कि एक जब टाइम जोन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से इससे पहले कुछ इस पर जो है तकनीकी कार्यान्वयन या प्रैक्टिस की गई होगी, तो वो किस तरह का था? खास करके जो बेंगलुरु फैसिलिटी और तकनीकी जो कार्यान्वयन है, जैसे चर्चा आई है कि एक व्हाइट रेबिट टेक्नोलॉजी या NAVIC का उपयोग, तो इसको लागू करने से पहले वहाँ पे ये चीज की गई थी, मतलब इस पर एक वर्कशॉप या कुछ पूरे जो कार्य किए गए थे, तो उसमें क्या आप लोग, आपकी संस्था जुड़ी हुई थी?
0: जी, अब हर एप्लीकेशन या हर सेक्टर की एक अलग जरूरत है। कुछ लोग मिली सेकेंड एक्यूरेसी से भी काम कर सकते हैं और कुछ लोगों को नैनो सेकेंड की एक्यूरेसी चाहिए। जैसे कि हमारा जो स्पेस एजेंसी है, उसको नैनो सेकेंड की एक्यूरेसी चाहिए, तो वो सैटेलाइट के माध्यम से हमसे समय लेते हैं। आम जनता मिली सेकेंड में काम कर सकती है, तो वो इंटरनेट के थ्रू भी ले सकती है। अब कुछ और क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, क्योंकि आप जब समय ले रहे हैं सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से लेते हैं, अगर सैटेलाइट में कुछ बाधा आ गई उसके सिग्नल में, तो आपका लिंक रुक जाएगा। तो अगर आप ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भी लें, तो जो क्रिटिकल सेक्टर है उनके लिए ये ज्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो टाइम देना, और उससे हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। तो ये अभी के लिए, जैसे हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन नेटवर्क बनाया गया और उसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया, और ये बताया गया कि हाँ ये संभव है और ये अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और अभी ये है कि आगे आने वाले समय में हम इस नेटवर्क को और भी स्ट्रांग कर सकते हैं, जिन सेक्टर्स की जरूरत है उनके लिए स्पेशली, बिकॉज इतना आसान नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर आपको जो डेडिकेटेड लिंक चाहिए वो बहुत महंगा भी पड़ता है। तो जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं और जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो अलग अलग माध्यमों से टाइम लेना चाहेंगे, ताकि एक माध्यम में कुछ रुकावट आती है तो दूसरा माध्यम से टाइम मिलता रहेगा, तो उन लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरत
1: है अरेंजमेंट रखना।
0: जी जी जी,
1: इसके लिए कुछ और लैब्स भी बनाए जाएंगे, क्योंकि CSIR NPL है, तो सबसे उनको जुड़ना पड़ेगा अगर देश के विभिन्न भागों में इस कार्य के लिए अलग अलग लैब बनाए जाते हैं।
0: तो ये अलग अलग लैब ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ये जरूरत जब महसूस हुई कि हमें समय को एक लीगल स्टेटस देना है, तो उससे पहले हमें ये भी निर्धारित करना है कि समय सब तक पहुंच पाए। अब सिर्फ अगर राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली से ही सिर्फ समय का प्रसारण होगा, तो शायद उतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और इसरो और NPL ने मिलकर के ये कार्य शुरू किया, और 5 लैब्स में ऑलरेडी हमने सेकेंडरी टाइम स्केल्स लगा दिए हैं, और जो कि हमारे भारतीय मानक समय से ही जुड़े हुए हैं, ट्रेसेबल हैं। तो अब ये जो 5 लैब्स हैं, जो कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और फरीदाबाद में बनाए गए हैं, और जो भारतीय मानक समय से जुड़े हुए हैं, यहां से भी अब समय का प्रसारण किया जा सकेगा। तो हमने जो समय की उपलब्धता पहले और ज्यादा सुनिश्चित की है, और वो भी अलग अलग जगह से, सिर्फ एक ही जगह से ना रहे, लोगों के पास माध्यम रहे कि हम अलग जगह से भी ले सकते हैं, और अगर एक जगह कुछ समस्या आती है तो दूसरी जगह से टाइम मिलता रहेगा। तो आप पहले उसको एनफोर्स करने से पहले आप ये तो करेंगे कि सब लोगों के पास उपलब्धता हो समय की, उसके लिए कार्य किया गया,
1: ये सारी फैसिलिटी पहले तैयार की गई निश्चित रूप से। और हमें याद है कि पहले हम लोगों का जो समाचार सेवा प्रभाग समाचार देता था, तो उससे पहले 6 बीप आते थे 6 सेकंड के, और उनकी घड़ियां जो है वो आपके प्रयोगशाला के एटमिक घड़ी से जुड़ी हुई होती थी। अब बचपन से हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है वो निर्धारण करता है हमारे जो वेट का, करता है टाइम का, का करता है, साथ ही हमारे मीटर जो लेंथ का भी करता है। इसके साथ बाद में आपकी संस्था ने बहुत सारे केल्विन और वो सब का करंट एम्पियर सब का भी कुछ साल पहले किया है। निश्चित रूप से ये वन नेशन वन टाइम, इसका उद्देश्य जैसा कि आपने बताया कि ये एक कोई नया टाइम जोन बनाना नहीं है, बल्कि देश के डिजिटल और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर में समय की सटीक और एक समान सिंक्रोनाइजेशन व्यवस्था को लागू करना है। इसके जरिए विदेशी जीपीएस टाइम सोर्स पर निर्भरता भी कम होगी और देश की डिजिटल संप्रभुता व सुरक्षा मजबूत होगी। डॉक्टर पूनम अरोड़ा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और आपने वन नेशन वन टाइम, इसके जो मुख्य उद्देश्य है, इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, इससे जो आने वाले लाभ हैं, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैं रूपाली गायकवाड़ आज आपके साथ स्थिरता और हरित क्रांति के बारे में जानकारी दूंगी। पहली औद्योगिक क्रांति के बाद से ही एनर्जी यानी ऊर्जा ने दुनिया भर में लगातार विकास को आगे बढ़ाया है। 19वीं सदी के मध्य से हाइड्रोकार्बन ईंधन ने औद्योगिक क्रांति की रफ्तार को तेज किया है। हालांकि इनके साथ पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां भी आई। कोयला और गैस एनर्जी के सबसे सस्ते पारंपरिक स्रोत है, लेकिन ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और जहरीले वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ये ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाते हैं और हमारे वायुमंडल की रक्षा करने वाली ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आर्थिक विकास सीधे तौर पर ऊर्जा के स्रोतों से जुड़ा है। अगर इन पर सही समय ध्यान न दिया जाए तो ये पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके अस्तित्व के लिए खतरा बनते हैं। हाइड्रोकार्बन ईंधन की जगह लेने के लिए ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा सबसे सस्ता विकल्प है। नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने से न केवल आयात पर निर्भरता कम होती है, बल्कि ऊर्जा की लागत और अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता आती है। आज हरित उद्योग टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है। हालांकि इसके लिए हरित उद्योग के प्रति हमारे नजरिए में व्यापक बदलाव की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि ग्रीन इकोनॉमी पर्यावरण पर कम से कम बुरा असर डालते हुए इंसानों की भलाई को बेहतर बनाती है। इंसानी तरक्की को औद्योगिक क्रांति से पहले के दौर में वापस तो नहीं ले जा सकते। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लगातार विकास के लिए साफ सुथरे ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दिया जाए। इसलिए हमारा मुख्य मकसद कई तरह के साफ सुथरे ऊर्जा स्रोतों के साथ देश में टिकाऊ विकास करना है। हरित उद्योग को ऐसे आर्थिक विकास की तलाश करनी चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। इसका समाधान है सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा के असीमित स्रोतों का इस्तेमाल करना, साथ ही मौजूदा संसाधनों को ज्यादा कुशल बनाना और पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग करके सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना, ऐसी उत्पादन प्रक्रियाएं विकसित करना जिनसे कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन पदचिन्ह कम हो, ऊर्जा की बचत हो और कचरा कम निकले। इसके अलावा समाधान प्राकृतिक सामग्रियों को अपनाने और पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग के लिए क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन बनाने में भी है। औद्योगिक क्षेत्र में टिकाऊपन की ओर बदलाव भारत में साफ तौर पर देखा जा सकता है। फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करने वाला ग्रीन सीमेंट क्लिंकर यानी धातुमल उत्सर्जन को कम कर रहा है। सरकार तेजी से नीतियां लागू कर रही है और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है और उसे अनिवार्य बना रही है। तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र भी ग्रीन हाइड्रोजन और बायोब्लेंडेड फॉसिल फ्यूल के जरिए नेट जीरो का लक्ष्य बना रहा है। सरकार ने ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए रीस्किलिंग प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। रीस्किलिंग प्रोग्राम अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स को नई स्किल सिखाने में कर्मचारियों को एनर्जी मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी के तरीकों और डिजिटल तरीके से वेस्ट कम करने का प्रशिक्षण देना शामिल है। इन प्रोग्राम्स का मकसद टेक्निकल और सिस्टम्स की समझ से जुड़ी स्किल्स को बेहतर बनाना है, ताकि कर्मचारी कम कार्बन उत्सर्जन वाली मशीनें चला सके, सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल कर सके और पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन कर सके। रणनीतिक स्तर पर यूएन 2035 तक उत्सर्जन में 55% की कटौती करने और 2050 तक वैश्विक स्तर पर नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंचने का समर्थन करता है। पेरिस समझौते का नेट जीरो लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय उष्णीकरण को प्री इंडस्ट्रियल स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक सीमित करना है। 130 से ज्यादा देशों ने नेट जीरो लक्ष्य अपनाए हैं, जिन्हें फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को धीरे धीरे खत्म करके उसकी जगह सोलर और विंड जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके और साथ ही पेड़ पौधे लगाकर और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाकर हासिल किया जाना है। इस रणनीति की सहायता करने के लिए नई नेट जीरो टेक्नोलॉजी विकसित करने की जरूरत है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तेजी से आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण को भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए भारत ने 2070 तक नेट जीरो

0: उत्सर्जन हासिल करने का प्रकल्प किया है, तब तक भारत में ज्यादातर आधुनिकीकरण का काम पूरा हो चुका होगा। एक अहम पड़ाव के तौर पर भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट की फॉसिल फ्यूल मुक्त ऊर्जा क्षमता हासिल करना है, जिससे अपनी ऊर्जा जरूरत का 50% हिस्सा रिन्यूएबल स्रोतों से पूरा किया जा सके। इसके लिए जिन क्षेत्रों पर काम करने की योजना है, उनमें कुशल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विस्तार करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, पेड़ पौधे लगाना, कार्बन हटाने वाली टेक्नोलॉजी और तरीकों का इस्तेमाल करना और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए प्रयास करना शामिल है।
1: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: और आइए

डालें आज की मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद सुबहगाही प्रोग्राम में आज आप भजन सुन सकेंगे। 9:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम आज सवेरे। खबरें 9:50 पर नश्र होंगी और 10 बजे आप सुन सकते हैं प्रोग्राम शम्मे फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गजल प्रोग्राम में गैर फिल्मी गजलें नश्र की जाएंगी और 10:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। 11 बजे मेरे पसंद प्रोग्राम में फिल्मी नगमे नश्र होंगे। 11:30 पर एक फीचर पेश किया जाएगा करेजवा पे लागी कतार। दिन में 12 बजे खबरें नश्र होंगी। 12:10 से आप सुनेंगे फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम 12:40 पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। 1 बजे आलमी खबरें नश्र होंगी और 1:15 पर आज की

सुबह गरीब अभियान के तहत अभी आपने ये भजन सुना। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे, और अब पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जिन पर आज की तारीख दर्ज है। 1888 में आज ही के दिन पहली बार विश्व प्रसिद्ध विज्ञान और अन्वेषण पत्रिका नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन का पहला अंक आधिकारिक तौर पर प्रकाशित हुआ था। और 1955 की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में पहली बार व्यावसायिक टेलीविजन नेटवर्क ITV का शुभारंभ हुआ, जिसने ब्रिटिश प्रसारण मीडिया में एक नए युग की शुरुआत की। और 1964 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क के ब्रॉडवे में क्लासिक संगीत नाटक फिडलर ऑन द रूफ का पहला सफल मंचन हुआ, जो थिएटर इतिहास के सबसे लोकप्रिय नाटकों में से एक बना। और इतिहास की इन घटनाओं के बाद अब आपको मिलवाते हैं उन शख्सियतों से जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। एक ऐसी वाणी जिसने धर्म को केवल पूजा की परिधि में नहीं बल्कि सत्य, सेवा और मानवता के आचरण में देखा, वे थे गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ईश्वर की एकता, मानव समानता और सच्चे आचरण का संदेश दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुरु नानक देव जी करतारपुर में रहे, जहां कीर्तन और लंगर की परंपरा को उन्होंने जीवन का हिस्सा बनाया। उनकी वाणी का एक बड़ा हिस्सा आगे चलकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हुआ। उनकी वाणी का सार मानो इन शब्दों में सुनाई देता है, सचू ता परो जानिए जा सच्ची धरे प्यार, अर्थात सच्चाई को वही समझ सकता है जिसके जीवन में सच्चे आचरण के प्रति प्रेम हो। ये पंक्ति गुरु नानक देव जी की उस सोच को सामने लाती है, जिसमें सिर्फ सत्य बोलना नहीं बल्कि सत्य को जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है। रंगमंच से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी सहज अदाकारी से अलग पहचान बनाने वाली अभिनेत्री थी आशालता वाबगांवकर। गोवा में जन्मी आशालता ने मराठी और कोंकणी रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की और आगे चलकर 100 से अधिक मराठी फिल्मों के साथ हिंदी सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ी। नमक हलाल, शौकीन, अंकुश, सदमा, कूली और घायल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। वे केवल अभिनेत्री ही नहीं बल्कि गायिका और नाटककार के रूप में भी सक्रिय रही। आशालता जी की अभिनय सफर को याद करते हुए अब सुनते हैं फिल्म अपने पराये का लोकप्रिय गीत आई निंदिया रानी।

हिंदी और मराठी सिनेमा के इतिहास में कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनकी पहचान केवल उनके निभाए किरदारों से नहीं बल्कि उनके पूरे सफर से बनती है। दुर्गा खोटे ऐसी ही अभिनेत्री थी, आज उनकी पुण्यतिथि है। लगभग 5 दशक से अधिक लंबे करियर में दुर्गा खोटे ने करीब 200 फिल्मों और सैकड़ों नाटकों में अभिनय किया। भरत मिलाप, मुगले आजम, मिर्जा गालिब, बिदाई और बॉबी जैसे फिल्मों में उनके यादगार किरदारों ने उन्हें अलग स्थान दिलाया।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया में एकता नगर के मकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड पेश करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मनशियात की रोकथाम से मुतल्लिक टास्क फोर्स के सरबराहों की कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वजराए खारजा के साथ बातचीत की है। बरतानिया ने ईरान की पुश्त पनाही वाले हौसियों के हमलों से निमटने के लिए सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तेफाक कर लिया है। और खवातीन क्रिकेट में जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सुबह भारत सोने के तमगे के लिए श्रीलंका से मुकाबला करेगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड पेश करेंगे। ये अवार्ड देने का सिलसिला 1954 में शुरू हुआ था और ये अवार्ड सिनेमा में फीचर, गैर फीचर और कहानी समेत मुख्तलिफ जुमरों में फनकारी और तकनीकी महारत को तस्लीम करते हुए मुल्क के आला तरीन सिनेमा एजाज की नुमाइंदगी करते हैं। इत्तला तो नशरियात की वजारत की जानिब से एक बड़े पॉलिसी कदम के तौर पर अवार्ड दिए जाने की ये तकरीब कौमी राजधानी से बाहर किसी दीगर रियासत में हो रही है। सदर जमहूरिया मुमताज अदाकार अनंत नाग को 2024 के दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज करेंगी। तारीखी एकता नगर में रोशनियों के साथ शानदार स्टेज सज चुका है क्योंकि केवड़िया पहली बार तारीखी 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सिनेमा के इस अजीमशान जश्न के लिए मुल्क भर से नामवर अदाकारों, मारूफ फिल्म साजों और तकनीकी माहिरों ने तकरीब का गाह पहुंचना शुरू कर दिया है। ये तकरीब साल 2024 की शानदार सिनेमाई कामयाबियों को सराहने के लिए मुनक़िद की जा रही है। फीचर फिल्मों के अहम ऐलानात में आर्टिकल 370 को बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि यामी गौतम ने इस फिल्म में अपने किरदार के लिए बेहतरीन अदाकारा अवार्ड जीता है। बेहतरीन अदाकार का एजाज ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरक तौर पर दिया गया है। राजकुमार पेरियासामी ने अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड हासिल किया है, जबकि कल की 2898 AD को बेहतरीन मकबूल फिल्म का अवार्ड मिला। रणदीप हुड्डा ने स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड जीता। रवि राय मुर्मू ने संथाली फिल्म अंगेन के लिए बेहतरीन डेब्यू डायरेक्टर गैर फीचर फिल्म का एजाज हासिल किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मनशियात मुखालिफ टास्क फोर्स के सरबराहों की तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजारत दाखिला ने बताया कि इस मौके पर जनाब अमित शाह लखनऊ और देहरादून में मनशियात पर कंट्रोल से मुतल्लिक ब्यूरो के जोन के नए कॉम्प्लेक्सेस का वर्चुअल वसीले से संग बुनियाद रखेंगे। इंतखाबी कमीशन मगरबी बंगाल में ट्राइब्यूनल की तादाद में इजाफा करने का इरादा रखता है ताकि उन अफराद की दरखास्तों पर तेजी के साथ कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके जिनके नाम एसआईआर अमल के दौरान वोटर फहरिस्तों में शामिल नहीं किए गए हैं। रियासत में फिलहाल 19 ट्राइब्यूनल हैं। हमारे नामा निगार ने बताया कि उम्मीद है कि इंतखाबी कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में अपने इस मौकिफ को पेश करेगा कि रियासत में हर लोकसभा हलके के लिए एक ट्राइब्यूनल मुकर्रर करके इनकी तादाद बढ़ाकर कम अज कम 42 की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज वोटर फहरिस्तों पर खसूसी तफसीली नजरसानी से मुतालिक 13 दरखास्तों की समाअत होनी है। उम्मीद है कि चुनाव कमीशन समाअत के दौरान अदालत आलिया को मजीद ट्राइब्यूनल की जरूरत से वाकिफ कराएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2000

0: से निमटने के लिए सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तेफाक कर लिया है। और खवातीन क्रिकेट में जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सुबह भारत सोने के तमगे के लिए श्रीलंका से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और रीडी फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है अखबार ज़रीन का प्रोग्राम शम्मी फरोजा।
2: हम में से हर एक की जिंदगी के कुछ मकासिद होते हैं। किसी का मकसद माल और दौलत हासिल करना होता है, तो किसी का मकसद शोहरत और नामवरी होता है। कोई इंसानों का हमदर्द बनकर जिंदगी गुजारना चाहता है, तो कोई अपने जिस्म को खूबसूरत या मजबूत बनाने पर ध्यान देता है। इस लिहाज से देखा जाए तो हर इंसान की जिंदगी का कुछ न कुछ मकसद जरूर होता है। ये मकासिद कभी नजरों से पोशीदा होते हैं और दूसरे इंसानों को नजर नहीं आते, तो कभी ये मकासिद नुमाया तौर पर नजर आ जाते हैं। समझदार इंसान वो है जो अपनी जिंदगी के लिए नेक मकासिद का तायुन करे। वो ये गौर व फिक्र करे कि मुझे अपनी जिंदगी के लिए नेक और अच्छे मकासिद इख्तियार करना जरूरी है। इसके लिए वो अपने आसपास के माहौल का जायजा ले, अपने समाज की जरूरतों में गौर व फिक्र करे और साथ ही साथ अपने समाज के तजुर्बेकार और दानिशमंद लोगों की मुसाहबत इख्तियार करे। अच्छे और शरीफ लोगों की मजलिस में बैठे, अहले इल्म और काबिलियत वाले लोग, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हों, उनके साथ हमनशीनी इख्तियार करे और उनके साथ तबादले ख्यालात करे और ये सीखने और समझने की कोशिश करे कि जिंदगी के कौन कौन से मकासिद अच्छे और पसंदीदा हैं, और फिर इन मकासिद को अपनी जिंदगी में बरूए कार लाने के लिए कौन कौन से अमली इकदामात का करना बेहतरीन हो सकता है। साथ ही साथ उन मकासिद को अपने समाज और अपने माहौल से किस तरह हम आहंग बनाया जा सकता है, ताकि उन मकासिद के हुसूल में समाज की तरफ से कोई रुकावट न हो, बल्कि वो मकासिद समाज के लिए बेहतरी का और भलाई का सबब बन जाए। फिर उसके बाद उन मकासिद के हुसूल के लिए तन मन और धन की बाजी लगाई जाए और एक बामकसद और मुस्बत और नतीजा अंगेज जिंदगी गुजारने की जद्दोजहद की जाए। ऐसे अफराद जो नेक मकासिद के तायुन के बाद जिंदगी की जद्दोजहद करते हैं, न सिर्फ कामयाब और बामुराद होते हैं, बल्कि समाज उनका ममनून और मशकूर होता है और उनकी मेहनत और काविश को दादे तहसीन देता है। उसमें अल्लामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, एपीजे अब्दुल कलाम और नेल्सन मंडेला जैसे मुदब्बिर लोगों को शामिल किया जाए। इन सभी लोगों ने अपनी जिंदगी के लिए नेक मकासिद का इंतखाब किया और न सिर्फ ये कि उन मकासिद को पूरा करने के लिए तमाम वसाइल को इख्तियार किया और नतीजतन अपने उन नेक मकासिद में कामयाब रहे और उन मकासिद का फायदा इंसानियत के एक बड़े हिस्से ने उठाया। दरहकीकत उनके नेक मकासिद ही ने उनको समाज में वक़्त और इज्जत दिलाई और उन नेक मकासिद ही की वजह से ये अजीम शख्सियतें लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। यहां पर यह बात बरमहल होगी कि हमारा वजूद दरअसल एक अमानत है। हम सब खुदा के बंदे हैं। हमें इस दुनिया में मुख्तसर वक्त के लिए बहुत कुछ देकर भेजा गया है। हमारा दिमाग, हमारे हाथ पांव और हमारे आसपास की ये वसी कायनात और उसके अंदर फैला हुआ खुदा का ये लामुतनाही निजाम, कुर्रे अर्ज में फैली हुई खुदा की अजीम नेमतें, सूरज, चांद, दरिया और पहाड़, शजर और हजर, हैवानात और तुयूर और फिजाओं की वसातें और आफाक और अनफुस की लामहदूद सलाहियतें खुदा ने बेमकसद नहीं पैदा की हैं और न ही उनके वजूद का मकसद महज इंसान की मादी लज्जत है, बल्कि खुदा ने यह सब आजमाइश के लिए दिया है। वो ये देखना चाहता है कि हम उन खुदा की कुदरत की निशानियों से खुदा को कितना और किस तरह पहचानते हैं और उसकी दी हुई नेमतों को अपने लिए और अपने समाज के लिए कितना और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी जहानत और काबिलियत को परखना चाहता है। वो हमारी सलाहियत पर हमें ग्रेड देना चाहता है। वो एक मुश्तखाक को सारी मखलूकत का सरदार बनाना चाहता है कि ऐ मेरे बंदे, कुछ कर, तू मुझे खुश कर, मैं तुझे राजी कर दूंगा। तू अपनी सलाहियत और काबिलियत साबित कर, मैं अपने इनाम से मालामाल कर दूंगा। तू इंसानियत की खिदमत करेगा तो मैं उसका बदला दूंगा और तू जिस दर्जे अपने मकसद से जितना करीब होगा, मैं तुझे उतना ही मालामाल कर दूंगा। तू जिस मकसद को हासिल करने की जद्दोजहद करेगा मैं तुझे उसमें आसानियां फराहम करूंगा। तू नेकी के रास्ते की तरफ एक कदम चलेगा तो मैं दो कदम चलूंगा। हाँ अगर तू बदी के रास्ते पर चलेगा तो मेरा हाथ वहां भी नहीं पकड़ूंगा और मैं तेरी रस्सी को दराज कर दूंगा। फिर आखिरत में मेरा और तेरा हिसाब होगा कि तूने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया और वो दिन बड़ा सख्त होगा। खुदा हमें जायज और नेक मकासिद की तरफ गामजन करे।
1: आपने सुना प्रोग्राम शम्मे फरोजा। आज का मौजू था नेक मकासिद। पेश कर रहे थे मौलाना आदिल जमाल। मेरी वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल। आज की पेशकश में शांति हीरानंद से सुनिए असर रामपुरी और मीर तकी मीर का कलाम, और जमील अहमद से आप सुनेंगे दाग दहलवी और कुली कुतुब शाह का कलाम।

0: नवाचार की यात्रा स्कूल के दिनों में शुरू हुई। रोजमर्रा की समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने की जिज्ञासा ने उन्हें नए विचारों पर काम करने के लिए प्रेरित किया। बौद्धिक संपदा अधिकार और कानून की शोधकर्ता डॉक्टर मुकुल रानी पराजुली के साथ बातचीत से उन्हें अपने विचारों को सिर्फ विकसित करने का ही नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा, आगे के विकास और व्यवसायीकरण के बारे में भी समझ मिली। स्कूल के डिजाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर अपने अनुभव और इस उपलब्धि के महत्व के बारे में प्रशांत लामिछाने ने बताया।
1: जो इनोवेशन का मेरा जो फील्ड है उसमें मैं लगभग 16 से 17 इयर्स मेरा बीत चुका है ये फील्ड में आया हुआ। तो आज मैं ये प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरा जो इको स्पून है जो मेरा जिसमें मुझे पेटेंट ग्रांट हुआ है वो प्रोजेक्ट के सिलसिले में इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं डिलीवर करना चाहूंगा। और अभी तक मैंने बहुत सारा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में काम किया जैसे एंटी थेफ्ट चार्जर, वायरलेस स्विच कंट्रोल सिस्टम, परंपरा डोको, जीवन रक्षक कुकुरी और बहुत सारा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। मैं मशीन वगैरह भी डिजाइन कर रहा हूँ और उसमें मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह को भी लेकर मैं उस इनोवेशन को थोड़ा मार्केट में भी लाने के लिए प्लान में चल रहा हूँ मैं। और जो इको स्पून है जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट का जर्नी मेरा कैसे स्टार्ट हुआ कि जैसे मैं लास्ट ईयर मैं उत्तराखंड घूमने के लिए जा रहा था तो मैं दिल्ली का ट्रेन था मेरा, उसमें मुझे जो फूड लंच टाइम में मुझे फूड दिया गया था उसमें मेरा उस पैकेट के अंदर में स्पून वगैरह नैपकिन वगैरह था। तो क्या हुआ कि मेरा उसमें शायद 2-3 नैपकिन थे तो 2 तो मेरा ऑलरेडी बिगड़ गया वहाँ वो फूड का स्टीम वगैरह से होकर दाल वगैरह के साथ लगकर और एक गिर गया तो मैं नैपकिन लेस हो गया उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि मैं दूसरा नैपकिन भी नहीं मंगवा सकता किसी के से। तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम जो मैं फेस किया अभी वो प्रॉब्लम ये ट्रेन में कितने लोग फेस कर रहे हैं। तो इसी ख्याल के साथ मैं मेरा जर्नी कंप्लीट किया तो मैं घर आया। मैं इसमें काम करने के लिए सोच ही रहा था फिर मेरा दूसरा प्रोजेक्ट वगैरह में भी मैं बिजी था तो मुझे एक वेडिंग में इन्विटेशन आया था मैं वहां गया था। वेडिंग फंक्शन वगैरह में क्या होता है कि जो प्लेट हम लोगों को फूड लेते वक्त वो हम लोग को प्लेट दिया जाता है वो स्टार्टिंग में और एक चम्मच और एक नैपकिन दिया जाता है। तो नैपकिन नीचे में रहता है और स्पून था तो मेरा नैपकिन क्या हुआ कि वो प्लेट में भी थोड़ा पानी वगैरह था तो वो लग गया तो उस कारण से मेरा वो नैपकिन बिगड़ गया तो मैंने फिर एक्स्ट्रा नैपकिन मंगवाया। तो मुझे उस टाइम भी मुझे ख्याल आया कि ये नैपकिन और जो स्पून का जो रिलेशन है ये हर टाइम जोड़ी में रहता है क्योंकि स्पून फूड वगैरह लेते वक्त मुझे स्पून भी चाहिए होता है नैपकिन भी चाहिए होता है। तो मैंने क्या सोचा कि व्हाई नॉट टू कंबाइन दिस टू प्रोडक्ट इन अ वन प्रोडक्ट। सो मैंने घर आया मैंने 2-3 डिजाइन ट्राई किया दे फेल्ड तो मैंने दूसरा तरीका देखा कि मुझे एक टैबलेट जैसा बनाकर उसको डालना मुझे नैपकिन में एक होल करके उसमें डालना है जैसे हम लोग मेडिसिन वगैरह निकालते हैं उस टाइप का आइडिया पर मैंने काम किया। मैंने पहले स्क्रोल टाइप ट्राई किया था हैंडल में वो आइडिया फेल हो गया वो कॉस्ट भी ज्यादा लग रहा था लेकिन मैंने वो जो दवाई वगैरह निकालते हैं हम लोग उस आइडिया को मैंने एडोप्ट करके मैंने इको स्पून बनाया। और उस इको स्पून को मैंने क्या किया कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में सबमिट किया था और वो प्रोजेक्ट वहां से भी एक्सेप्ट हो गया है। और मैं क्या हुआ कि आफ्टर सम मंथ मैं डॉक्टर मुकुल से भी मिला और लाइक उनको आईपीआर के रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज है तो सी इंस्पायर्ड मी टू हैव पेटेंट वो मेरा प्रोजेक्ट में। और उन्होंने कहा कि प्रशांत यू हैव मेड लॉट्स ऑफ इनोवेशन और तुमने अभी तक पेटेंट क्यों नहीं किया। तो फॉर मी पेटेंट वॉज लाइक ये क्या होता है। तो शी एजुकेटेड मी सी एनलाइटेंड मी अबाउट पेटेंट और मैंने मैम ने ही मुझे सारे स्पॉन्सर कर दिए थे और मेरा इको स्पून का पेटेंट कर दिया था और मेरा पेटेंट भी आ चुका है और सक्सेसफुली ग्रांट हो गया है और एक डिजाइन रजिस्ट्रेशन में भी मेरा कम्प्लीटली हो गया है। अब यूटिलिटी पेटेंट भी आ रहा है मुझे वो शायद वो भी मिलने वाला है रिसेंटली। तो इसी प्रकार से मेरा ये इको स्पून का जर्नी ऐसे ही हुआ था।
0: इसके बाद प्रशांत का परिचय पेटेंट शाला से हुआ। यह संस्था सौरभ अग्रवाल और डॉक्टर उमेश कुमार केयू से जुड़ी है। संस्था की ओर से स्पून के लिए डिजाइन और यूटिलिटी पेटेंट आवेदन करने और दाखिल करने में पेशेवर सहयोग दिया गया जिसके लिए कोई पेशेवर शुल्क नहीं लिया गया। प्रशांत लामिछाने तेमी इनोवेशन फेस्टिवल के संस्थापक भी हैं। इस मंच के जरिए वे जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने और युवाओं को नए विचारों के लिए प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। उनकी यात्रा यह दिखाती है कि नवाचार के लिए हमेशा बड़ी प्रयोगशाला या संस्थान की जरूरत नहीं होती। किसी रोजमर्रा की समस्या को पहचान कर उसका समाधान विकसित करना और फिर उस विचार को बौद्धिक संपदा के रूप में सुरक्षित करना भी नवाचार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। सिक्किम में युवाओं के बीच नवाचार की संस्कृति को मजबूत करने और उन्हें नए विचारों पर काम

0: करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशांत लामिछानी ने अपने विचार साझा किए।
1: रिगार्डिंग तिमी इनोवेशन फेस्टिवल, सो इट वॉज माई ड्रीम सिंस फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू ऑर्गेनाइज वन साइंस फेयर। और मैं जब छोटा था तब से, लेकिन मैं जो इनोवेशन फील्ड में मैं खुद तो प्रोजेक्ट बनाता हूँ, लेकिन मैं बच्चों को भी मेंटरशिप देता हूँ। बहुत सारा बच्चे मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, वो भी इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, उनको भी मैं मोटिवेट करता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऑलरेडी नेशनल लेवल भी पहुंच चुके हैं, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, स्टेट लेवल, ये सारा चीज में बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मेंटरशिप देकर उन लोगों को भी भेजा है। और अभी भी मेरे साथ 10-12 बच्चे मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब करते करते मुझे आइडिया है कि व्हाई नॉट टू हैव अ वन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशंस। और इसमें मुझे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, आवर ऑनरेबल एरिया एमएलए श्री बेदू सिंह पंसर, चेयरमैन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आवर एंटी भुटिया सर, उन सभी से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उन सब ने मुझे बहुत सारा हेल्प किया। और मुकुल मैम तो ऑलरेडी ये इनोवेशन में जुड़े हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारा इंकरेजमेंट दिया। और हम लोगों ने सक्सेसफुल तिमी इनोवेशन फेस्टिवल फेज वन हम लोगों ने कंप्लीट किया। और अभी हम लोग तिमी इनोवेशन फेस्टिवल फेज टू हम लोग नेक्स्ट ईयर करने के लिए प्लान में चल रहे हैं। और उसको हम लोगों ने इस बार थोड़ा मॉडल चेंज किया है। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हम लोग का लोकल एरियाज वगैरह के स्कूल्स वगैरह होंगे, तो हम लोग वहां से आइडिया थॉन करेंगे पहले वन मंथ, और पहले बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडिया को वो करके हम लोग उसको मेंटरशिप देंगे, हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे में हेल्प करेंगे, और उसके बाद तिमी इनोवेशन फेस्टिवल में हम लोग डिस्प्ले करके उन सभी को हम लोग नेशनल और प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए भी हम लोग एनआईएफ, जैसे हम लोग का सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है एनआईएफ वगैरह, ये सब में हम लोग हमारा प्रोजेक्ट्स वगैरह को वहां पर भी सबमिट करवा देंगे। और ज्ञान वगैरह भी है एनजीओ, तो हम लोग वहां पर भी हेल्प करेंगे। और दूसरा भी बहुत सारा है, हम लोग वहां पर भी नॉमिनेट करेंगे बच्चों को। और इस तरीके से क्या होगा कि एक बच्चे में जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है तो वो आगे के और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग मेंटरशिप भी करेंगे और साइंस फेयर भी करेंगे, और हम लोग बच्चों को और सिक्किम को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर में हम लोग प्राउड मूवमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग लगे पड़े हुए हैं। सो तिमी इनोवेशन इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग माइंड्स।
0: प्रशांत लामिछानी की उपलब्धि युवा नव प्रवर्तकों के लिए यह संदेश देती है कि एक विचार की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सही दिशा, दस्तावेजीकरण और बौद्धिक संपदा संरक्षण के जरिए उसे आगे बढ़ाने के अवसर तैयार किए जा सकते हैं। मैनाक चटर्जी और दिलीराम दुलाल की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्राची वाजपेयी।

0: सिक्किम से अब हम रुख करते हैं मेघालय का। मेघालय में बाजारों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है और हाल ही में एक विशेष पहल के माध्यम से मेघालय के मुख्यमंत्री ने शिलांग के एक बाजार के एक आधुनिकीकरण की पहल की। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम समझते हैं कि ये किस तरह की पहल थी और कैसे मेघालय में बाजारों को सरकार द्वारा नया रूप दिया जा रहा है।
1: मलकी इलाके में लंबे समय से स्थानीय लोगों और व्यापारियों की जरूरतों को पूरा कर रहे मलकी मार्केट के अब नए रूप में विकसित होने की दिशा में काम शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मलकी ग्राउंड में बाजार के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। राज्य सरकार के अनुसार करीब 24 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत वाली यह परियोजना मलकी और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार के लिए किया गया यह आवंटन राज्य की बाजार परियोजनाओं में सबसे बड़े आवंटनों में से एक है। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी सुविधाओं के जरिए व्यापार के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराने और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर तैयार करने पर बल दिया जा रहा है।
2: दिस इज वेयर द इकॉनमी मूव्स एंड व्हेन यू क्रिएट मार्केट स्पेसेस The exchange of goods and services and products and the economic rotation of the money that we want to see in the economy takes place through these marketplaces. And that's why, and obviously that creates jobs. So that's why the development and overall improvement of these places are very, very crucial to us. So therefore, this is not just a one-off project.
1: मलकी मार्केट का पुनर्विकास शिलांग में बाजार और शहरी ढांचे को मजबूत

0: करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। राज्य सरकार ने शिलांग में विभिन्न बाजारों और व्यापारिक क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 130 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की है। इनमें लैथम खराश शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, लाबान मार्केट, पोलो क्षेत्र के विकास और स्ट्रीट वेंडर मार्केट जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा शिलांग में स्मार्ट सिटी पहल के तहत भी 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मलकी और आसपास के इलाकों में आने वाले वर्षों में शहरी ढांचे में और बदलाव की बात भी कही। उन्होंने बारीक पॉइंट को एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र के रूप में विकसित करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सड़क परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। इस तरह मलकी मार्केट का पुनर्विकास व्यापार, स्थानीय रोजगार और शहरी सुविधाओं को एक साथ मजबूत करने की दिशा में मेघालय सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा है। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय, आकाशवाणी समाचार।
1: उत्तर भारत निवेश और उद्योगों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है और खासतौर पर हमने देखा कि बीते वर्षों में असम में ढांचागत विकास की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, उद्योगों को लगाने के जो प्रयास हैं, उन्होंने असम की तस्वीर को बदला है। हाल ही में ICC ग्लोबल बिजनेस समिट में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने असम में निवेशकों को अपने उद्योग लगाने के लिए आकर्षित किया और असम में किस तरह से ज्यादा निवेश को बढ़ाया जा सकता है, इस बात पर अपने संबोधन में जोर भी दिया था। तो आइए असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा के इस संबोधन पर आधारित और जिस तरह से उन्होंने ICC ग्लोबल समिट में असम की निवेश की संभावनाओं को रखा, इस संबंध में हम आपको ये विशेष रिपोर्ट सुनवाते हैं।
2: दिल्ली में 18 और 19 सितंबर को आयोजित ICC ग्लोबल बिजनेस समिट 2026 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने राज्य में निवेश की संभावनाओं को सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते वैश्विक, आर्थिक और तकनीकी माहौल ने भारत के सामने उत्पादन के नए अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में उत्पादन, निवेश और नवाचार के लिए नए स्थानों की तलाश हो रही है और भारत को इस बदलाव का लाभ उठाने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव को और मजबूत करना होगा।
3: इंडिया डिसेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप प्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी। ग्लोबल प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन आर लुकिंग टूवर्ड्स न्यू लोकेशन एंड स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप। The next phase of India's growth will therefore depend increasingly on bringing more regions and enterprise into national and global value chain.
2: उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अगले चरण में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों और उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक वैल्यू चेन से जोड़ना जरूरी होगा। उनके अनुसार पूर्वोत्तर और विशेष रूप से असम इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने असम की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। उन्होंने असम को आसियान क्षेत्र से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन और निवेश के लिए अनुकूल नीतिगत व्यवस्था का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार, उद्योग, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और उद्यमी मिलकर काम करें तो निवेश से केवल एक परियोजना नहीं बल्कि पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित किया जा सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर कौशल विकास, रोजगार, आपूर्ति श्रृंखला और नए व्यवसायों के अवसर तैयार हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने वैश्विक उद्योग जगत को असम आने और राज्य में निवेश की संभावनाओं का आकलन करने का भी निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि असम पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से और भारत को आसियान क्षेत्र से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हो सकता है। ICC ग्लोबल बिजनेस समिट 2026 में कारोबार, निवेश, तकनीक, विनिर्माण, हरित ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। सम्मेलन 18 और 19 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।

0: प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के ऑक्सन सर्कल स्थित लई बांगो तोलुंग अकांगोल में पहली बार लई बांगो सेंट्रल सोलुंग गिद्ध समारोह का शुभारंभ हुआ। समारोह का उद्देश्य आदि जनजाति संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ सामुदायिक एकता को मजबूत करना है। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, पंचायती राज मंत्री ओजिंता सिंह, अरुणाचल ईस्ट सांसद तापर गाव, विधायक निलम गिरी एवं नारेकोई विधायक तोजर कादो सहित जन प्रतिनिधि, सामुदायिक नेता और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत सभी गणमान्य अतिथियों ने आधुनिक शिक्षा और विकास के साथ सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। विधायक तोजर कादो ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस समारोह को एक मजबूत सांस्कृतिक मंच बनाया जाना चाहिए, क्योंकि संस्कृति की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं समुदाय की होती है। वही सांसद तापर गाव ने युवाओं से अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोलियों को सीखने, बोलने, पारंपरिक परिधान अपनाने और सोलन जैसे सांस्कृतिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। अजिंता सिंह ने आदि और गालो समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया तथा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अरुणाचल प्रदेश के विविध समुदायों के बीच एकता, आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समारोह संस्कृति के संरक्षण और परंपराओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के जन केंद्रित मंच बने रहने चाहिए। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
1: हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री ने मिजोरम का 3 दिवसीय दौरा किया और किस तरह से मिजोरम एक खेल का बहुत बड़ा गंतव्य बनकर उभर सकता है, इस मामले में उन्होंने समीक्षा की। तो आइए इस विषय पर हम आपको अगली रिपोर्ट सुनवाते हैं।
2: कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में खेलों में प्रगति भी राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों को शिक्षा के साथ जोड़ने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए कई पहल कर रही है। उन्होंने युवा कनेक्ट पहल का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देना सरकार की प्राथमिकता है। मिजोरम के खेल मंत्री लालन घिंगलोवा हमर और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य के खेल ढांचे और खिलाड़ियों की जरूरतों पर भी चर्चा हुई। विभिन्न खेल संगठनों के प्रतिनिधियों ने जमीनी स्तर पर खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के विकास से जुड़ी जरूरतों की जानकारी दी। श्रीमती खड़से ने मिजोरम के खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में खेल प्रतिभाओं की अच्छी संभावनाएं हैं और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, पोषण, खेल विज्ञान, चिकित्सा सहायता और प्रतियोगिताओं में अधिक अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से शहरों के साथ साथ दूर दराज के क्षेत्रों में भी प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही महिला खिलाड़ियों की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। मिजोरम में साई प्रशिक्षण केंद्र, आइजोल में सिंथेटिक हॉकी टर्फ और प्रकाश व्यवस्था से जुड़ी परियोजना भी खेल सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। श्रीमती खड़से ने इस बात पर जोर दिया कि केवल खेल मैदान और बुनियादी ढांचा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण और लगातार सहयोग भी मिलना चाहिए। मिजोरम के सेतुअल और कोलासिब जिलों में हुई समीक्षा बैठकों में भी खेल बुनियादी ढांचे, नियमित कोचिंग और युवा प्रतिभाओं के साथ विकास पर चर्चा हुई। कोलासिब में फुटबॉल, हॉकी और कुश्ती जैसे खेलों में स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया। मिजोरम में हुई इन चर्चाओं में खेलों को शिक्षा, युवा विकास और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं से जोड़कर आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशेष शुक्ला।
1: कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं हाल ही में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप से, और हाल ही में आयोजित हुई इस चैंपियनशिप में करीब पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों के 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। हम सभी जानते हैं कि खेलों में पूर्वोत्तर भारत लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है, और ऐसे में स्थानीय स्तर पर किस तरह से इस चैंपियनशिप से नई प्रतिभाओं को मौका मिला और नई प्रतिभाओं ने अपने प्रदर्शन को रखकर अपने लिए नई संभावनाओं को प्रस्तुत किया, अगली इस रिपोर्ट में आपको सुनवाते हैं।
3: मेघालय में नॉर्थ ईस्ट जोन इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 16 से 19 सितंबर तक किया गया। यह प्रतियोगिता वर्ष 2016

के बाद पहली बार मेघालय में आयोजित हुई। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का आयोजन मेघालय स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन ने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया। यह चैंपियनशिप 2027 में मेघालय में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के टीम मुकाबलों के लिए आधिकारिक क्वालिफाइंग मंच भी रही। टीम मुकाबलों में असम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बॉयज, गर्ल्स, पुरुष और महिला वर्ग चारों में खिताब जीते। बॉयज टीम फाइनल में असम ने अरुणाचल प्रदेश को 2-0 से, जबकि गर्ल्स फाइनल में मिजोरम को 2-1 से हराया। पुरुष टीम फाइनल में असम ने मणिपुर को 3-1 और महिला फाइनल में मिजोरम को 3-0 से हराया। महिला टीम की जीत में स्टार खिलाड़ी अश्मिता चालिहा की भी अहम भूमिका रही। मेघालय के खेल और युवा मामलों के मंत्री वेलाडमिक्की शैला ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों के साथ मुकाबला करने और अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंचों से चैंपियन तैयार होते हैं। राज्य के खेल बजट में हुई बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 9 वर्षों में यह करीब 40 करोड़ रुपए से बढ़कर 844 करोड़ रुपए हुआ है। इसका उद्देश्य खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय खेलों के लिए चयनित मेघालय टीम को प्रशिक्षण के दौरान विशेष स्टाइपेंड देने की भी बात कही गई। प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही असम की स्टार शटलर अश्मिता चालिहा ने भी पूर्वोत्तर में उभरती प्रतिभाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों के लिए नियमित प्रशिक्षण के साथ उच्च स्तर के मुकाबलों का अनुभव भी जरूरी है। उन्होंने मेघालय के खिलाड़ियों को बिना दबाव के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की सलाह दी। इस चैंपियनशिप ने जहां पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा का बड़ा मंच दिया, वहीं अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रीय खेलों से पहले मेघालय की खेल सुविधाओं और आयोजन क्षमता को भी सामने रखा। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं नेहा गोस्वामी, आकाशवाणी समाचार।

श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशरियात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उर्दू सर्विस दस्तियाब है और DD फ्री डिश पर भी आप हमें सुन सकते हैं। अब पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

কফি কফি কফি। লতা মঙ্গেশকর কি আওয়াজ মে আঁখে ফিল্ম সে ये नगमा अभी आपने सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नजर है ब्लफ मास्टर फिल्म से, आवाज है मुकेश की।

के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ॉन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी है। अब समाप्त कीजिए, फीचर उनवान है करेजवा पे लागी कटार, तहरीर और पेशकश मोहम्मद अली मौज की है।

हमारे सबसे पहले उस्ताद पटना के इंदाद खान साहब थे। ये आगरी वाली मलका और कलकत्ते वाली गोहरजान के साथ सरंगी बजाते थे और फयाज खान साहब के साथी थे। उस्ताद तालीम नहीं दिया करते थे, सारंगी छेड़ी और कहा शुरू हो जाओ। हमारे गाने का स्वर जो हमने शुरू किया पांचवा काला था। उस्ताद का हुक्म था कि इसका खर्ज लगाओ, लेकिन 3 साल तक मुश्किल ही से लग पाता था। आज हम इन बातों को सोचते हैं तो उस्ताद को दुआ देने को जी चाहता है। मुझे याद है कि उन्होंने कामों से शुरू कराया था। बोल थे, हूँ तो जनमन छांडो।

उस्ताद चाहते थे कि हम भी उसी तरह कहें, हमसे बनता नहीं था। वो हंसते थे और मुझे खामखां उलझन हुआ करती थी। 6 महीने में हमने उनका और उन्होंने हमारा नाक में दम कर दिया। उस्ताद 8 घंटे 5 घंटे सिर्फ खर्च भराया करते थे। खर्च भरना नई उम्रों में कितना मुश्किल होता है इसका अंदाजा लगाइए और तब सोचिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है। कहा करते थे कि खर्च भरने से आवाज में रबर जैसी कैफियत पैदा हो जाती है कि जितना जी चाहे उसे फेंस लो। उन्होंने हमें भैरों के सरगम से शुरू कराया, उन्होंने हमें भैरों के पलटे लिखाए।

ये पलटे ऐसे थे कि उन्होंने आंखों के पर्दे उठा दिए। उस्ताद तासीर तासीर बहुत किया करते थे, मगर हमारी समझ में आता था। एक मरतबा क्या हुआ, रमजान शरीफ का जमाना था, एक दिन तय हुआ कि सहर खाकर और फजर पढ़कर ही सुनेंगे। बाजा पास रखा था, कभी उस्ताद गाते थे कभी हम। इतनी में एक आवाज आई, बड़ा जोर था उस आवाज में। हमने फटाक फटाक खिड़कियाँ खोल दी, झांक कर देखा एक फकीरी गाती चली जा रही। जरा सुनिए कि इस गाने में क्या जादू था।

लोग कहते हैं आज के मॉडर्न जमाने में क्लासिकल म्यूजिक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, इसमें आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं, मगर ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि गजल और उसकी गायकी भी क्लासिकल म्यूजिकी का ही एक अंग है। बदलते हुए जमाने ने जहां हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहां म्यूजिकी ने भी नई कदरों की कदर की है। मैं नयेपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहां तक आज के फनकार और मूसीकार नयेपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

हम समझते हैं ठुमरी ख्याल और राग दोनों से ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कि ठुमरी गाने में सिर्फ सुर और लय का ही ख्याल नहीं रखना पड़ता, बोलों का भी रखना पड़ता है, बोलों की अलग अलग कैफियत का भी रखना पड़ता है। यही नहीं, पूरी बंदिश जो मजमूनी कैफियत जो उस मखसूस ठुमरी का मिजाज है, यहाँ तक जिस राग में उसे गाया जा रहा है या जिन जिन रागों का उसमें पुर दिया जाता है, उनका भी रखना पड़ता है।

मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट को आवाम के साथ मिलकर जरूर चलना चाहिए। उसकी कामयाबी इसी में, जहाँ तक हमारे अपने वतन का यानी हिंदुस्तान का ताल्लुक है, यहाँ के लोग मुझे इज्जत देते हैं, प्यार से सुनते हैं, उसकी मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, हमेशा रहूंगी। मैं अपने बारे में सिर्फ ये कह सकती हूँ।

0: में आप सुन रहे थे फीचर करेजवा पे लागी कटार। तहरीर और पेशकश मोहम्मद अली मौज की थी। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के केवड़िया में एकता नगर के मकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड पेश करेंगी। वजीर खारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वजराए खारजा के साथ बातचीत की है। बरतानिया ने ईरान की पुष्ट पनाही वाले हौसियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तेफाक कर लिया है। और आयरलैंड के डेटा के तहफ्फुज़ से मुतालिक कमीशन ने यूरोपीय यूनियन के राजदारी से मुतालिक सख्त

लता मंगेशकर के साथ ये थे शैलेंद्र सिंह, फिल्म का नाम था बॉबी। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है, फिल्म है चरित्रहीन।

रामबल राम फिल्म का नगमा भी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुना। अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश को फिल्म है शोर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा आपने रोटी फिल्म से सुना। अब सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म है कुर्बानी।

0: सुनील दुगाने आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम अभी जारी है। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है अलख दास।
1: हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही बनाम अलख दास हिंदी भाषा के किस कमाल के शायर थे, इस हकीकत से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। उनकी सूफी तालीमात और मुनकसर मिजाज शख्सियत पर अनगिनत किताबें लिखी गई हैं, लेकिन अलख दास को अगर हम तारीख के औराक में तलाश करें तो चंद मुसन्निफीन की तसनीफात के चंद मजामीन ही मिलते हैं, जबकि एक बहुत अमीक फलसफा उनके हिंदवी कलाम में पिन्हा है। उनका दौर सियासी उथल पुथल का दौर था। मुगलिया हुकूमत अपने पांव पसार रही थी और अवाम के दिलों पर जूद और रंज छा रहा था। एक तरफ गुरु नानक और संत कबीर अपनी बारी में अवाम के दरमियान रवादारी और मसावात के फूल खिलाने के लिए कोशा थे, तो दूसरी तरफ हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही अपने फारसी कलाम के साथ हिंदवी भाषा में सियासी इंतशार से दुखी इंसानियत को मोहब्बत और इसार का पैगाम दे रहे थे। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह सन 1456 ईस्वी में रुदौली में पैदा हुए और रुदौली के हालात सियासी रद्दोबदल की नजर हो गए तो शेख करनाल के पास शाहबाद मुंतकिल हो गए। उस वक्त वहां सुल्तान सिकंदर लोधी की हुकूमत थी। एजाजुल्लाह कुद्दूसी अपनी तसनीफ शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही और उनकी तालीमात में लिखते हैं कि तकरीबन 38 साल आपका क्याम शाहबाद में रहा, हजारों इंसानों ने आपसे हिदायत हासिल की और वहां आपने इल्म इरफान के वो चश्मे जारी किए कि हजारों तश्नगान मार्फत ने सैराबी का सामान हासिल किया। सन 1523 और 24 में बाबर की लाहौर और देवालपुर पर फतेह पाने के बाद दिल्ली के करीब कुर्ब जवार में सियासी तब्दीली के आसार नुमाया होने लगे। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह शाहबाद से गंगोह तशरीफ ले गए। यहां उनकी जिंदगी का आखिरी दौर गुजरा और 27 नवंबर सन 1537 को आपने पर्दा किया। 84 साल की उम्र पाई और गंगो में आराम फरमा हुए। गंगो में आपके आस्थाने पर मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों का मजमा रहता है। उनकी खानका का दर हर बंदे के लिए खुला है, जहां बिला तफरीक सबको बराबरी का दर्जा हासिल है।

आनंदराज आनंद और श्वेता पंडित को आपने सुना फिल्म थी वेलकम। अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक को, फिल्म है ये है जलवा।

0: अब ही एक तंगर में रोशनियों के साथ शानदार स्टेज सज चुका है, क्योंकि केवड़िया पहली बार तारीखी 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सिनेमा के इस अजीमशान जश्न के लिए मुल्क भर से नामवर अदाकारों, मारूफ फिल्म साजों और तकनीकी माहिरों ने तकरीबगाह पहुंचना शुरू कर दिया है। ये तकरीब साल 2024 की शानदार सिनेमाई कामयाबियों को सराहने के लिए मुनाकिद की जा रही है। फीचर फिल्मों के अहम ऐलानात में आर्टिकल 370 को बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि यामी गौतम ने इस फिल्म में अपने किरदार के लिए बेहतरीन अदाकारा अवार्ड जीता है। बेहतरीन अदाकार का एजाज ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरक तौर पर दिया गया है। वज़ीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर कल रात फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारिजा के साथ बातचीत की और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। डॉ जयशंकर अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के लिए भारतीय वफद की सरबराही करते हुए इतवार को न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे हैं। डॉ जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के पोडियम से अमूमी बहस के दौरान आलमी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। फ्रांस के वज़ीर ख़ारिजा के साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि बाकायदगी से मीटिंगों और टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों मुल्कों को खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी की रफ्तार बरकरार रखने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान इलाकाई और आलमी उमूर, खासतौर पर यूक्रेन और खलीज के बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाहात समेत कसीर रुखी मामलात पर बातचीत की। बरतानिया ने ईरान की पुष्ट पनाही वाले हौसियों के हमलों से निपटने के खातिर सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तेफाक किया है। हौसी यमन के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाकों पर कंट्रोल रखते हैं। सऊदी अरब ने उनकी तरफ से हमलों में इजाफे के बाद बरतानिया से मदद तलब की थी। इस साल फरवरी में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के आगाज के बाद से जारी जंग के दौरान यह एक नई महाजराई है। आने वाले दिनों में बरतानिया फिजा में ही लड़ाका तैयारों को ईंधन फराहम करने की खातिर एक वाइजर तैयार करेगा। बरतानिया और सऊदी अरब दहाइयों से करीबी फौजी इत्तेहादी रहे हैं और बरतानिया सऊदी अरब को हथियार सप्लाई करने वाले बड़े मुल्कों में से एक है। इससे पहले साल के आगाज में बरतानिया ने ईरान के साथ अमरीका और इसराइल के तनाजे के दौरान सऊदी अरब को ईरान के मिसाइल हमलों से तहफ़ फराहम करने की खातिर उसके यहां अपना फिजाई दिफाई निजाम इसका हिस्से पर तैनात किया था। अमरीका ईरान पर इकतसादी दबाव बढ़ा रहा है। उसने ईरान को वार्निंग दी है कि कल से ईरान की एयरलाइंस बैनोकामी एविएशन से बाहर की जा सकती है। एक अमरीकी न्यूज चैनल से बातचीत में अमरीका के वजीर खारजा स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमरीकी इकतसादी बंदिशों के नतीजे के तौर पर 23 सितंबर से दुनिया भर में ईरान की तमाम तरह एयरलाइंस पर पाबंदी होगी। उन्होंने मुतनबे किया कि ईरानी प्रवासियों को ईंधन, लैंडिंग की सहूलियत और टिकट वगैरह जैसी खदमात फराहम करने वाली गैर मुल्की कंपनियों को भी इन अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। यह इकदाम अमरीका के ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद बैन अवी मालियाती और कमर्शियल नेटवर्क तक ईरान की रसाई को रोकना है। इस दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी तनाजे के सिलसिले में रवा हफ्ते न्यूयॉर्क में सिफारती सरगर्मियां खास तवज्जो की हामिल रही है, जहां अक़वामे मुत्तहिदा का 81वां इजलास जारी है। ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पज़श्कियान आज न्यूयॉर्क पहुंच सकते हैं, जबकि वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। इस दौरान अरब ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात पर भी जोर दिया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के सिफारती मुशीर डॉक्टर अनवार करकाश ने यह कहते हुए ईरान के साथ ताल्लुकात में एक नई तर्ज फिक्र पर जोर दिया है कि इलाकाई सलामती से मुतालिक मुज़ाकरात न सिर्फ ईरान और अमरीका के दरमियान बल्कि ईरान और अरब ममालिक के दरमियान भी होने चाहिए। उधर कतर ने ईरान और इसके पड़ोसी खलीज ममालिक के एक दूसरे पर वसी तरह इक्तसादी इंहसार को देरपा इलाकाई इस्तेहकाम में ताउन और खलीजी ममालिक में सिक्योरिटी की जमानत का एक रास्ता करार दिया है। قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری کا کہنا ہے کہ قطر ایران اور امریکہ کے مابین سمجھوتے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آئرلینڈ کے ڈیٹا پروٹیکشن کمیشن نے گوگل پر 40 کروڑ 30 لاکھ یورو کا جرمانہ لگایا ہے۔ یہ جرمانہ لوگوں کا سراغ لگانے کے طریقوں سے متعلق، یورپی یونین کی رازداری سے متعلق سخت ضابطوں کے خلاف ورزی کی پاداش میں عائد کیا گیا ہے۔ نگرانی ادارے نے یہ پتہ لگایا ہے کہ 2018 اور 2020 کے درمیان گوگل نے غیر قانونی طریقے سے یوزرز کی لوکیشن جانکاری کو ٹریک کیا اور پروسیس کیا، اور اس کے لیے اس نے 3 اصل فیچرز اپنی ویب اور ایپ سرگرمی کی سیٹنگ، اپنے لوکیشن ہسٹری میپنگ ٹول اور لوکیشن ایکوریسی کا استعمال کیا جو انڈرائڈ آپریٹنگ نظام میں موجود ہے۔ آئرلینڈ 27 ملکوں پر مشتمل یورپی یونین میں گوگل کے لیے اہم نگراں ملک ہے، کیونکہ امریکہ کی اس بڑی ٹیک کمپنی کا یورپ میں ہیڈ کوارٹر ڈبلن میں واقع ہے۔ آئرلینڈ کے اس نگراں ادارے نے ان معاملات میں قائدانہ رول ادا کیا ہے اور اس 6 سال کی تحقیقات میں نتیجہ اخذ کیا ہے کہ گوگل نے اس حساس ڈیٹا کو جس طرح سے سنبھالا ہے اس کے بارے میں یہ کمپنی کھلا، منصفانہ اور شفاف طرز عمل اختیار کرنے میں ناکام رہی ہے۔ دبئی میں بھارتی کونسلیٹ جنرل نے سیوا پکھوڑا کے حصے کے طور پر UAE کے دبئی اور شمالی امارات میں قانونی مشاورت سے متعلق ایک کیمپ کا اہتمام کیا۔ یہ کیمپ 21 ستمبر کو منعقد کیا گیا، جس میں مختلف معاملات میں بھارتی برادری کے لوگوں کو مفت قانونی رہنمائی فراہم کی گئی۔ انتخابی کمیشن مغربی بنگال میں ٹریبونل کی تعداد میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ ان افراد کی درخواستوں پر تیزی کے ساتھ کاروائی کو یقینی بنایا جا سکے جن کے نام ایس آئی آر عمل کے دوران ووٹر فہرستوں میں شامل نہیں کیے گئے ہیں۔ ریاست میں فی الحال 19 ٹریبونل ہیں۔ بھارت کی خاتون اوپنر اسمرتی مندانا نے تاریخ رقم کی ہے۔ وہ دنیا میں ایسی پہلی کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے خواتین کے بین الاقوامی کرکٹ میں 11,000 رن بنائے ہیں۔ انہوں نے یہ ریکارڈ ایشین گیمز کے فائنل میں قائم کیا۔ انہوں نے نیشن میں کوروگی اسپورٹ پارک میں سری لنکا کے خلاف کھیلتے ہوئے یہ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے بھارت کی سابق کپتان مٹھالی راج کے 10,868 رن کا ریکارڈ توڑا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام گجرات کے کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس، ایکواڈور، سلواکیا اور سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ برطانیہ نے ایران کی پشت پناہی والے حوثیوں کے حملوں سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کو محدود فوجی مدد فراہم کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ آئرلینڈ کے ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق کمیشن نے یورپی یونین کی رازداری سے متعلق سخت ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے پر گوگل پر 40 کروڑ 30 لاکھ یورو کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اور بھارت کی خاتون اوپنر اسمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے۔ وہ دنیا میں ایسی پہلی کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के कवड़िया में एकता नगर के मुकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वज़ीरे खारिजा के साथ बातचीत की। बरतानिया ने ईरान की पुश्तपनाही वाले हौसियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने से इत्तफाक कर लिया है और आयरलैंड के डेटा के तहफ्फुज़ से मुतालिक कमीशन ने यूरोपीय यूनियन के राजदारी से मुतालिक सख्त जाब्तों के खिलाफ वर्जी करने पर गूगल पर 40 करोड़ 30 लाख यूरो का जुर्माना आयद किया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर अभी तक आप पहली मजलिस की नशरियात सुन रहे थे। 1:15 होने को है, हमारी पहली मजलिस अब खत्म होती है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तो

चंपा कली को 1957 की हिंदी फिल्मों की सूची में रोमांटिक फिल्म के रूप में दर्ज किया गया। फिल्म में भारत भूषण ने माधो और सुचित्रा सेन ने राजू की भूमिका निभाई। भारत भूषण उस दौर के ऐसे अभिनेता थे जिनके अभिनय में रोमांस के साथ साथ एक नरम भावनात्मक रंग दिखाई देता था। दूसरी ओर सुचित्रा सेन भारतीय सिनेमा, खासकर बंगाली सिनेमा की बेहद महत्वपूर्ण अभिनेत्रियों में उनका नाम लिया जाता है। उनके करियर का दिलचस्प पहलू ये भी है कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत अधिक काम नहीं किया, लेकिन जिन फिल्मों में नजर आई उनमें उनकी स्क्रीन उपस्थिति अलग ही दिखाई देती थी। चंपा कली में उनका किरदार राजू का था। यही वजह है कि आज जब हम इस फिल्म के गीत सुनते हैं तो वे सिर्फ पुराने गीत नहीं लगते, वे हमें सुचित्रा सेन, भारत भूषण के उस दौर की सिनेमाई जोड़ी की याद दिलाते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है चंपा कली और कार्यक्रम के साथ मैं हूं अर्चना गोयल।
1: hey, आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है?
2: ना नहीं,
3: नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, चंपा कली से जुड़ी एक ऐसी जानकारी जो इस फिल्म के संगीत को और रोचक बना देती है। फिल्म में ओ ग्वालिन क्यों मेरा मन मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है। इस गीत को लेकर पुराने गीत संग्रह में एक दिलचस्प टिप्पणी मिलती है कि इसे भारत भूषण और सुचित्रा सेन पर फिल्माया गया। इसे सुनकर यह बात खासतौर पर ध्यान खींचती है कि भारत भूषण के लिए इस फिल्म में हेमंत कुमार की अपेक्षा रखने वाले श्रोताओं को यहां रफी साहब की आवाज सुनाई देती है। यही पुराने सिनेमा का आकर्षण है। ये भी गौर करने वाली बात है कि हेमंत कुमार के संगीत में अलग अलग भावों को अलग अलग गायकी के रंग से सजाया गया।

मोहम्मद रफी साहब के गाए इस खूबसूरत गीत के बाद अब बढ़ते हैं आप सबके मैसेजेस पर। हमें बहुत सारे ईमेल्स मिले हैं और अब बढ़ते हैं मेल्स की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह का। और आप हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। पिपरिया से आप हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और शिप्रा गुप्ता। पनारी छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। आप हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल सहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और निर्मित आहूजा। और ये हैं फाजिल का पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी, दिवांशी, वाणी खेड़ा और आर बी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और उनके परिवार के सभी लोग। और ये मैसेज हमें भेजा है ग्राम नाहर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बम्बू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांचल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। आपके साथ ही हैं छग्गा राम साहू और ये लिख रहे हैं कि फिल्म चंपाकली की मधुर सदाबहार गीत संगीत कहानी और फिल्म से जुड़ी रोचक बातों का आनंद ले रहे हैं और प्रोग्राम की शानदार मनभावन लाजवाब पेशकश के लिए इन्होंने हमें बधाई दी है। तो जगाराम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और हमसे जुड़े हैं गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और ये लिख रहे हैं कि आज की फिल्म चंपा कली की कहानी सुन रहे हैं और इनको बहुत अच्छा लग रहा है जो जानकारी आप दे रहे हैं। तो राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक अली खान हमें मैसेज कर रहे हैं लेकिन इनका पता नहीं है कि ये कहां से हमें मैसेज कर रहे हैं। और आप हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव और ये लिख रहे हैं कि चंपा कली की बारे में सुंदर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार और ये लिख रहे हैं कि आज आप चर्चा कर रहे हैं फिल्म चंपा कली के बारे में, बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से, कहानी और नगमे भी सुनवा रहे हैं, बेहतरीन जानकारी हमें मिल रही है कि छुप गया कोई रे बहुत सुना चाहता है, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और अब बढ़ते हैं फिल्म की तरफ। चंपा कली की चर्चा हेमंत कुमार के बिना अधूरी है। उन्होंने फिल्म का संगीत तैयार किया, गीतों में विरह, प्रेम, सावन, शरारत, भक्ति, कई अलग अलग भाव दिखाई देते हैं। जरा कल्पना कीजिए 1957 का समय, न आज जैसे रिकॉर्डिंग तकनीक, न डिजिटल एडिटिंग, न ऑटोट्यून, फिर भी आवाजों में जो गर्माहट थी वो आज भी कानों से सीधा दिल तक पहुंचती है।

0: उस गाना चांद का ये टुकड़ा छुपाए थे।
1: बोलो कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपाए थे।
0: छुपे गाना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से, ये चांद का टुकड़ा छुपाए से।
1: लो जी इतने से।

और बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है बिरमघाट गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार का। ये लिख रहे हैं कि इस फिल्म में दिग्गज संगीतकार रवि की शुरुआत हुई। इस फिल्म का मुख्य संगीत मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार ने दिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में उनके असिस्टेंट सहायक के रूप में रवि काम कर रहे थे। रवि ने बाद में चलकर हिंदी सिनेमा को स्वतंत्र रूप से चौदहवीं का चांद और वक्त जैसे ढेरों यादगार गाने दिए। फिल्म में महान अभिनेता प्राण ने वीरा नाम के विलेन का किरदार निभाया था, जो बाद में कहानी में लव ट्रायंगल और ड्रामा पैदा करता है। तो अजीत जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से। और ये मैसेज हमें मिला है नलेश्वर नगर नरवेल महाराज से। पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल मलकापुर महाराज से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष। आप हैं फारूक अली खान, इनका भी जगह का नाम नहीं मालूम चल पाया है। और आप हैं मेरठ से कविता और दिग्दर्शन गौड़, और इनको गाने और कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहे हैं। दिग्दर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ पलारी से आप हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा। खजाना गेट अमृतसर से आप हैं प्रेम सागर और शुभलता। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान। बबलपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन और नेहा जगदीश देवांगन। गुरमी सिंह मेहता साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़े हैं अशोक कुमार सहगल। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया दी। और अब बढ़ती है प्रोग्राम की तरफ। दोस्तों, चंपा कली के गीतों की सूची पर नजर डालें तो हमें एक दिलचस्प बात दिखेगी, वो है अलग अलग भाव यानी विविधता के गीत। कहीं मन की उमंग, कहीं इंतजार और पुकार।

हर कहीं सावन और प्रेम, शरारत के साज, कृष्ण भक्ति और भक्ति का रंग। एक ही फिल्म में संगीत के इतने अलग अलग भावों का होना उस दौर के फिल्म संगीत की व्यापकता को दिखाता है।

तो दोस्तों 1957 की फिल्म चंपा कली हमें सिर्फ एक फिल्म की याद नहीं दिलाती, हम उस दौर के फिल्म संगीत की एक झलक देखते हैं जबकि इस कहानी का हिस्सा हुआ करते थे, जब राजेंद्र कृष्ण जैसे गीतकार शब्दों से दृश्य रचते थे और हेमंत कुमार उन शब्दों को धुन देते थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और हेमंत कुमार जैसे गायक उन भावनाओं में आवाज भर देते थे। शायद 6-7 दशक गुजर जाने के बाद भी जब कोई गीत रेडियो पर कहता है छुप गया कोयले, तो हमारे भीतर कोई पुरानी खिड़की खुल जाती है। तो ये था हमारा आज का एक ही कलाकार एक ही फिल्म से कार्यक्रम। फिलहाल अपनी दोस्त अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। खबरें इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दिया खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात विखे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नवी दिल्ली च 9वें भारत कौमांतरी जल हफ्ते 2026 का आगाज किया। पानी की सूझबूझ नाल वरतो ते संभाल ते दित्ता जोर। गृहमंत्री अमित शाह वालों अज नवी दिल्ली च पंजाब समेत 36 सूबियां ते केन्द्र शासित प्रदेशां दे नशा विरोधी कार्यबलां दे मुखियां दी तीजी राष्ट्रीय कांफ्रेंस का उद्घाटन। पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 615वें प्रकाश पुरब मनाने 3 नवंबर तो 4 शोभा यात्रावां कढ़न दा कीता फैसला। एशियाई खेडां च भारतीय महिला टीम ने 2020 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले च श्रीलंका नूं 147 दौड़ां नाल हरा के सोने का तमगा अपने नाम कीता। भारतीय सिनेमा विच एक नवा अध्याय सिरजते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शाम गुजरात के केवड़िया स्थित एकता नगर विखे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। साल 1954 च स्थापित पुरस्कारों को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मानों में एक मनिया जाता है, जो फिल्म, फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म, सिनेमैटोग्राफी समेत वख-वख श्रेणियों च कलात्मक ते तकनीकी उत्तमता नूं मानता दिंदे ने। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय की एक नवी नीति के हिस्से वजों पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी तो बाहर प्रदान किए जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण नूं दर्शाते हुए एकता नगर विखे समारोह च देश भर दीआं सिनेमैटिक प्रतिभावां शामिल होणगीआं। राष्ट्रपति तजर्बेकार फिल्म अदाकार अनंत नाग नूं साल 2024 लई दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अज नवी दिल्ली च 9वें भारत कौमांतरी जल हफ्ते 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने पानी की सूझबूझ नाल वरतो ते संभाल ते जोर दिता। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल हफ्ता जल प्रबंधन दी चुनौतियां ते सारे हिस्सेदारां दरम्यान विचार वटांदरे लई एक महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हरेक नागरिक नूं सुरक्षित ते लोड़िंदा पीण वाला पानी प्रदान करने लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि पानी एक सांझा स्रोत है ते इस लई जल सुरक्षा भी एक सांझी जिम्मेवारी है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
1: इस साल जल हफ्ते का विषय जलवायु पक्षी पानी प्रबंधन रखा गया। यह 5 रोजा कौमांतरी समागम दौरान नीति निर्माताओं, जल क्षेत्र के माहर, खोजकर्ता, उद्योग, सिविल समाज के नौजवान पेशेवर उभर रही पानी से संबंधित चुनौतियां ते हल ते विचार चर्चा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नवी दिल्ली पंजाब समेत 36 सूबियां और केन्द्र शासित प्रदेशों के नशा विरोधी कार्यबलों के मुखियों के तीजे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिनों कांफ्रेंस का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को नशे के खतरे से बचाने के तरीकों पर चर्चा करना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वालों आयोजित कांफ्रेंस में 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के नशा विरोधी कार्यबलों के मुखी शामिल हो रहे हैं। कांफ्रेंस का विषय सिफ्ट संकल्प पर सांझी जिम्मेवारी रखा गया। इस कांफ्रेंस 2026 नती के नशा नियंत्रण टीचा प्राप्त करने कार्यबलों की भूमिका पर चर्चा करेगी। ए नशे कारण सप्लाई मंग के नुकसान को घटाने केन्द्र सरकार के उपरालों को होर मजबूत करने लिए ढुकवीं नीतियां अपनाने पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश के नौजवानों को नशे के माड़े प्रभावों से बचाने लिए एक मिशन मोड पर काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक एक विकसित भारत का टीचा रखा है ते यह नशा मुक्त भारत बनाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। चोण कमिशन ने आज राज्यसभा की 11 सीटों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटा और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, बीएसपी के रामजी ते 6 होर का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तराखंड के नरेश बांसल भी 25 नवंबर को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। चोण कमिशन ने पश्चिमी बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट लिए जिमनी चोण का भी ऐलान किया है। तृणमूल कांग्रेस के संसद मैंबर रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे कारण यह सीट खाली हुई थी। नामजदगी प्रक्रिया 29 सितंबर में शुरू होगी तो वोटिंग 16 अक्टूबर में होगी। कमिश्नर ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद दिया 11, बिहार दिया 8, महाराष्ट्र दिया 5, कर्नाटक दिया 4 सीटा ले भी चोणा का ऐलान किया। इन चोणा ले नामजदगियां 29 सितंबर में शुरू होनी है तो वोटा 3 अक्टूबर में पाया जाएगा। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRNEW ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਰਮ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕਰਤੱਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਐ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਮੀਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨੂਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਹਿਲੀ V4+ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ V4 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲੋਵਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਪਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ

0: and directed district administrations to closely monitor vulnerable areas. All schools and Anganwadi centers in several districts have been ordered closed from today for 3 days as a precaution. Fishermen have also been advised not to venture into the sea. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: Heavy rain will continue in Madhya Pradesh for the next few days. The weather department has issued an alert for several districts. A report.
2: Storm of heavy rain will begin in Madhya Pradesh from 23rd of September. According to the weather department, the system will be more active on 24th and 25th of September. In next 2 days, heavy to very heavy rain is likely in 17 districts. Jabalpur, Rewa, Shahdol and Sagar divisions will be affected the most. Bhopal and Narmadapuram divisions are also on alert. The weather department says a low pressure area is behind this. The state has received an average of 33.7 inches of rain so far. The southwest monsoon will start withdrawing from the last week of September, but heavy rain is expected before that. Abhinav Goyal, Akashvani Samachar, Bhopal.
1: In women's cricket, India thrashed Sri Lanka to win the first ever gold medal in the final in Asian Games 2026 at the Aichi Prefectural Korogi Sports Park, Japan. Sri Lanka were bowled out for just 69 in 15.4 overs, as India completed a comprehensive victory by 147 runs. Batting first, India posted a commanding 216 for 3 in 20 overs. And India's women's opener, Smriti Mandhana, created history as she became the first cricketer in the world to score 11,000 runs in women's international cricket. Smriti made the record during the Asian Games final against Sri Lanka in Nishin. Mandhana smashed 3 sixes and 3 fours in the first 4 overs to get India off to a blistering start. She surpassed former Indian captain Mithali Raj's record of 10,868 runs across all formats. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Vice President C.P. Radhakrishnan says India International Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon challenges of water management. Union Home Minister Amit Shah inaugurates third National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and UTs in New Delhi to deal with drug menace. Government urges bank employees to refrain from resorting to strikes, agrees to keep performance-linked incentive scheme in abeyance. And Indian women's team thrashes Sri Lanka to win gold medal in Asian Games. Opener Smriti Mandhana creates history as she becomes first woman cricketer to complete 11,000 runs in international cricket. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
4: Water should be used precisely where the requirement should be met with the smallest possible

0: quantum of water. This Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का सम्मान हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
5: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू

0: चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
1: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 AD को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
3: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दें। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करें तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
2: केंद्रीय शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
4: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
5: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
4: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए news.AIR.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान

0: व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
1: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। आईएमडी ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण ओडिशा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 3rd राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ एक्ट्रेस ऐसी रहीं जिन्होंने बहुत कम समय में दर्शकों के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। इनकी खूबसूरती के साथ इनकी मासूमियत, एक्टिंग की सहजता और पर्दे पर दिखाई देने वाली सादगी इन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती थी।

जी हाँ दोस्तों, ये सॉन्ग को सुनने के बाद आप समझ ही गए होंगे आज हम किस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं। ये एक्ट्रेस थी रंजीता कौर। आज ही के दिन यानी 22 सितंबर 1956 को पंजाब में जन्मी रंजीता कौर के पिता गवर्नमेंट अफसर थे और माँ हाउसवाइफ। इनकी पढ़ाई शिमला के गवर्नमेंट स्कूल में हुई। बेहद कम उम्र में ही इन्होंने हीरोइन बनने के सपना देख लिया था। इसी वजह से अपनी एजुकेशन पूरी करते ही ये पुणे चली गई और यहाँ आकर इन्होंने FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से एक्टिंग का कोर्स किया और किस्मत देखी।

कोर्स पूरा करते ही इन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई और रच दिया इतिहास। आकाशवाणी की तरफ से रंजीता जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। इनकी लाइफ के अनसुने किस्सों के बारे में आगे हम जानेंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म अखियों के झरोके से का ये शानदार सा गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को, और अभी आप जो सुन रहे हैं कार्यक्रम है एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं रंजीता कौर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे एक्ट्रेस रंजीता कौर जी की। 1976 में इनके करियर की दिशा बदल गई। डेब्यू फिल्म थी लैला मजनू, जिसमें इनके साथ ऋषि कपूर ने लीड रोल निभाया था। इस फिल्म के बाद इनके लिए फिल्मों के दरवाजे तेजी से खुलने लगे, और फिर आया वो दौर जब रंजीता कौर का नाम लगातार बड़ी फिल्मों के साथ जुड़ने लगा। फिल्म लैला मजनू के बाद इनकी दो ऐसी फिल्म आई जिन्होंने इन्हें दर्शकों के बीच मजबूत पहचान दिलाई। पहली थी आंखियों के झरोखों से, जिसमें इन्होंने सचिन पिलगांवकर के साथ काम किया, और दूसरी फिल्म थी पति पत्नी और वो, जिसमें संजीव कुमार जैसे अनुभवी अभिनेता के साथ काम किया। दोनों ही फिल्मों के लिए इन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला। 70 के दशक के आखिरी तक रंजीता एक ऐसी एक्ट्रेस बन चुकी थी जिनके नाम से दर्शकों को एक खास तरह की फिल्मों की उम्मीद होती थी, रोमांटिक, भावनात्मक और पारिवारिक कहानियां। इन्होंने ऋषि कपूर, सचिन, संजीव कुमार, राजबब्बर, राजकिरण, विनोद मेहरा, अमोल पालेकर और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन इनकी एक ऐसी ऑन स्क्रीन जोड़ी बनी जिसे हिंदी सिनेमा के दर्शक लंबे समय तक याद रखने वाले थे। उसके बारे में भी हम जानेंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म का ये गीत जिसको हमने लिया है फिल्म आदत से मजबूर फिल्म से। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं रंजीता कौर, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, 80 का दशक रंजीता कौर के फिल्मी करियर का बेहद महत्वपूर्ण अध्याय था। इस दौर में इन्होंने लगातार कई फिल्मों में काम किया और अलग अलग तरह के किरदारों को निभाया। रंजीता ने अपने समय के तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती के साथ इनकी जोड़ी खास तौर से फेमस हुई। दोनों ने सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन, घर एक मंदिर, बाजी और गुनाहों के देवता जैसी कई फिल्मों में के साथ काम किया। फिर 1942 में आई फिल्म सत्ते पे सत्ता भी इनके करियर की चर्चित फिल्मों में शामिल रही। फिल्म में ये अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई, लेकिन हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब वो अपने करियर की रफ्तार से अलग जिंदगी के दूसरे पहलुओं को प्राथमिकता देता है। रंजीता के जीवन में भी एक ऐसा ही समय आया, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये बेहतरीन सा गीत।

दोस्तों, इस वक्त हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रंजीता कौर की और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। किसी कलाकार के लिए कैमरे से दूर होना आसान फैसला नहीं होता, लेकिन जिंदगी सिर्फ फिल्मों का नाम नहीं है। एक्ट्रेस रंजीता ने अपने फिल्मी करियर के एक महत्वपूर्ण दौर के बाद एक्टिंग से दूरी बनाई। 1990 में फिल्म गुनाहों के देवता इनके शुरुआती फिल्मी दौर की अंतिम फिल्मों में शामिल रही। इसके बाद इन्होंने कुछ टेलीविजन प्रोजेक्ट्स जैसे अजूबे, साहिल और घुटन और नूरजहां में भी काम किया, पर इनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा परिवार और निजी जिंदगी को समर्पित रहा। रंजीता ने बिजनेसमैन राज मसंद से शादी की और इनका एक बेटा स्काई है। फैमिली के साथ इन्होंने अमेरिका में भी कुछ समय बिताया। बाद में फैमिली पुणे में आकर रहने लगी। बावजूद इसके कि रंजीता जी के लिए सिनेमा भी इनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा और यही वजह है कि 15 साल बाद इन्होंने कमबैक किया। इनकी कमबैक स्टोरी भी जानेंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म जुल्म की पुकार का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे कुछ प्यारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनका भी नाम पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से है मोहम्मद खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये हैं गोट कराची से अमर रमेश कुमार, टेलर मास्टर किशन लाल और जफर सादिक, और ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुरावाला से स्वर्णजीत गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुन्नूर गुलाल और अविराज सिंह, और संदीप जी, ज्योति, मन्नत, भारत, सहानी, पिंगावाला चौक जालंधर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और ये हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से तुलसी, वीना, डब्बू, चैतन्य, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान, और ये हैं वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, और ये सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत। और आगे चलते हैं, ये है गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, शालीमार बाग, अशोक कुमार सहगल, और आगे हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार, और मेरठ से कविता और दिग्दर्शन गौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से सैयद मंसूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम और फारूक अली खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरा से जिला हिसार से राजकुमार डुंडी, प्रमोद कुमार डुंडी, और आगे चलते संबल कांकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर छिंदा, जैसे जयवीर, जस्सी, सीता और गीता भी हमारे साथ है। भवरपुर बसाना से राधेश्याम देवगन, चंपा, जगदीश देवगन जी हैं। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम के हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और अब बात करते हैं रंजीता जी की। 15 साल बाद 2005 में एक्ट्रेस रंजीता ने फिल्म अनजाने से बड़े पर्दे पर कमबैक किया। फैंस के लिए इनकी फिल्मों में लौटना अपने आप में खास था। 2008 में इन्होंने अपने को एक्टर सचिन के साथ फिल्म जाना पहचाना में काम किया। ये फिल्म आंखियों के झरोखों से का सीक्वेल थी। इसके बाद 2012 में इन्होंने जिंदगी तेरे नाम फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिर काम किया। इस तरह लंबे अंतराल के बाद रंजीता और मिथुन की जोड़ी को फिर से बड़े पर्दे पर देखा गया। रंजीता की वापसी ने ये भी साबित किया कि अच्छे कलाकारों की पहचान केवल इनकी लोकप्रियता के दौर से नहीं होती, इनकी पहचान उन किरदारों से भी होती है जिन्हें दर्शक सालों बाद याद करते हैं, और यही रंजीता जी की लाइफ को दिलचस्प बनाता है। तो चलिए इसी बात पर सुनते हैं फिल्म सत्य पर सत्ता का ये एनर्जेटिक सॉन्ग और आखिरी सॉन्ग भी।

श्रोताओं, बतौर एक्ट्रेस रंजीता कौर ने अपने करियर में करीब 47 फिल्मों में काम किया। फिर पति के साथ अमेरिका में 7-11 स्टोर्स का बिजनेस संभाला और बेटे स्काई का भी ध्यान रखा। मौजूदा दौर में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रंजीता जी अपनी फैमिली के साथ पुणे के गोरे गांव पार्क में रहती हैं। 70 साल की रंजीता का लुक भी काफी हद तक बदल गया है, पर इनकी फिल्मों को देखकर फैंस आज भी इन्हें बड़े पर्दे पर मिस करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को इस प्रोग्राम से अनुमति दीजिए, क्योंकि हम अगले प्रोग्राम में 3 बजे हाजिर होंगे मैटिनी मेलोडीज के साथ।

0: मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्ण ने कहा कि पानी से मुतालिक हफ्ता एक ऐसा अहम प्लेटफार्म है जहां सभी मुतालिका फरीकेन पानी के बंदोबस्त में दरपेश चैलेंजों से निपटने पर बातचीत के लिए यकजा हो सकते हैं। हुकूमत ने बैंक मुलाजमीन से हड़ताल पर जाने से गुरेज करने और अपने मामलों को बातचीत के जरिए हल करने की अपील की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम केवड़िया में एकता नगर के मुकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता करेंगी। वजीर खारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वजरा खारजा के साथ बातचीत की है। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में श्रीलंका को हराकर सोने का पहला तमगा जीता है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने तारीख रकम की है। वो ऐसी पहली खातून क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने बैन अवी क्रिकेट में अपने 11,000 रन पूरे कर लिए हैं। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में पानी से मुतालिक नवे भारत बैन अवी हफ्ते 2026 का अफ्ताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने पानी के कम से कम इस्तेमाल पर जोर दिया और खासतौर पर कहा कि इसका तहफ्फुज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पानी से मुतालिक हफ्ता एक अहम प्लेटफार्म है जिस पर तमाम मुतालिका फरीकेन पानी के बंदोबस्त में दरपेश चैलेंजों पर बातचीत कर सकते हैं। जलशक्ति के वजीर सीआर पाटिल ने पानी के तहफ्फुज की अहमियत को उजागर किया और कहा कि हुकूमत मुल्क के हर शहरी को पीने का महफूज और वाफिर पानी फराहम करने की पाबंद है। पानी से मुतालिक इस साल के हफ्ते का मौजू है आबो हवा से मुतासिर न होने वाला पानी का बंदोबस्त। 5 रोजा इस बैन अवी तकरीब में कसीर जहती प्लेटफार्म फराहम होगा जिसमें पॉलिसी साज पानी के मैदान में आलमी रहनुमा, माहरीन, मुहक्कीकीन, सनत, सिविल सोसाइटी और नौजवान पेशावर अफराद तबादले ख्याल, इख्तरा और शराकतदारी के लिए यकजा होंगे। हुकूमत ने बैंक मुलाजमीन से हड़ताल पर जाने से गुरेज करने और अपने मामलों को बातचीत के जरिए हल करने की अपील की है ताकि बैंकिंग खिदमात की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और अवामी शोबे के बैंकों की यूनियनों और अंजुमनों की जानिब से 28 से 30 सितंबर तक 3 रोजा मुल्की

0: हड़ताल के तराजू में ये अपील की गई है। दो अहम मुतालबात की यकसुई के लिए यह हड़ताल की जा रही है, जिनमें 5 दिन बैंकिंग का निफाज और कारकर्दगी से मुंसलिक तरहीबाती स्कीम PLI को वापस लेना शामिल है। मरकजी वजारत खजाने ने बताया कि हुकूमत ने तफसीली बातचीत के बाद PLI स्कीम को मौखर करते हुए एक मुतालबा मंजूर कर लिया है। वजारत ने बताया कि हड़तालों की वजह से बैंकिंग खिदमात में रखना पड़ता है और आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बैंक के कारोबार पर भी असर पड़ता है, जिसके नतीजे में बैंक मुलाजमीन के मफादात को नुकसान पहुंचता है। वजारत ने बताया कि हुकूमत ने काम के माहौल, शफाफियत और बैंक मुलाजमीन की बहबूद को बेहतर करने पर मरकूज कई इकदाम किए हैं। इनमें तनख्वाहों और भत्तों में इजाफा, सभी कैडर्स के नए पे स्केल तरतीब देना, बैंक मुलाजमीन के तकरीरात और तरक्की के तरीकेकार को सहल बनाना शामिल है, ताकि बरवक्त तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकतानगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश करेंगी। इन अवार्ड्स का सिलसिला 1954 में शुरू हुआ था, जिनसे सिनेमा में फीचर, गैर फीचर और कहानी समेत मुख्तलिफ जुमरों में फनकारी और तकनीकी महारत को तस्लीम करते हुए मुल्क के आला तरीन सिनेमा एजाज की नुमाइंदगी होती है। इत्तला और नशरियात की वजारत की जानिब से एक बड़े पॉलिसी कदम के तौर पर अवार्ड्स की यह तकरीब कौमी राजधानी से बाहर किसी दीगर रियासत में हो रही है। सदर जमहूरिया मुमताज अदाकार अनंतनाग को 2024 के दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज करेंगी। इत्तला और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी से तहरीक हासिल करते हुए कौमी फिल्म अवार्ड्स की मेजबानी मुल्क के सरकरदार सियाहती मकाम पर की जाएगी। अहमदाबाद हवाई अड्डा पहुंचने के बाद जनाब वैष्णव ने खासतौर पर कहा कि एकता नगर जहां दुनिया भर में मशहूर मुजस्मे इत्तेहाद कायम है, यहां सदर जमहूरिया और मुमताज फिल्म शख्सियतों की मौजूदगी में मुनाकिद होने वाली तकरीब से आलमी सियासत से मुतालिक बेदारी में इजाफा होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मनशियात की रोकथाम से मुतालिक टास्क फोर्स ANTF की तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। यह दो रोजा कॉन्फ्रेंस मनशियात की लानत से आइंदा नस्लों को बचाने के लिए एक ताकतवर प्लेटफार्म के तौर पर काम करती है। 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के ANTF सरबराहान इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जिसका इनेकाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कौम मुत्तहदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर कल रात फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वजरा खारजा के साथ बातचीत की और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। डॉ जयशंकर कौम मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के लिए भारतीय वक्त की सरबराही करते हुए इतवार को न्यूयॉर्क सिटी पहुंचे हैं। डॉ जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को कौम मुत्तहदा जनरल असेंबली के पोडियम से अमूमी बहस के दौरान आलमी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। फ्रांस के वजीर खारजा के साथ उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि बाकायदगी से मीटिंगों और टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों मुल्कों को खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी की रफ्तार बरकरार रखने में मदद मिली है। V4 और भारत की वजरा खारजा की पहली मीटिंग कल न्यूयॉर्क में कौम मुत्तहदा की जनरल असेंबली से अलग मुनाकिद हुई। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने मीटिंग में शिरकत की। उनके अलावा मीटिंग में पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक जमहूरिया के वजरा खारजा भी मौजूद थे। ये मीटिंग V4 के सदर स्लोवाक की सदारत में मुनाकिद की गई। वजारत खारजा ने बताया कि तबादला ख्याल में तिजारत व सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी व अख्तरा, मजबूत सप्लाई चेन, दिफा और सलामती, कनेक्टिविटी, तालीम, नकल व हमल और आवाम से आवाम के दरमियान तबादले जैसे मैदानों में ताउन के मौकों को भी शामिल किया गया। आज भारत समेत दुनियाभर में गेंडों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद गेंडों की बाकी बच जाने वाली 5 किस्मों के तहफ्फुज़ के बारे में बेदारी में इजाफा करना है। घरेलू तवानाई की दस्तियाबी, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, पानी के फिर से इस्तेमाल और अहम मदनियात के सप्लाई निजाम को महफूज रखने से मुतालिक چار متفقہ نتیجے اختیار کرنے میں بھارت بھی G20 کے دیگر ملکوں کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ امریکہ ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ اس نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ کل سے ایران کی ایئر لائنز بین الاقوامی ایویشن سے باہر کی جا سکتی ہے۔ ایک امریکی نیوز چینل سے بات چیت کے میں امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ امریکی اقتصادی بندشوں کے نتیجے کے طور پر 23 ستمبر سے دنیا بھر میں ایران کے تمام تر ایئر لائنز پر پابندی ہوگی۔ جاپان کے آئیچی پریفیکچرل کوروگی اسپورٹس پارک میں جاری ایشیائی کھیلوں میں خواتین کرکٹ فائنل میں بھارت نے سری لنکا کو 147 رن سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارتی خواتین نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوورز میں 3 وکٹ پر 216 رن بنائے۔ سری لنکا کی پوری ٹیم 15 اوورز اور 4 گیندوں میں محض 69 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی خاتون سلامی بلے باز اسمرتی مندھانا نے تاریخ رقم کی ہے۔ وہ دنیا میں ایسی پہلی کرکٹ کھلاڑی بن گئی ہیں جنہوں نے خواتین کے بین الاقوامی کرکٹ میں 11,000 رن بنائے ہیں۔ انہوں نے یہ ریکارڈ ایشین گیمز کے فائنل میں قائم کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ پانی سے متعلق ہفتہ ایک ایسا اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سبھی متعلقہ فریقین پانی کے بندوبست میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے پر بات چیت کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے بینک ملازمین سے ہڑتال پر جانے سے گریز کرنے اور اپنے معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام کیوڑیا میں ایکتا نگر کے مقام پر 72ویں قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے نیویارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فرانس، ایکواڈور، سلواکیا اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ اور بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے ایشین گیمز میں سری لنکا کو ہرا کر سونے کا پہلا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فیڈیش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات میری پسند۔ یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو میرا آداب۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں گربانی سے۔

सुखविंदर सिंह और साथियों से अभी आप सुन रहे थे कुर्बानी फिल्म थी हल्ला बोल। और जब सुनिए पवित्र पापी फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी का गाया हुआ नगमा निगार मौसीकार प्रेम धवन। इस नगमे में भी रूहानी कैफियत वही है जो थी गुरबानी में।

0: ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत प्रोग्राम अदब नुमा।
1: सभी सामयिन को नईम का आदाब। चले आए हैं जनाब एक पंथ दो काज करने। अब एक पंथ तो ये है कि आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम अदब नुमा, और दूसरा काज ये है जनाब कि आपसे इस बहाने हो जाती है मुलाकात, तो मुलाकात करने भी चले आए हैं, तो दोनों काम कर लेते हैं और प्रोग्राम तो आपको हम सुनवाएंगे ही अदब नुमा। और आप तो जानते हैं अदब नुमा में हम आपके लिए कलाम शायर लेकर आते हैं और इसके अलावा अफसाना भी आपको सुनवाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा मूड बनाया जाए और आपको पहले एक गजल सुनवा दी जाए। तो चलिए गजल सुन लेते हैं, और बड़ी खूबसूरत गजल है मिताली सिंह की आवाज में। ताजा फूलों की सी खुशबू है किसी के खत में, उसकी तहरीर गुलाबों की खबर लाती है।

0: समझ बैठे हैं।
1: अभी आप महसूस हो रहे थे फरियाद आजर के कलाम से, और उम्मीद यही है कि ये कलाम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब बारी है दोस्तों अफसाने की, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शमा अफरोज जैदी का तहरीर करदा अफसाना पारस। तो आइए सुनते हैं अफसाना पारस।
2: घंटी बजते ही प्रोफेसर शाहान फारूकी क्लास में दाखिल हुए। तमाम तलबा तालबात ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, फिर उनका इशारा पाते ही अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। उन्होंने सरसरी से नजर क्लास पर डालने के बाद अपने लेक्चर का आगाज किया। मौजूद था फिक्र इकबाल में अमन आलम का तसव्वुर। तमाम तलबा तालबात नहायत तवज्जो से उनका लेक्चर सुन रहे थे और जल्दी जल्दी नोट्स लेने में मसरूफ थे, लेकिन गदाला का ध्यान लेक्चर की जानिब नहीं था। वो बार बार पहलू बदल रही थी, एक कब क्लास खत्म हो, खुदा खुदा करके क्लास खत्म हुई तो उसकी जान में जान आई। प्रोफेसर साहब भी तलबा पर अलविदाई नजर डालते हुए बाहर चले गए। उनके निकलते ही तमाम स्टूडेंट्स की बेहंगम आवाजें गूंजने लगी, लेकिन अशर सबसे बेनियाज आज के लेक्चर पर गौर कर रहा था। उसके जहन में कितने ही सवाल उभर रहे थे और वो जल्दी जल्दी अहम नकात अपनी कापी पर नोट कर रहा था। महवियत में उसे यह भी मालूम न हो सका कि कब गदाला उसके नजदीक आकर खड़ी हो गई। उसके खकारने पर अशर ने निगाह उठाकर देखा तो गदाला ने किताबें उसके सामने पटक दी। गदाला को यूं गुस्से में देखकर अशर मुस्कुराने लगा और बोला, क्यों, क्या हो गया है, तुम्हें क्या किसी से लड़कर आ रही हो? गदाला बिल्कुल खामोश थी, उसकी झील जैसी आंखों में आंसू भरे हुए थे। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अशर घबरा सा गया और प्यार से उसके माथे की लट हटाते हुए बोला, गदाला जान कुछ तो बोलो, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? उसने एकदम ही कई सवाल कर डाले। गदाला आंसुओं को पीने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, तुम्हें इससे क्या, कोई मरे या जिए, किताबों से फुर्सत मिले तब ना। अच्छा चलो, चलकर लान में बैठते हैं। दोनों आहिस्ता खामी से लान की जानिब कदम बढ़ाने लगे। फिर घाट पर बैठते हुए अशर आहिस्तगी से बोला, अब बताओ क्या बात हो गई, क्यों इतनी उदास हो? गदाला का मूड अब कुछ बेहतर हो चुका था। वो झुकी झुकी नजरों से बोली, आपको मालूम है कल मैं कॉलेज क्यों नहीं आई थी? हाँ मालूम है। अशर की रगे जराफत फरक उठी, तो बताइए। बता दूं सच सच? हाँ हाँ, कह भी चुकी है, तुम्हारे सर पर सींग निकल आए थे। गदाला एकदम गुस्से में उठ खड़ी हुई और जाने के लिए मुड़ी, तभी अशर ने उसका हाथ थाम लिया। गदाला क्या हो गया है तुम्हें, मजाक कर रहा हूँ? अच्छा अब बताओ, मैं चुपचाप बैठा हूँ, तुम्हारी बातें सुनूंगा। अशर वाकई गर्दन झुकाकर बैठ गया। गदाला का गुस्सा काफूर हो गया। वो बोली, अशर आज मैं एक अहम फैसला करने आई हूँ। कह भी चुकी है, अशर उसकी नकल उतारते हुए बोला। बस बस मजाक नहीं। गदाला का मुंह शगुफ्ता हो चुका था। उसने कहना शुरू किया, कल कुछ लोग मेरा रिश्ता लेकर आए थे और पापा मम्मी को। अशर गदाला की बात दरमियान में काट कर बोला, कौन लोग आए थे, क्यों आए थे, कहां से आए थे? उसने एकदम ही कई सवालात कर दिए। सच बताओ गदाला, फिर तुमने क्या कहा? कहती क्या, मुझे कहने का मौका ही कब मिला? गदाला उसकी कैफियत से लुत्फ अंदोज होते हुए बोली, फिर भी कुछ तो कहा ही होगा। गदाला अगर तुम लोगों ने कोई फैसला कर लिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। गदाला अपनी धुन में सुनाती रही, लड़के वालों ने देखते ही मुझे पसंद कर लिया, लड़का शहर में बहुत बड़ा बिजनेस करता है, ऊंचा खानदान है, करोड़पति लोग हैं, ये तमाम बातें मुझे बड़ी बाजी ने बताई थी जब वो मेरे पास मेरी राय मालूम करने के लिए आई थी। फिर तुमने क्या कहा? अशर की घबराहट हद से सिवा थी। मैंने बाजी से साफ कह दिया। इतना कहकर गदाला ने शर्म से गर्दन झुका ली। क्या कहा, जल्दी बोलो, क्यों मेरी जान लेने पर तुली हुई हो? मैंने कह दिया, अभी मैं पढ़ रही हूँ, तालीम मुकम्मल करने के बाद ही इस मसले पर सोचूंगी। लेकिन अशर तुम खुद ही सोचो, मेरे बहाने कब तक चलेंगे? इस बार सब मुझसे बहुत नाराज हैं। बड़ी बाजी कह रही थी, गदाला इतना अच्छा, हसीन, स्मार्ट और शरीफ लड़का चार लेकर भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने बाजी से कह दिया। गदाला ने जुमला अधूरा छोड़ दिया और गर्दन झुका ली। अशर को हमेशा से अच्छी लगने वाले गदाला पर गुस्सा आ गया। बुरा मानते हुए बोला, कुछ तो बोलो, तुमने क्या कहा, कुछ तो कहा होगा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? वो जल्द से जल्द गदाला के मुंह से फैसला सुनना चाहता था। मैंने उनसे कह दिया, आपी मेरे पास तो खुद एक चांद है जो आसमान पर नहीं जमीन पर चमकता है, कहकर गदाला ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। अशर मौत और हयात की कश्मकश से निकल चुका था, फिर उसके ऊपर संजीदगी तारी हो गई। वो गहरी सोच में डूबते हुए बोला, हाँ गदाला मेरी जान, तुम करोड़पति बाप की बेटी हो, तुम्हारे पापा मुझ जैसे कमाया इंसान से अपने नादों से पली बेटी का ब्याह क्यों करने लगे, और मैं तुम्हें देवी कह सकता हूँ, गरीबी, भूख और आंसुओं के सिवा। गदाला ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा ना कहो अशर, हौसले से काम लो, तुमसे बिछड़ कर तो मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अशर उसे संजीदगी से समझाता रहा और ये कहकर उठ खड़ा हुआ, चलो अब घर चलते हैं, तुम्हें भी देर हो रही है। خلاف معمول اشرف بہت ہی خاموشی سے گھر میں داخل ہوا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس کے ذہن میں غدالہ سے ہوئی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ وہ غدالہ سے جدائی کے تصور سے ہی کانپ اٹھا تھا۔ بار بار اسے ایک ہی خیال پریشان کر رہا تھا، کیا غدالہ کسی اور کی بجائے

0: टूट पड़ा जैसे सचमुच ही उसे जोरों की भूख लगी हो। वो महज दिखावे के लिए खा रहा था। उसकी उदासी रफत भांप न ले। लेकिन उदासी भी कहीं छुपी रह सकती है भला? रिफत फिर बदित हुई, भाईजान प्लीज बताइए ना, आप खामोश क्यों हैं? जरूर कोई बात है, वरना आपके आते ही घर में गोया दलदला सा आ जाता है। और आज तो आपने मेरे धब्बी नहीं लगाई, वो मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा रिफत की बच्ची, अभी ठीक करता हूँ तुझे, कहकर अशर उसे मारने के लिए उठा ही था कि इतने में अम्मी आ गईं और भाई बहन की प्यार भरी नोक झोंक देखकर मुस्कुराती हुई चली गईं। उनके जाते ही रफत कुछ याद करते हुए बोली, भाईजान जानते हैं आज गदाला बाजी के घर बहुत से लोग आए थे गाड़ी में बैठकर। गाड़ी भी बहुत लंबी थी और उसमें से बेहद शानदार स्मार्ट लड़का भी उतरा था। सुना है गदाला बाजी का रिश्ता मांगने आए थे, बहुत जल्दी मंगनी होने वाली है। बज़ाहिर बेदिली लेकिन ज़हनी तौर पर तवज्जो से अशर रफत की बातें सुन रहा था। फिर खुद को संभालते हुए बोला, अच्छा रफत अब अपना लेक्चर बंद कर, बहुत हो गया, चल भाग यहाँ से, मुझे अपने जरूरी नोट्स तैयार करने हैं। रिफत हंसती हुई कमरे से चली गई। उसे इत्मीनान हो गया था कि उसके भाईजान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन रिफत के जाने के बाद अशर ने कमरा बंद कर लिया और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। रिफत की बातों से वो मजीद परेशान हो उठा था। सारी रात जागता रहा, कभी बैठ जाता, कभी लेट जाता, कभी कमरे में टहलने लगता। यूं आंखों ही आंखों में उसने रात गुजार दी और उसे उसका कोई हल न मिल सका। इस परेशानी में कई रोज गुजर गए। अब वो खामोश रहने लगा था। उसकी खामोशी को अम्मी ने भी महसूस कर लिया। अशर हत्तुल इम्कान खुद को खुश रखने की कोशिश करता। जब वो घर देर से आने लगा था, एक दिन मामूल के मुताबिक वो देर से घर लौटा तो रफत ने उसे एक लिफाफा दिया और बोली, गदाला बाजी ने भेजा है। उसने बेताबी से लिफाफा खोलकर पढ़ा। पढ़ते ही उसकी मुट्ठियां गुस्से के मारे भीचने लगी। उसकी नजरें गदाले की तहरीर पर फिसलने लगी। गदाला ने लिखा था, अच्छे अशर, तुम से मिलने के सारे रास्ते मजदूर हो चुके हैं, बहुत मुश्किल से तुम तक ये पैगाम पहुंचा रही हूँ कि अब्बू ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा रिश्ता वहीं तय कर दिया है जहाँ वो चाहते थे। जल्द ही मेरी शादी भी हो जाएगी, मुझे बचा लो प्लीज, यहाँ से कहीं दूर ले चलो, ऐसी जगह जहाँ दो प्यार भरे दिलों को मिलने से कोई न रोक सके। अब्बू की सेफ की चाबी मेरे पास रहती है, जेवरात और रुपया लेकर आ रही हूँ, जिस दिन भी तुम कहोगे मैं आ जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे गदाला। अशर का कलम बहुत तेजी से कागज पर तैरने लगा और ये हरूफ उभरने लगे, गदाला हमेशा खुश रहो, तुम्हारा खत पढ़कर खुशी के बजाय रंज हुआ, मुझे तुमसे हरगिज ऐसी उम्मीद न थी, तुम आला खानदान की चश्मे चराग हो, जज्बात से हरगिज काम न लो, जब लोगों को मालूम होगा कि शेख शहाबुद्दीन की बेटी भाग गई है तो अब्बू का क्या हाल होगा? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अब्बू जीते जी जिंदा दरगोर हो जाएंगे और ऐसे में तुम भी सुख से न जी सकोगी? मेरा मशवरा है, जहाँ तुम्हारे अब्बू तुम्हारा रिश्ता तय कर रहे हैं उसे ही बखुशी मंजूर कर लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वरना मैं भी तुमसे नाराज हो जाऊंगा। आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। कभी का तुम्हारा अशर। खत लिखने के बाद अशर को यह गौना खुशी का एहसास हुआ कि उसने अपना फर्ज निभा दिया था। वो अपने जहन से गदाला की यादें खोज देना चाहता था, उसे भुलाना आसान न था, लेकिन उसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि वक्त हर जख्म का मरहम और हर अमर का दावा होता है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तीन दिन बाद जब रिफत ने उसे एक और लिफाफा दिया तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। गदाला के अब्बू ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो जल्दी से तैयार होकर गदाला के घर पहुंचा और काल बेल पर उंगली रख दी। जवाब में मुलाजमा ने दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद कॉरिडोर में गायब हो गई। एक एक पल जैसे जैसे एक सदी बनने लगा। इसी दरमियान में गदाला के अब्बू ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। वो एहतरामन खड़ा हो गया। उन्होंने आहिस्तगी से उसका हाथ पकड़कर बराबर वाले सोफे पर बिठा लिया और बोले, बेटा अशर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आज हम अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने जरा सा दम लिया। अशर के दिल पर तीर सा चल गया, लेकिन खुद को काबू में रखे रहा, उन्हें हल्का सा भी एहसास न होने दिया। वो फिर बोले, और सुनो, मैं गदाला के इंतखाब पर इंतहाई खुश हूँ और जल्द ही उसकी शादी भी कर देना चाहता हूँ। अशर की उलझन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो चुपचाप दम साधे गदाला के अब्बू की बात सुन रहा था। सुनो अशर, इसीलिए मैंने वो ड्रामा खेला और गदाला के हाथों खत लिखवा कर तुम्हारे पास भेजा, ताकि तुम्हें परख सकूं कि तुम वाकई गदाला को पसंद करते हो या उसकी दौलत से प्यार करते हो। मुझे खुशी है कि तुम कसौटी पर खड़े उतरे हो। सुनते ही अशर को यूं लगा जैसे किसी ने उसके कानों में रस घोल दिया हो। वो बेहोश होते होते बचा, फिर आइंदा आने वाली शहनाइयों की मधुर गूंज में खो गया।
1: बहुत ही खूबसूरत अफसाना था पारस, डॉक्टर शमा अफरोज जैदी का तहरीर करदा। वाकई क्या जज्बात थे इस अफसाने में, बहुत ही उम्दा अफसाना था। अब जाने का वक्त आ गया, लेकिन ऐसे थोड़ी जाएंगे जनाब, एक गजल आपकी नजर करते हैं, उसके बाद आपसे लेंगे इजाजत। तो आइए चंदनदास की गायी हुई ये गजल सुन लेते हैं।

0: और अब तो हम फिर वही कहेंगे जनाब जो अक्सर व बेशतर आपसे कहते हैं कि अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे घर खुदा लाया। अपने मेजबान नईम को इजाजत दीजिए आज का अदबनुमा प्रोग्राम खत्म करने की। खुदा हाफिज।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदबनुमा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे नशात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी नाम में प्रोग्राम की पहली पेशकश आप तमाम सामेन की नजर है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये थी इस प्रोग्राम की पहली पेशकश फिल्म लैला मजनू से। नागमा निगार थे साहिर लुधियानवी, मौसीकी मदन मोहन की थी। और ये सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में इस प्रोग्राम का अगला नगमा। फिल्म है इनकार, मौसीकी राजेश रोशन की।

सत्य पे सत्ता फिल्म का नगमा सुन रहे थे किशोर कुमार, आर डी बर्मन, भूपेंद्र और सपन चक्रवर्ती की आवाजों में। ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में आप सबकी नजर करते हैं और फिल्म है आदत से मजबूर, मौसीकी उषा खन्ना की।

0: इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फेटिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 5 बजे जाते हैं। हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पसीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। सभी ने उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए नशरियात के साथ। सभी ने उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: FM बैंड 103.6 MHz से आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्रे आकाशवाणी वर्ड सर्विस दिंदी ए पंजाबी सेवाए शाम दे 5 बजे ने हुण साडी दूजी सभा दी प्रोग्राम शुरू हुंदे ने। सामीन सब तो पहला तुसी समात फरमाओगे सराई की प्रोग्राम झोक माही दी।

ये ऑल इंडिया रेडियो दे विदेश प्रसारण सेवा दा सिराई की प्रोग्राम है। मैं संजय पाहुजा आप सबको सलाम नमस्ते इस्तकबाल करेंगा। अज असा हाजिर है आप सब दे नाल सिराई की सूफी संगीत दे नाल। असाडे नाल हैं अज रूपेश चोपड़ा जी, ओ असा को कुछ सूफी संगीत अपनी मिठड़ी आवाज विच सुने सन। सब तो पहले वो पेश करेंगे पिन सुल्तान शाह हुसैन साहब दी दा एक गावन, माहे नी मैं केनू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नहीं।

साईं झूलेलाल दी इबादत विच गाया वंजन वाला है गीत दमादम मस्त कलंदर। मतलब ही कोई सिराय की बिरादरी विच इंझा बंदा होसी जे ना सुन रख्या होसी। बहु वड्डे वड्डे गायका ने एक गीत गाया है। अज असाकू रूपेश चोपड़ा जी एक गीत गा के सुने सन दमादम मस्त कलंदर।

बनदास की शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाले मेरी।

प्याले बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर।

झूले लालने सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर

वाह जी वाह, बहुत वधिया रुपेश चोपड़ा जी। निंदर ते कईया हाय कईया झोंका लाइया। हुण असां तुहाडे कन्नों एक बी फरमाइश करे सू, एक बिया सूफी गीत, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है। इश्क ते भा बरोबर इश्क दाता तखेरा, भा सड़ेंदी कख काने नू, इश्क सड़ेंदा जेड़ा, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है।

यार डाडी इश्क आतिश लाई है, सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, हुल हुला के इश्क जुआया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, हुल हुला के इश्क जुआया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, था था नाच नचाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, ओ सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है यार डाडी।

है यार डाडी इश्क आतिश लाई है ओ सानू लग गई बे अख्तियारी सानू लग गई बे अख्तियारी सीने दे विच ना समाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई है यार डाडी इश्क

यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। ओ सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी।

रोजी खातर रोदे वेखे मैं मां प्यो ते भैन परानू भुल दे वेखे मैं बेगानी धरती लोग बेगाने पट्टी का दा मान करे सोचो ही ने कुकर्मा ते दुर

0: कहने लगा कि मेरे 2 साल लंघे, आज पूरे 2 बरे हो गए, मैं कनेडा गया जिथे उन्हें शहरी बंदे का कर्जा उतारिया, उथे एक किला होर जमीन खरीद ली अपा। नाले भागवान ने जो आज शामी चिट्ठी आई सी उस विच लिखा है कि वो जल्दी छोटे नु भी अपने कोल बुला लेगा।
1: अच्छा,
0: मैं पिंड दे किसे पढ़े लिखे मुंडे को मंगू नु चिट्ठी लिखवान चले, तू ऐसा कर रोटी टुक पका तो मैं आना।
1: मैं क्या जी ए लिखवायो कि छेती आ तेरा व्याह करना।

0: टेलीफोन था मंगरू पुत्र दे दो मिस करना खैर हो गए
1: की दे जी
0: मंगरू पुत्र दे
1: तुसी नंबर लाके पता ता करो की गल है की कहंदे आ
0: मेनू पता है ओ की चाहंदा तीन चार बार पहला भी उन्हें मेनू किया है कि बापू जी ओ वापस आना चाहंदा है और पहला वालियां गल्ला नहीं रही उथे हालात उथे बहुत बदल चुके ने काम कार कर गए ने लोकां नूं उथे काम घट मिल रहा है बच्चे पढ़ाई दे नाम ते तड़ा तड़ उथे जा रहे ने बेचारे गुरुद्वारे मंदिर होर की कहा सड़कां गलियां च रातां दे पल गुजारदे ने वड्डे वड्डे लोग उथे सब कुछ वेच के भारत वापस आ रहे ने
1: देखो जी बथेरिया कमाईया कीतिया पुत ने तीन किलिया नाल लग दे तीन किले होर खरीदे कंडी खेतर विच मुर्गी खाना खोलिया मंड विच 18 किले जमीन खरीदी शहर विच 2-3 प्लाट ले ये सारा कुछ पुत्ता दी कमाई नाल ही होया जे मंगू पुत आना

दोस्तों दिलराज कौर दी आवाज दे विच तुसी ये गीत सुन रहे सी। इंसान अपना 100% दिंदा है हर काम दे विच, पर ओ ए भी यकीन रखदा है कि ओ जिहड़ा 1% रब वालों मिलना है ओ साडे नाल ही होएगा, क्योंकि परमात्मा हमेशा मेहनती बंदियां दा साथ दिंदा है, उन्हां वास्ते नवे राह बनांदा है, क्योंकि ओ जानदा है कि मेहनती बंदा किसे दा हक नहीं मार सकदा, किसे दा दिल नहीं दुखा सकदा ते छल नहीं कर सकदा। आओ फिर गल करदे हां उस गीत दी जिहड़ा असीं तुहानूं सुनाउणा है। दोस्तों पुराने वेलियां दे विच ना लाले हट्टियां दे उत्ते वड्डी वड्डी सारी वहीयां रखदे हुंदे सी, नवा हिसाब किताब करना, कट देना, जिन्हें पैसे देते जिन्हें उधार चुके उदा नाल रख लेना। कई लोग अपने घर भी वही लगाते कार विहार ली, किसने साडे विहार दे उते किन्ना शगन पाया ते असी किन्ना पाना है, ताकि आने वाली जनरेशन्स नू भी असी दस सकीए कि असी किदे नाल किवें मिलदे वरतदे आ। पर दिल दी वही दे उते अंगूठा उही ला सकदा है जिहड़ा अपने सज्जना मित्रां नू बहुत प्यार करता है। अगली गीती फरमाइश सानू कीती है पटेल नगर मलोट तो रमेश कुमार गीता राणी गगन ते आरजू ने। पावे कर एहसान ते रख साडी गल दा मान ते रख, दिल रखना ना तेरी मर्जी साडी जान च जान ते रख, खबरे कुछ चंगा हो जावे तू कट तो कट उकसान ते रख, ते ए भी नहीं कि मेरा हो जा, ए भी नहीं कि मेरा हो जा, पर थोड़ी जी पछाण ते रख, पावे कर एहसान ते रख साडी गल दा मान ते रख। ते लो जी असीं फिर मान रखदे आं इन दी गल दा ते सुनदे आं गुरदास मान दी आवाज दे विच गुठा दिल वाली वही ते लवाला है।

नचन वाले दी अड्डी न रहंदी गाण वाले दा मूह बोली मैं पावा नच ले गिद्दे विच तू। पंजाबी गीत संगीत दे विच इदां दा कोई गीत है ही नहीं जिंदे विच थोड़े पैर ना थिरकन ते थोड़ा दिल मोर वांग पहला पानू ना करे। सानू एक खत आया बड़ा प्यारा है जी, प्यारा इस करके कि इन्होंने अपने दिल दी गल बड़े साफ सुथरे ढंग नाल सानू लिख भेजी है। पिंड तंगोरी जिला मोहाली पंजाब तो गुरप्रीत सिंह तंगोरी ने लिखा है तेरा नाम। ए मेरी लिखी हुई हुन तक दी सब तो छोटी कविता है ते ए कविता सार है मेरिया सारिया कवितावां दा। वाह जी वाह, क्या खूब है। ए सुनना चाहुंदे ने सुरेंद्र छिंदा दी आवाज दे।

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक ने खेती बाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित।
2: 60 साल की उम्र वालों को 3000 रुपए महीने की पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किस्त देके योजना में शामिल हो सकते हैं 18 से 40 साल तक के किसान।
2: इस योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना के लाभ लिए जन सेवा केंद्र में जान
2: अपना नाम मुफ्त में दर्ज करा।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता मेहनत में समर्पित पेंशन नाल सुरक्षित उन्हों का मान
0: जय हिंद किसान वीरो किसान वाणी दा ये प्रोग्राम लेके असी हाजिर हां। उम्मीद करदे हां कि साडे किसान वीर वधिया होणगे फर्स्ट क्लास होंगे और चढ़दी कला विच अपनी फसली चक्र अपनी फसलां नूं चंगी तरह देख रहे होंगे। फिर असी गल करदे हां खेती संदेश नाल ते खेती संदेश विच गाजर दी गल करदे हां क्योंकि गाजर दा चंगा म्यार ठंडे मौसम विच पैंदा है। बीज दे उगण लई 7-24 डिग्री सैल्सियस तापमान दी लोड़ हुंदी है ते वध लई 18-24 डिग्री सैल्सियस तापमान ढुकवां है। गाजर के वधिया रंग लई 15-20 डिग्री सैल्सियस तापमान अनुकूल है। लंबिया मुलायम ते सोहनिया गाजर लई डूंगी भुपरी ते चंगे निकास वाली मैर जमीन वधिया हुंदी है जबकि गेती फसल लई रेतली 2 मिंट मिट्टी नूं तरजीह दित्ती जांदी है। और फसली चक्र है गाजर की गल करें तो गाजर में बहु फसली प्रणालिया विच सफलता पूर्वक शामिल करके प्रति वर्ग खेतर ते समय तो वध उत्पादन ते आमदन प्राप्त की जा सकती है। गाजर वाले टुकड़े फसली चक्र ने आलू बीज गाजर मूली बीज भिंडी जिस विच कीकमवार अक्टूबर जनवरी जनवरी मई ते जून अक्टूबर का समा हुंदा है। किसानों विच प्रचलित होर फसली चक्र विच झोना गाजर कद्दू जाति दीआं फसलां गाजर प्याज हरी खाद गाजर गाजर का बीज हरी खाद भी शामिल ने। तेना फसली चक्र विच फसलां दी काश दी मियाद क्रमवार झोने लई जून तो अक्टूबर गाजर लई अक्टूबर तो फरवरी ते कद्दू जाति दीआं फसलां लई फरवरी तो जून गाजर लई सितंबर तो जनवरी प्याज लई जनवरी तो जून ते हरी खाद लई जून तो अगस्त गाजर लई सितंबर तो जनवरी गाजर दे बीज उत्पादन लई जनवरी तो जून ते हरी खाद लई जून तो अगस्त हुंदी है। सुधरे किस्मां दी गल करिए तो पंजाब संतरी इस किस्म दीआं गाजरां संतरी रंग दीआं हुंदीआं ने लगभग 97 दिनां विच तैयार हो जांदी है ते इस किस्म दा बीज पंजाब विच बनाया जा सकता है। इस विच बी कैरोटीन 14.72 मिलीग्राम 100 ग्राम TSH 8.5% तो सुक्का मादा 12.78% हुंदा है ते इस औसत झाड़ 180 क्विंटल प्रति एकड़ है। पंजाब जामनी की गल करिए लगभग 92 दिनां विच तैयार हुंदी है। ऐसियां गाजरां बाहरों जामनी ते अंदरों संतरी हुंदियां ने। इस विच एथोसाइनिन 134.25 मिलीग्राम 100 ग्राम ते बी कैरोटीन 5.58 मिलीग्राम 100 ग्राम हुंदा है ते इस औसत झाड़ 218 क्विंटल प्रति एकड़ है। पंजाब रोशनी की गल करते हैं तो यह पीलियां जड़ा वाली किस्म लगभग 96 दिनों में तैयार हुंदियां ने। यह ल्यूटन ते बी कैरोटीन नाल भरपूर है ते इस औसत झाड़ 211 क्विंटल प्रति एकड़ है। पीसी 160 है यह वध झाड़ देने वाली गूढ़ी लाल जड़ा वाली किस्म है जो लगभग 90 दिनों में तैयार हुंदी है ते इस विच बी कैरोटीन 8.88 मिलीग्राम 100 ग्राम ते TSH 9.5% हुंदा है ते इस औसत झाड़ 256 क्विंटल प्रति एकड़ है। पंजाब ब्लैक ब्यूटी की गल करिए

I'm not a man, I'm not a man.

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजी, कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबने तो पहला एक मिनट के लिए रुको, सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्य पृष्ठभूमि में आयोजित एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में फीचर, नॉन फीचर

0: और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया। इस समारोह में कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। फिल्म जगत को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक शक्ति और विविधता का उल्लेख किया। उन्होंने भारत की विविध भाषाओं, परंपराओं और सामाजिक अनुभवों को प्रतिबिंबित करने में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि फिल्में न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करती हैं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ती हैं। फिल्में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में भी सहायक होती हैं। समारोह में दिग्गज अभिनेता अनंतनाग को भारतीय सिनेमा में 5 दशकों से अधिक के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार मिला। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की विज्ञान कथा फिल्म कल की 2898 AD को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। राजकुमार पेरियसामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला। अभिनय श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का संयुक्त पुरस्कार दिग्गज अभिनेता ममूटी को ब्रह्मयुगम और आर्तिका आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया। यामी गौतम को आर्टिकल 370 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। संजय मिश्रा को भक्षक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकाली को संयुक्त रूप से दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के 3वें राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
1: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत के विकास के अगले चरण की नींव गुणवत्ता पर आधारित होनी चाहिए। नई दिल्ली में आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के 53वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत ने जापान को हराकर पदक सुनिश्चित किया, जबकि महिला टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला चीन और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने क्रिकेट टीम को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। इस वक्त शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं,
1: तत्काल निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान पेंशन से सुरक्षित उनका काम। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। रजनीश, इस कार्यक्रम के जरिए हम सब खेती बाड़ी की नई नई जानकारियां लेकर आते हैं, चाहे वो नई तकनीक हो, फसल प्रबंधन की बात हो, बागवानी, पशुपालन या सरकार की किसान हितैषी योजनाएं ही क्यों न हो।
3: और प्रतिमा देखिए, आज हम बातचीत करेंगे सब्जियों के सुरक्षित प्रबंधन तुराई से भंडारण तक, साथ ही हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पर,
2: साथ ही हम जानकारियां भी देंगे जैसे कृषि सलाह, मौसम और आजादपुर मंडी के फल और सब्जियों के भाव के बारे में, साथ ही लोकगीत भी सुनवाएंगे। तो पहले चर्चा करते हैं राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पर।
3: जलवायु परिवर्तन के सामने खेती को मजबूत, टिकाऊ और अधिक उत्पादक बनाने की एक पहल जो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत आती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि को मौसम और जलवायु के बदलावों के प्रति सुरक्षित और लचीला बनाना, साथ ही मिट्टी और नमी के संरक्षण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना।
2: जी हाँ, और मृदा स्वास्थ्य में सुधार, मिट्टी की जांच के आधार पर पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग और उर्वरकों का विवेकपूर्ण प्रयोग, जल संरक्षण और जल दक्षता, कम पानी में अधिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म सिंचाई और अन्य जल बचत तकनीकों को बढ़ावा देना।
3: बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और देखिए, इसीलिए जल प्रबंधन के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद अधिक फसल के जरिए जल उपयोग की दक्षता भी बढ़ाई जाती है। साथ ही सॉयल हेल्थ कार्ड के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता का आकलन करना भी इस मिशन का उद्देश्य है।
2: इस मिशन में एकीकृत कृषि प्रणाली, फसल के साथ पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी आदि को जोड़कर किसान की आय के विभिन्न स्रोत विकसित करना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मिट्टी, पानी और जैव संसाधनों का टिकाऊ उपयोग।
3: और प्रतिमा, हम हमेशा कुछ नए नए विषयों पर बात करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी होता है सही आहार, और सही और संतुलित आहार के लिए जरूरी होती है साग सब्जियां। लेकिन अच्छी साग सब्जियां हमें तभी मिलेंगी जब उनका सही उत्पादन होगा।
2: बिल्कुल, और सब्जियों का सुरक्षित प्रबंधन तुड़ाई से भंडारण तक, ये बहुत ही जरूरी विषय है, क्योंकि पूरे वर्ष जब किसान भाई बहन सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं रजनीश, जिनका भंडारण करना बहुत जरूरी होता है ताकि वर्ष भर वो उपलब्ध हो सके। आज का हमारा विषय भी यही है, सब्जियों का सुरक्षित प्रबंधन तुड़ाई से भंडारण तक।
3: और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बीएस तोमर, जो कि अध्यक्ष हैं शाकीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से।
4: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: धन्यवाद।
4: जिस तरीके से डॉक्टर साहब हमारी खाद्यान्न फसलें हैं उनका देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में काफी महत्व है, और उसी तरीके से जो हमारी सब्जी फसलें हैं उनका भी महत्व रहता है, लेकिन सब्जी फसलों की जो भंडारण क्षमता होती है वो कम होती है, जिसके कारण किसान उसको भंडारित नहीं कर पाते, उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप क्या किसान भाइयों को जानकारी देना चाहिए?
5: देखिए, मैं दो तीन बातें इसकी पृष्ठभूमि में बताना चाहूंगा
4: जी,
5: कि जो शाकीय फसलें हैं जिनको हम सब्जी फसलें भी बोलते हैं, इनकी जो भंडारण क्षमता है वो दूसरी फसलें हैं जैसे दलहन है, तिलहन है या धान्य फसलें हैं, उनकी अपेक्षा कम होती है। और गौरव की बात यह है कि भारत दुनिया में दूसरा बड़ा सब्जी उत्पादन का देश है, और इसमें हमारे किसान भाई उत्पादन करने में बहुत परिश्रम करते हैं, संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वो जो उपभोक्ता

0: पहुंचती है तो वहां पर पहुंचने में उसका काफी नुकसान होता है और उस नुकसान की जो मात्रा है वो कई देशों की जीडीपी नहीं है जितना नुकसान हमारा होता है। 20-25 साल पहले तो ये नुकसान की दर 25-40% होती थी सब्जी फसलों में, लेकिन वैज्ञानिक शोध, किस्मों के विकास, भंडारण क्षमता का विकास देश में पिछले 20-25 सालों में बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि सभी सरकारों ने इसको एक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हुए कटाई के उपरांत होने वाले नुकसानों को कम करने की दिशा में प्रयास हुआ। दूसरा, हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है हम पोषण सुरक्षा की बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं कि भाई हमने खाद्य सुरक्षा तो प्राप्त कर ली लेकिन हमें पोषण सुरक्षा भी प्राप्त करनी है और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए शाकाहारी आहार या साग सब्जियों का हमारे भोजन में बहुत बड़ा योगदान उभर के सामने आता है क्योंकि इनसे बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स ये मिलते हैं जो हमारे छोटे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए और सभी प्रकार की आयु वर्ग के लोगों के लिए ये एक वरदान है। इसलिए हमारा ये नुकसान उत्पादन के बाद कम से कम हो तो इससे हमारे संसाधनों में उनका बचाव होगा, उपभोक्ता को ताजी बेहतर सब्जी मिलेगी और हमारा पोषण सुरक्षा पे भी जो सरकार का ध्यान है उस पर योगदान होगा। तो अब बात आती है कि भाई ये जो नुकसान होते हैं कारण क्या है और उन कारणों को हम किस प्रकार से निदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि भाई हमारा जो ब्रीडिंग करना है, हमें ऐसी किस्मों का विकास करना होता है जिनमें कटाई के उपरांत अपने आप सुरक्षित रहने की क्षमता लंबे समय तक रहे और बहुत सारी फसलों में इस तरह प्रकार के प्रयास हुए जिनकी भंडारण क्षमता का विकास हुआ, चाहे आप उसमें भिंडी का नाम लें, चाहे करेले का नाम लें, लौकी का लें, प्याज और आलू, लहसुन, शकरकंद लें या हमारी और दूसरी फसलें हैं, इन सब में भंडारण क्षमता के अनुरूप कार्य किया गया या उनकी उत्पादन जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी, उनका विकास किया गया ताकि उसमें कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान को कम कर सके। उसमें मैं प्याज, आलू, लहसुन ये तीन ऐसी सब्जी हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में पैदा होती हैं, भंडारण में जाती हैं और इनका उपयोग भी बहुत होता है। तो इनमें वैज्ञानिकों के प्रयासों के कारण आज हमारा आलू का जो सड़ने का दर है या इसमें स्प्राउट आ जाता है या मीठापन आ जाता है और दूसरा प्याज फूटना शुरू हो जाती है, स्प्राउट आता है, श्रिंकेज होता है, तो भंडारण क्षमताओं के विकास उसमें सरकारों का योगदान है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास किया और वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्मों का विकास किया जिनमें कटाई के उपरांत भंडारण के दौरान में जिसमें नुकसान कम होता है, श्रिंकेज कम होता है, लॉस कम होता है, पीएलडब्ल्यू, तो ये किस्मों का विकास भी है। ऐसे रसायनों की पहचान की गई जिनका कई फसल में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद तुड़ाई करते हैं, तुड़ाई करने के बाद उसमें भंडारण में लेके जाते हैं, उससे हमारा नुकसान कम हो जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, क्या जैसे हमारे किसान भाई रासायनिक उर्वरक या जो दवाएं प्रयोग करते हैं इनका भी कुछ प्रभाव पड़ता है?
0: निश्चित रूप से ये माना जाता है भंडारण में अगर हमें होने वाले नुकसान को कम करना है तो हमें ये सुनिश्चित करना कि खेत में जो उत्पादन हो रहा है वो उच्च गुणवत्ता का हो। जितनी इनिशियल क्वालिटी अच्छी होगी भंडारण के दौरान उसमें होने वाला नुकसान उतना ही कम होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर बताऊं, बैगन है, टमाटर है, अगर वो कीड़े से ग्रसित है तो वहां पे पानी जा सकता है, सफाई के दौरान ड्राई करने में कमी रह जाती है क्योंकि जिनको वॉश किया जाता है उसके बाद तेज हवाओं का बुछार उसमें की जाती, तेज हवा से गुजारा जाता है ताकि फालतू की नमी उससे हट जाए, लेकिन अगर उसमें कीड़े का आक्रमण है तो वहां पानी भर जाता है, फिर वो भंडारण में जाता है तो वहां पर वो सड़ना शुरू हो जाता है, दो चार आसपास के टमाटर हैं उनको खराब कर देता है। इसी तरह से बैगन में होता है, ऐसे ही दूसरी फसलों में भी होता है
1: जी।
0: तो ये खेत में उत्पादन के दौरान भी हमें सुनिश्चित करना है कि खेत से जो भंडारण के लिए उत्पाद जाए वो उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। जैसे हम बात करें बैगन की, जैसे हमारे किसान भाई तुड़ाई करते हैं और तुड़ाई करने के बाद हम किसान भाइयों को बताते रहे हैं कि आप तुड़ाई करने के बाद फलों को छायादार जगह में ढेर लगाओ।
1: तुड़ाई का समय और तरीका ये भी प्रभावित करता है?
0: बिल्कुल करता है। तुड़ाई का समय अगर हम तेज धूप की अवस्था में, मतलब दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच में तुड़ाई करते हैं जब तापक्रम सबसे अधिक होता है, तो ऐसे फलों को अगर हमने तोड़ करके सीधे बोरों में भर दिया, उनको पैकिंग कर दिया, तो उसमें हीट जो होती है वो इतनी होती है कि उससे रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देती है। जब उसका सांस लेने की दर बढ़ती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, तो उसके अंदर का जो पानी है वो श्रिंकेज होता है और जो फल 5 दिन तक बाजार के लिए सुरक्षित रहना है वो 3 दिन में ही खराब हो जाता है, उसकी मार्केटिंग वैल्यू कम हो जाती है, ये भी एक नुकसान है। तो अब तुड़ाई का समय क्या है? हम

0: मैं वो सिफारिश करते हैं भाई, अगर तैयार बैगन है दूसरे दिन तीसरे दिन आप तुड़ाई करते हैं तो आप दोपहर के 3 बजे के बाद तुड़ाई शुरू करिए, या प्रातः काल में सुबह 6 बजे से लेके 10-11 बजे तक तुड़ाई करिए, और तुड़ाई करने के बाद फलों को आप छायादार जगह पे जहां छाया हो, हवा हो, पंखा हो तो और बेहतर है, क्योंकि किसान खेत में पंखे तो होते नहीं लेकिन वहां पे पेड़ होते हैं, तो ऐसी जगह पे साफ जगह नीचे अच्छा उसमें प्लास्टिक डाल के या कपड़ा डाल के उनको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद उनको 2-3 घंटे के लिए ऐसी जगह पे रखें ताकि उसकी जो न्यूट्रिएंट हिट है, चाहे वो टमाटर हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे शिमला मिर्ची हो, लौकी हो, तुरई हो, ये बात सब पे लागू होती है, तो उसका जो एक्स्ट्रा हीट है वो डिफ्यूज हो जाएगी, हट जाएगी। तो जब उसके बाद उसको फिर श्रेणीबद्ध करेंगे, उसमें जो छोटे फल हैं, कई फल बड़े हो जाते हैं या कई फल कीटग्रस्त हो जाते हैं, उनको निकालते हैं। ये भी हमारे भंडारण क्षमता को प्रभावित करता है। अगर हम बढ़िया गुणवत्ता का एक रूपता का फल भंडारण में लेके जाएंगे कटाई के बाद, तो उसका धीरे धीरे होने वाला जो श्रिंकेज है, PLW जिसको हम बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल लॉस इन वेट, वो भी कम होता है और बाजार तक जाते जाते उसकी चमक दमक बनी रहती है और किसान को उसके 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम उसको ग्रेडिंग करने के बाद जब उसको हम पैकिंग करते हैं, अगर हम उसको पानी में से डुबो के निकाल दें, एक हम कई बार कहते हैं कि भाई फलों को लाए तोड़ के और सीधा जितना बोझ है उसको ट्यूबवेल होती है, पानी होता है, पानी चलता रहता है, उसमें 5 से 10 मिनट के लिए गट्ठर को उसमें डाल देते हैं, तो उसकी जो हीट है वो निकल जाती है, हीट निकल जाती है, उसके बाद उसको छायादार जगह में फैला के रख देते। ऐसी चीजें हैं जो किसान भाई अपने खेत में अपने उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, उससे निश्चित रूप से भंडारण क्षमता में प्रभाव पड़ता है।
1: कई चीजें हैं डॉक्टर साहब, जैसे टमाटर अलग तरीके से तुड़ाई होती है, आपके बैंगन है, लौकी है, कद्दू, ये तो बेलदार उसमें लगते हैं, तो इसकी कटाई होती है कि जिससे उसके जो बेल है उसको भी प्रभावित ना कर सके, क्या इसकी जो तुड़ाई का तरीका है?
0: बिल्कुल, तुड़ाई
1: फल खराब होने,
0: ये कई बार जब हमारे श्रमिक तुड़ाई करते हैं तो झटके से तुड़ाई करते हैं
1: जी,
0: जब झटके से तुड़ाई करते हैं तो खासतौर से बेल वाली सब्जियां हैं या टमाटर भी हैं, उनकी या तो शाखाएं टूट जाएंगी या फल का डंठल उसे हट जाएगा। बैगन के अंदर जो चमक दमक है उसके डंठल के साथ है, उसके ऊपर लगे कैलिक्स के पास है, टमाटर में वो अगर रहेगा तो उतना शानदारी है उसका, हालांकि किसी किसी किस्म में वो अटैच रहता है, उससे भी आकर्षण बढ़ता है, फल लाल होगा और उसके ऊपर कैलिक्स जो अटैच है वो हरा रंग का रहता है, लेकिन ज्यादातर किस्में ऐसी है कि जो बिना कैलिक्स के ही होती है, लेकिन बैगन में कैलिक्स जुड़ा होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू को प्रभावित करता है। उसकी कटाई जो है ज्यादातर हम देखते हैं किसान भाई खेतों में अपने हाथों से तुड़ाई करते हैं, और हाथ से तुड़ाई करते हैं बैगन में, मिर्ची में, किसान भाई या महिलाएं जो विशेष रूप से काम करती हैं वो हाथों में कोई कपड़ा भी नहीं बांधती ताकि उनके हाथों में के जो पत्तों से लगने वाली जो रोए हैं उनकी स्किन के संपर्क में आए, तो वो सावधानी से काम नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई 5 रुपए का हमने बचत कर लिया, तो अगर वो नहीं खरीदना चाहते तो कपड़े के ऐसे थैलियां बनाई जा सकती हैं जो तुड़ाई करते वक्त किसान भाई उसको यूज कर ले और उसको चाकू से काटे या स्केटियर से काटे, मतलब कटर से काटे
1: जी।
0: भिंडी तोड़ने के लिए विशेषकर कई चीजों का विकास हुआ, क्योंकि भिंडी में सबसे ज्यादा चुनौती आती है, लाल पकी मिर्च होती है जब उसकी तुड़ाई करते हैं तो उसमें बहुत चुनौती आती है कि वो पंजेंसी होती है और वो जो है हाथों के लग जाती है, तो जो श्रमिक काम करते हैं खेत में उनको बड़ा इचिंग होता है, अनहाइजीनिक हो जाता है, तो ऐसे में कटर का इस्तेमाल करते हैं। कटर में हमें जैसे लौकी के ऊपर है, लौकी का डंठल कम से कम 2 से 2.5 इंच की ऊपर से कटाई करनी है, ऐसे ही करेले में करनी है, और कद्दू में भी हमें 1 इंच के ऊपर से कटाई करनी है, हमें ऐसे झटके से तोड़ना नहीं है, तोड़ते हैं तो उसका जो रस होता है, ऊज होता है, वो निकल जाता है और वो सूखने के बाद लाल हो जाए तो फल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, चाहे वो लौकी हो, चाहे सीताफल हो या हमारी ककड़ी हो, खीरा भी है, तो ये सावधानी हम रखते हैं। और कई बार क्या होता है कि किसान बहुत तोड़ता है लौकी के विशेष रूप से या सीताफल जहां ज्यादा उपज होती है तो तोड़ करके फेंकता है, धीरे धीरे ढेर बनाता है, फिर इकट्ठा करता है, इससे क्या होता है जब हम करके फलों को ऐसे फेंक के खेत में इकट्ठा कर देते हैं तो मिट्टी लगती है, उसमें चोट लगती है, ब्रूजिंग होती है, बाद में वो वहां से काला पड़ जाता है, तो बाजार में ऐसा फल जाएगा तो उसका मूल्य भाव कम मिलेगा, पहले मंडी में उसका मूल्य भाव कम मिलेगा, मंडी में सस्ते दरों पर, फिर उपभोक्ता उसको लेने में, कुल मिलाकर के तुड़ाई किस प्रकार से करें वो हमारा काफी हद तक इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसमें नुकसान न हो।
1: बहुत से किसान भाई मशरूम की भी खेती करते हैं तो उसकी चुनाई कैसे?
0: मशरूम एक बहुत ही स्पेशल क्रॉप है जिसमें हमारे अधिकतर किसान निरंतर

0: जो लोग करते हैं उनको इस चीज का अनुभव है कि हमें बटन का साइज कितना होना है और किस अवस्था पे तोड़ना है, क्योंकि मशरूम तो सुरक्षित आकृतियों के अंदर है तो उसमें तुड़ाई के समय का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुड़ाई का कटाई का तो समय, क्योंकि वो क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर है तो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे बटन का बाजार की मांग के आधार पर तैयार हो गया तो मटर को भी बड़े जेंटली निकाला जाता है। अगर बहुत फोर्स के साथ निकाल दिया तो क्या होता है कि उसके साथ जो छोटे बटन है वो भी निकल जाते हैं, उससे किसान को नुकसान होता है। तो उसमें भी हम ये किसान भाइयों को बोलते हैं कि भाई आप जब तैयार बटन है उनको निकालते हैं तो वहां आप ऐसे नुकीली चीज का इस्तेमाल करिए, कटर का इस्तेमाल करिए ताकि आप उसको सरफेस से काट सके, आपका भार में भी कमी ना हो और जो साथ में दूसरे बटन्स ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि जब फसल तैयार होनी शुरू होती है ये हर 5-6 दिन के बाद या तीसरे दिन इसकी तुड़ाई होती रहती है। बटन तैयार हुए निकाले और छाया में रखे, फिर उसको वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग करके उसका फिर पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके उसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं, कोल्ड स्टोर में रखते हैं और तब वो कोल्ड कंडीशन में ही जो हमारी रेफ्रिजरेटेड वेन है उसी से बाजार के लिए लेके जाते
1: हैं। डॉक्टर साहब अब बात करते हैं पैकिंग की, क्योंकि पैकिंग करने से भी इनकी भंडारण क्षमता बढ़ती है।
0: निश्चित रूप से पैकेजिंग की हालांकि काफी सुधार हुआ है, पहले हम देखते थे अब से 20-30 साल पहले किसान भाई अपनी सब्जियों को ज्यादातर गट्ठर बनाते थे,
1: बोरियों में भर के
0: बैंगन लौकी बोरियों में भर के आते थे, बोरियां भरी और धड़ाम से फेंक दी और उसका चलते गए गाड़ी में भरते वक्त ऊपर चढ़ रहा आदमी उनको लगा रहा तो उसे बड़ा नुकसान होता था, उससे गुणवत्ता खराब होती थी, भंडारण क्षमता भी उससे खराब होती थी। तो अभी क्या विकास हुआ, इसमें मैं विकास ही कहूंगा कि वो जो जूट वाले बोरे थे या गट्ठर का सिस्टम आज ऑलमोस्ट पूरे देश में बंद हो गया, अब उसका स्थान ले लिया प्लास्टिक के बैग्स ने और क्रेट में आए, और उन दोनों का फायदा क्या हुआ कि करेट किसान जब लेके आता है तो उसे दोबारा मंडी में ला करके फिर खाली करेट ले जाने का मानसिक दबाव बढ़ता है या खर्चा बढ़ता है
1: जी।
0: तो किसान उस करेट सिस्टम से भी हट गया, हट करके वो प्लास्टिक के HDPE बैग्स आ गए, तो वो लौकी है, तुरई है, भिंडी है, करेला है, आप देखेंगे पूरे देश की सारी सब्जियां जूट के बैग में नहीं आती, कपड़े के गट्ठर में नहीं आती, करेट में कुछ आती है, मशरूम आएगा वो करेट में ही आएगा, टमाटर करेट में आएगा क्योंकि वो डेलिकेट चीज है, अगर वो पैसे बोरों में भर के भेजेंगे तो वो सारे के सारे नुकसान होने की संभावना। तो पैकेजिंग में आज प्लास्टिक का बड़ा रोल है, प्लास्टिक के बैग्स और प्लास्टिक की करेट्स, तो किसान उसको 10 किलो की 15 किलो की 20 किलो की करेट जो आसानी से हैंडल होती है और उनको इस प्रकार से रखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जब करेट रखी जाती है तो फल दबते नहीं है, उसमें फलों के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ा। तो ये जो विकास हुआ हमारा पैकेजिंग में, चाहे वो प्लास्टिक के HDPE बैग्स हैं या हमारी प्लास्टिक की करेट है, इन्होंने हमारे लॉस हैं। हमने कई अध्ययन किए, PhD करने के बाद मुझे 2.5 साल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में डॉक्टर एस के राय काम करते थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो हम नींबू में, अंगूर में, संतरे में, किन्नू में, हमने कई ऐसे और आलू प्याज में जीरो एनर्जी कूल चैम्बर में काम करते थे, तो यही हम अध्ययन किया कि बोरों में भर के रख दिया, जूट के ऊपर बोझ करते गए, करेट में रखा, तो करेट में रखा तो कम से कम 8-10% हमारा नुकसान कम हो गया। तो इस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी का अगर फायदा लेते हैं तो उसके हमारे कटाई के उपरांत जो नुकसान होते हैं उनकी मात्रा में कमी आती है, गुणवत्ता बेहतर बनी रहेगी।
1: डॉक्टर साहब अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि जो सब्जियों में पोषण ह्रास कम से कम हो तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: देखिए, एक तो जो हमारे उपभोक्ता हैं ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनको तो मैं कहूंगा कि अपने जो पत्तेदार सब्जियां विशेषकर उनका अपने आप स्वयं उत्पादन करें, अपने खेत में उत्पादन करें, ट्यूबवेल गार्डनिंग करें, और ताजी सब्जियों का पालक है, धनिया है, मिंट है, मरुआ है या साग सरसों है, ये चीजें चने का साग है, हालांकि शहर के लोग भी कर सकते हैं, किचन गार्डन के रूप में कर सकते हैं, अपने गमलों में अपने परिवार की आवश्यकता के अनुरूप अगर छत है या बालकनी में कम से कम पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि न्यूट्रिशन के बहुत अच्छे स्रोत हैं, इनको उगा सकते हैं, उगाया जा सकता है, कठिनाई होती है लेकिन उनका जब स्वाद आता है तो एक विशेष अनुभव होता है, गुणवत्ता युक्त सब्जी हमें खाने के लिए मिलती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने आज काफी विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से सब्जियों का प्रबंधन किया जाए और उसका कटाई और भंडारण के बारे में जानकारी दी, और निश्चित तौर पर इससे किसान भाई फायदा उठाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सब्जियों का सुरक्षित प्रबंधन तुड़ाई से भंडारण तक,
3: और प्रतिमा देखिए जानकारी तो हमें मिल गई है और आप सुनते हैं जयवीर की आवाज में ये रागनी।

0: अभी आप सुन रहे थे जयवीर की आवाज में रागिनी। और देखिए रजनीश, ये इस तरीके की जो रागिनी होती हैं कहीं ना कहीं हमारी लोक संस्कृति को भी इंगित करती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि कृषि की बातों के साथ साथ हम अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें। और अब हम जान लेते हैं मौसम का हाल।
0: बिल्कुल।

0: और देखिए मौसम की अगर हम बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अगर वर्षा की बात करें तो बारिश का कोई अनुमान नहीं है, यानी कि मौसम शुष्क रहेगा।
1: ये तो रहा मौसम का हाल, और आप जान लेते हैं मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह। इस मौसम में किसान धान के ब्लास्ट रोग का आक्रमण होने की निगरानी हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर करें। इस रोग का सूचक है पत्तियों में एक छोटी आंख जैसा धब्बा, जिसका अंदर का भाग हल्का भूरा और बाहर गहरे भूरे रंग का होता है। आगे जाकर अनेक धब्बे मिलकर एक बड़ा धब्बा बन जाता है।
0: और साथ ही किसानों को सलाह दी जाती है कि इस मौसम में अगेती मटर की बुवाई कर सकते हैं। बीजों को कवकनाशी कैप्टान या थायरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर उपचार करें। साथ ही हमारे किसान भाइयों को सलाह है, इस मौसम में फसलों और सब्जियों में दीमक का प्रकोप होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अतः किसान भाइयों को सलाह है कि फसलों की निगरानी करते रहें।
1: और प्रतिमा, अब बात कर लेते हैं कि आज आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों के क्या भाव रहे।
0: सब्जियों में आलू की बात करें तो इसका मूल्य रहा 15 से 18 रुपए प्रति किलोग्राम, और प्याज का मूल्य रहा 35 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम। वहीं टमाटर की बात करें तो ये रहे लगभग 35 से 40 रुपए प्रति किलो, और अगर हम कुकुम्बर यानी खीरा की बात करें तो इसका मूल्य रहा 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम।
1: फलों के भाव भी बता देते हैं। सेब का भाव रहा 100 से 120 रुपए किलो, वहीं केला बिका 25 से 30 रुपए किलो। अमरूद का भाव है 65 से 70 रुपए प्रति किलो, और वहीं पपीते का भाव चल रहा है 30 से 35 रुपए प्रति किलो। तो ये तो थे आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव।
0: और अजीज देखिए, हमारे कार्यक्रम में तमाम जानकारियां भी शामिल होती हैं, और इसीलिए हमें भी इंतजार रहता है कि हमारे किसान भाई बहन अपनी फीडबैक यानी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं।
1: हमारा ईमेल है feedback@gmail.com।
0: तो किसान भाई बहनों, सही जानकारी, परिश्रम, सही समय पर किया गया कार्य हमें गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ साथ चेहरे पर मुस्कुराहट भी देता है।
1: तो इसी मुस्कुराहट के साथ हम अपने किसान भाई बहनों से लेते हैं विदा। हमें अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। इस वक्त शाम के 7:35 होने वाले हैं। आइए लुफ्त उठाते हैं चंद गजलों का। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली गजल मिताली और भूपिंदर सिंह के युगल सुरों में।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद हुसैन की आवाज में ये गजल, और इस गजल के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

0: रात के 7:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने

0: सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को रवाना किया। कहा इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में किया शुभारंभ। औषधि नियंत्रण विभाग ने नकली रेबीज वैक्सीन की 481 यूनिट जब्त की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा, सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व गैंडा दिवस पर गैंडों के संरक्षण का आह्वान किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इन कार्यों से क्षेत्र में सड़क नालियों और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित थे।
1: नजफगढ़ की 7 अनधिकृत कॉलोनियों में करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से 10 अन्य विकास कार्य पहले से प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 58 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से नजफगढ़ की कॉलोनियों में सड़कें बेहतर होंगी, जल निकासी की व्यवस्था मजबूत होगी और बरसात के दिनों में जल भराव जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन कार्यों से बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ हजारों परिवारों का जीवन और सुगम होगा।
2: दिल्ली की रीडेवलपमेंट होने से लोगों का जीवन जो है सुविधाजनक होगा। आने वाले समय में ये रजिस्ट्री की फीस भी अनऑथराइज कॉलोनी में नहीं लगेगी। एक एक व्यक्ति को अपने मकान का स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा।
1: वहीं मीडिया से बातचीत में परवेश साहिब सिंह ने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 843 करोड़ रुपए की लागत से कुछ विकास कार्य पूरा कर लिया गया है, वहीं कुछ कार्य अलग अलग चरणों में जारी है।
3: आज 843 करोड़ रुपए के काम या तो हो रहे हैं या भी होने वाले हैं। हर जगह पर अच्छी सड़क, अच्छी ड्रेन, नालियां, गलियां, ये सारी सुविधाएं अभी होने वाली हैं।
1: उन्होंने क्षेत्र में शुरू हुए विकास परियोजनाओं को लोगों के दैनिक जीवन को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए रजनी शुक्ला।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नई दिल्ली क्षेत्र के पुनर्विकास और दिल्ली की जल व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की। इसी संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर चुनिंदा क्षेत्रों की पुनर्विकास योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नागरिक सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के साथ साथ नई दिल्ली की विशिष्ट विरासत और पहचान को सुरक्षित रखने पर बल दिया गया। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सज्जन सिंह यादव ने भी उपराज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान जल आपूर्ति, नालों से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन, नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य, सेफ्टीज सफाई मशीनों की तैनाती और यमुना के पुनर्जीवन सहित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, बल्कि आवश्यक सुविधाएं उनके क्षेत्र तक पहुंचे। इस अवसर पर दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे श्रमिकों को पंजीकरण के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनकी दिहाड़ी का भी नुकसान नहीं होगा।
4: हमारे मजदूर भाई बहन जो हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनके रजिस्ट्रेशन की एक सुविधा देंगे। इसीलिए हमारे मंत्रालय ने इस काम को जनता की सुविधा के अनुसार पूरा प्लान किया और आज जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं या लेबर चौक पे पाए जाते हैं, ये सारी वैन हर डिस्ट्रिक्ट में एक वैन हम देंगे। ऐसी 13 वैन चलेंगी और वो उन जगहों पे जाएंगी जहां पे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर अपना काम करते हैं।
0: वहीं श्री मिश्रा ने कहा कि मोबाइल वैन्स के माध्यम से श्रमिकों को उपलब्ध योजनाओं और उनके लाभों की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी।
5: यह वैन उनके कार्यस्थलों पर जाएंगी।

0: और वहीं पर इनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल भी किया जाएगा। किसी भी हमारी श्रमिक बहन भाई से संबंधित योजना उनके लिए अप्लाई करने का काम भी इन्हीं वैन के माध्यम से हो जाएगा और उनकी जानकारी देने का काम भी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में नवे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। नीदरलैंड्स और जर्मनी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में भागीदार देशों के रूप में शामिल हैं। ये आयोजन भारत और विदेश के शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और युवाओं के साथ साथ वैश्विक जल पक्षकारों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और सतत जल प्रबंधन में वैश्विक विशेषज्ञता के आदान प्रदान को सक्षम बनाना है। उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल जीवन और सभ्यताओं का आधार है। उपराष्ट्रपति ने इसके विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
3: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries.
1: इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने जल संरक्षण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
1: आकाशवाणी समाचार से एक विशेष बातचीत में भारत ने नीदरलैंड्स की राजदूत मारिसा गेहार्ड्स ने कहा कि जल सहयोग भारत नीदरलैंड्स रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है।
5: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 96 घंटे में 17 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने इन मामलों में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 6 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इनमें 8 मामले वाणिज्यिक मात्रा और 9 मामले मध्यम मात्रा से जुड़े हैं। पुलिस ने लगभग 45 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। एक अन्य मामले में भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के आवासीय परिसर से 10 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। औषधि नियंत्रण विभाग ने भागीरथ पैलेस स्थित एक फर्म से करीब 2 लाख रुपए कीमत की नकली रेबीज वैक्सीन की 481 यूनिट जब्त की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री

0: और पूरे गिरोह की जांच जारी है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने राजधानी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लोगों को मिल रहे नोटिस से संबंधित मामलों का जवाब दिया है। श्री सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मतदाता सूची या दस्तावेजों में किसी तरह की कमी या जानकारी के अभाव की स्थिति में निर्वाचन आयोग संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करता है और उससे आवश्यक जानकारी मांगी जाती है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने का मतलब मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाना नहीं है, बल्कि संबंधित मतदाता को अपने दस्तावेजों या विवरण से जुड़ी कमी को स्पष्ट करने का मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने वाले मतदाता 30 सितंबर तक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ के समक्ष अपना जवाब दे सकते हैं।
1: कोई भी नागरिक को, कोई भी वोटर को अगर ये लगता है कि उसका नाम एसआईआर प्रक्रिया से छूट रहा है, तो उसको पूरा चांस भी दिया जाता है कि वो अपने डॉक्यूमेंट को पूरा करके नोटिस का जवाब भी दे। 29 अक्टूबर तक ये पूरा स्क्रूटनी चलेगा, 4 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। उसके बाद भी अगर किसी का नाम नहीं आता है तो भी वो अपना नाम, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत समेत दुनिया भर में आज विश्व गैंडा दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य गैंडों की 5 शेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष का विषय है 5 शेष गैंडों की प्रजातियों को संरक्षित रखें। इसके अंतर्गत गैंडों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, शिकार रोकने और गैंडों के सींगों के अवैध व्यापार पर नकेल कसने का आह्वान किया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज विश्व गैंडा दिवस पर गैंडों के संरक्षण का आह्वान किया है। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि राजधानी में आज से नमो सेवा की अनकही कहानियां अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति विभाग तथा साहित्य कला परिषद की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मिश्रा ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली में लगभग 1250 स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग ने बताया कि कल आसमान साफ रहने की संभावना है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए की लागत से 7 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय से 4 मोबाइल नमो श्रमिक सेवा वैन को रवाना किया। उन्होंने कहा इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात्रि के 8 बज चुके हैं और आइए प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए श्रोताओं, गीतों के संगीत में सफर की शुरुआत करते हैं फिल्म परदेश के इस गीत के साथ सोनू निगम की आवाज में।

0: सरदीस फिल्म से सुन रहे थे ये गीत सोनू निगम की आवाज में। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर, हम रास फिल्म से उदित नारायण और साथियों की आवाजों में।
1: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में फिल्म बेवफा से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मलिका। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत फिल्म जीत से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में।

आप सुन रहे थे जीत फिल्म का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। तो आइए सुनते हैं अगला गीत सनम बेवफा फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत मलिका में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से अलका याग्निक और सोनू निगम की युगल सुर में।

श्रोतो, इस गीत के साथ ही हमारा आज का एक कार्यक्रम गीत मालिका यहीं पर समाप्त होता है। तब तक लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोता, आपसे कुछ ही देर में यानी 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए।

0: इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले दो दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता, पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता आनंद नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगिरेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकारु ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यानी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के

0: नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी. दैट वॉज एन एग्जाम्पल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है. श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया. उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी. उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है. नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है. उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी. गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरूद्व लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है. दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है. 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं. उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है. इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है. समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है. इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार मिला रही है.
3: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है. यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है. 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जैम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है.
4: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे. आज जैम पोर्टल जैम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके.
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जैम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है.
5: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है, पर आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं.
3: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3,000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म

0: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat. Honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award. Yami Gautam, Karthik Aryan and Mamuti received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Slams Islamabad for threatening regional peace and security. Prime Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Center Inks deals with 21 states and Indian territories for next phase of Udaan scheme, aims to develop 100 new airports and 200 helipads across the country. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. At Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking the medal tally to 7. Men's badminton team and Wushu star Rushibina Devi assure country of more medals. President Draupadi Murmu today conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, cinema reflects India's rich cultural diversity and adds

अखबार में सुन सकते हैं मीडियम में 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। सभी आपको बता दें फिर कुछ ही देर बाद यानी 9:20 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाएंगे चित्रा सिंह की गायी कुछ गैर फिल्मी गजलें। 9:50 खबरें निश्चित की जाएंगी और 9:55 पर सुनिएगा कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। रात 10 बजे पेश करेंगे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा। फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद आप सुन सकते हैं रात 10:30 से लेकर 11:45 तक। इस दौरान 11 बजे सुनिएगा खबरें बड़े सगीर से। आज 12:45 बजमी मौसीकी प्रोग्राम में सुनिएगा पंडित कुमार गंधर्व से राग सहेली तोड़ी में ख्याल। 12 बजे आलमी खबरें निशर की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिक की मौसीकी के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित अनंतलाल और हमनवाओं से शहनाई पर बजाया राग केदार। सदाबहार फिल्मी नगमों का लुत्फ आप ले सकते हैं रात 12:30 आखिर एशिया प्रोग्राम के तहत। ये प्रोग्राम जारी रहेगा 12:50 तक। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 1 बजे हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामीन ये था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

71 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेशे खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। आज के इस प्रोग्राम में समाप्त फरमाई चित्रा सिंह की गायी गजलें। आगाज कर रहे हैं सईद राही की इस गजल के साथ।

हम इसके साथ ही आज का गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार अब खत्म होता है। आज के इस प्रोग्राम में आप समाप्त फरमा रहे थे चित्रा सिंह की गाई कुछ गैर फिल्मी गजलें। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1073 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। शब के 9:45 बजे हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप तौहीद हक्कानी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में साल 2024 के लिए 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अदा किए। सरकर्दा कन्नड़ अदाकार अनंत नाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया, यानी गौतम कार्तिक आर्यन और ममूथी को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दिए गए। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमले की मजम्मत की है। उसने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरे के लिए पाकिस्तान की तनकीद की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 2029 तक भारत से मंशियात की गैर कानूनी तिजारत को खत्म कर देगी। मरकज ने उड़ान स्कीम के अगले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मुआहदे किए हैं। मुल्क भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड्स तामीर करने का हदफ रखा है। आइंदा दो रोज के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और एशियाई गेम्स में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने मुल्क का पहला सोने का तमगा जीता है, जिसके बाद तमगों की कुल तादाद 7 हो गई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर दिया है कि सिनेमा भारत की वसी सकाफती गुनागुनियत की अक्कासी करता है और ये मुख्तलिफ जबानों, इलाकाई नुक्ते नजर और जाम कौमी उमंगों को मजबूत करने के एक पुल के तौर पर काम करता है। गुजरात के एकता नगर में तारीखी 72वें कौमी फिल्म अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने अवार्ड हासिल करने वाले फनकारों और फिल्म साजों को भारतीय सिनेमा में उनके गैर मामूली तख्लीकी तआवुन के लिए मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय सिनेमा मुल्क के मुश्तरका ख्वाबों और समाजी सफर के इजहार में एक कलीदी रोल अदा करता है। तख्लीकी सनत में ज्यादा से ज्यादा शमूलियत और नुमाइंदगी पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने फिल्मों की ज्यूरीज और फैसला साजी के इदारों में खवातीन की ज्यादा शिरकत की वकालत की। सदर जमहूरिया ने मेहनत करने वालों के वकार के तहफ्फुज़ और कैमरे के पीछे काम करने वाले अमले के साथ मुनासिब बर्ताव की अहमियत को भी उजागर किया, जो फिल्म प्रोडक्शन की असल बुनियाद है। बाअसर फिल्मी शख्सियात से अपनी समाजी जिम्मेदारी को तस्लीम करने पर जोर देते हुए सदर मुर्मू ने सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देते हुए और नुकसानदा अशिया के इश्तहारात से गुरेज करते हुए उन्हें नौजवानों के लिए एक मुस्बत मिसाल किरदार के तौर पर खुद को पेश करने का मशवरा दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अदा किए, जिसमें साल 2024 के लिए सिनेमा में गरम कदर खिदमात के लिए फनकारों को आजाद से नवाजा गया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में नवी इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का इफ्तिताह किया। इस 5 रोजा तकरीब में आबोहवा के लिए पायदार पानी के बंदोबस्त के मौजू पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नीदरलैंड्स और जर्मनी इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 में शराकत दार ममालिक के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इसका मकसद बैनुल अक्वामी इश्तराक को फरोग देना और पानी के पायदार बंदोबस्त के सिलसिले में आलमी महारत के तबादले को यकीनी बनाना है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान खिताब में नायब सदर ने कहा कि पानी जिंदगी और तहजीबों की बुनियाद है और उन्होंने इसके मुनसिफाना इस्तेमाल, बचत और मुअसर बंदोबस्त की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई वाहिद इदारा, शोभा या सरकार अकेले पानी से मुतालिक चैलेंजों से निमट नहीं सकता और उन्होंने इस सिलसिले में ज्यादा इश्तराक और तालमेल पर मबनी तरीकेकार पर जोर दिया। नायब सदर जमहूरिया ने मजीद इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में कसीर फरीकी और कसीर रुखी तरीकेकार की जरूरत है, ताकि तकनीकी इख्तरा, माकूल पॉलिसी, साइंसी मालूमात, मकामी तजुर्बात और कम्युनिटी की शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली के सबब बारिश की सूरत हाल ज्यादा गैर यकीनी हो रही है और इसकी वजह से ज्यादा बारिश और ज्यादा तवील अरसे तक बिल्कुल भी बारिश न होने से निपटने के लिए तरीकेकार की जरूरत पेश आ रही है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जेर जमीन पानी को रिचार्ज करना, बारिश के पानी को जखीरा करना और मौसर आबपाशी पानी की बचत के जामे तरीकेकार लाजमी तौर पर हिस्सा होने चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि एक खुद मुख्तार हमसाये के खिलाफ जारहियत के ऐसे वाकयात इलाकाई अमनो इस्तेकाम के लिए खतरा हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के साथ साथ उसके अवाम की फलाह बहबूद के लिए भारत की फौरी मदद का आदा किया है। तर्जमान ने फिजाई हमलों में जान गंवाने वाले शहरियों के तई ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस बयान पर कि पाकिस्तानी मुसल्ला फोर्सेज दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुसलसल अहदबस्ता हैं, जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में कार्रवाई और पुख्ता आजम का मुजाहरा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की इससे पहले कि दुनिया उनके कहे पर यकीन करे, सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाई करनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर दाखला अमित शाह ने मंशियात की तिजारत के खिलाफ ये कहते हुए सख्त और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है कि मंशियात मुल्क और दुनिया के लिए एक संगीन खतरा है। आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सरबराहान की मंशियात के खिलाफ टास्क फोर्स की तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के नौजवानों के तहफ्फुज़ और भारत को मंशियात से मुबर्रा करने के लिए 2029 के लिए एक नक्शे राह तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि 2047

0: तक एक तरक्की याफ्ता भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन को भारत को हासिल करने के लिए मंशियात से मुबर्रा भारत का इंतहाई अहम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ताहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने आज नई दिल्ली में शहरी हवाबाजी की वजारत के साथ उड़ान यानी पूरे देश का आम नागरिक स्कीम के अगले मरहले के तहत एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने अगले मरहले के विजन को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने बताया कि स्कीम को मजीद 10 साल के लिए तौसी देने से हुकूमत का मकसद मुल्क में 100 नए हवाई अड्डे और 200 जदीद हेलीपोर्ट्स या हेलीपैड तामीर करना है। जनाब नायडू ने इस बात को उजागर किया कि 2014 में शहरी हवाबाजी के शोबे में तकरीबन 30 लाख मुलाजमतें थी जो बढ़कर आज तकरीबन 77 लाख हो गई है और 2040 तक इनकी तादाद 2.5 करोड़ होने की तवक्को है। जनाब नायडू ने बताया कि उड़ान स्कीम के तहत पिछले 10 वर्षों में 90 से ज्यादा हवाई अड्डे तामीर किए गए हैं जिससे तकरीबन 1.54 करोड़ मुसाफिरों को आरामदाह हवाई सफर की सहूलियत फराहम की जा रही है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन के दौरान इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है जबकि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तेज बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि कौमी राजधानी खित्ते के ज्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और बारिश का इम्कान नहीं है। भारत की खवातीन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में मुसलसल दूसरी मरतबा सोने का तमगा जीतकर अपनी बरतरी बरकरार रखी है। भारत की टीम ने आज जापान के जिशीन में फाइनल मुकाबले में 147 रन से जापान को फाइनल में 147 रन से हराया। इन एशियाई गेम्स में यह भारत का पहला सोने का तमगा है। अभी तक भारत ने कुल 7 तमगे जीते हैं। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में साल 2024 के लिए 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अदा किए। सरकर्दा कन्नड़ अदाकार अनंत नाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन और ममूती को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दिए गए। भारत ने अफगानिस्तान के कुन्नार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फिजाई हमलों की मजम्मत की है। उसी इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरे के लिए पाकिस्तान की तंकीद की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत 2029 तक भारत से मंशियात गैर कानूनी तिजारत को खत्म कर देगी। और मरकज ने उड़ान स्कीम के अगले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मुआहदे किए हैं। मुल्क भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड तामीर करने का हदफ है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन IR और DD फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से, आइए आज इस प्रोग्राम में सुनते हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के हवाले से डॉक्टर आशुतोष विश्वास से की गई ये गुफ्तगू।
2: मलेरिया जो है एक मच्छर जनित बीमारी है और मच्छर जो है जब बरसात के टाइम में होते हैं और ये मच्छर जनित बीमारी जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और जैसे जीका, बहुत सारे नई नई बीमारियां आजकल देखने को पा रहे हैं कि मलेरिया ये एक सीरियस बीमारी है और डेंगू, चिकनगुनिया और जीका और फाइलेरिया, बट इसमें जानलेवा जो है सबसे ज्यादा है मलेरिया है और कुछ डेंगू में भी होते हैं। चिकनगुनिया में कम है, जीका में कम है, कॉम्प्लिकेशन कम है। सिम्टम्स जो है इसका कैसे हम जाने कि डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, टाइफाइड है। अब जो डेंगू है ये आपको अचानक तेजी से बुखार होता है और एक खास बात है इसमें आपको हेडेक भी होगा थोड़ा बहुत और बदन में दर्द और चकत्ते जो है लालपन बॉडी में आपको शरीर में दिखाई देता है। और इसमें एक खास बात है कि जब 3 दिन के बाद इसमें 3-4

0: दो दिन छोड़ के आपको बुखार होगा, और ये डेंगू चिकनगुनिया लगातार आपको 24 आवर्स बुखार रहता है, तो ये एक आपको ध्यान देना है। हाँ, और डेंगू में आपको ध्यान देना है कि कहीं पे माइनर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, जैसे आपका यूरिन में हो सकता है खांसी के साथ, कभी आईज पे लालपन, और कभी कभी आपको जैसे उल्टी, खून की उल्टी, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो पहले ही आपको ये सब थोड़ा सा वार्निंग साइन बोलते हैं जिसको, हाँ ये पेट में दर्द, उल्टिया, ब्लड प्रेशर कम, डिहाइड्रेशन, खाना पीना थोड़ा सा कम हो जाना, ये जब अगर कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मलेरिया एक पैरासाइट है, और डेंगू, चिकनगुनिया और जीका एक वायरल डिजीज है। तो पैरासाइट और वायरस में यह डिफरेंस है, इसमें क्या होता है कि मच्छर काटने के बाद यह पैरासाइट दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद साइकिल रिपीट होता है, तो चार घंटा की पांच छह घंटा दिन में बुखार होगा, उसके बाद बुखार ठीक हो जाएगा, दो तीन दिन तक बुखार नहीं होगा। कभी कभी होता है कि डेली बुखार हो उसमें, बट मलेरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो लक्षण है वो आपका जैसे ठंड लग के बुखार होना।
1: अच्छा,
0: बुखार के साथ आपको तेजी से बुखार चढ़ता है और उसके साथ ठंड भी लगता है और थोड़ा सा बदन में दर्द, और दवाई आप लेते हैं तो इमीडिएट ठीक हो जाता है, और फिर दो दिन तीन दिन के बाद फिर चढ़ता है। तो ये हाँ, ये और डेंगू में अब बिना दवाई से कम नहीं होगा, चिकनगुनिया में बिना मेडिसिन से आपका बुखार कम नहीं होगा, बट मलेरिया में बिना दवाई से दो चार घंटे बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि जो मच्छर से बचे आप पहले, तो और कहीं पे भी मच्छर आप देखे तो उसको अटैक करिए, पनपने ना दे है, और बचिए कि कैसे आप मच्छर से, मच्छर काटने से बचे कि आप रिपेलेंट यूज करिए, फुल ड्रेस जो है कवर करके चलिए, ये मच्छरदानी में आप रहे है, और बहुत सारे जो प्रकार से हम मच्छर से फाइट करते हैं तो ये आप ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये है कि जब हम जब किसी को चिकनगुनिया अगर हो गया, जैसे हड्डी में दर्द, कमजोरी यार, तो ये तो एक ट्रीटमेंट का पद्धति है, ये तो स्टेप्स है
1: जी।
0: तो इसमें आपको पहले तो देखना होगा डॉक्टर इसको स्टेज बताएंगे कि क्या है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है। अगर सीवियर है तो पहले से आपको एक अच्छे डॉक्टर जो आर्थराइटिस है जो ट्रीटमेंट करते हैं एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, और पहले से आप अगर ट्रीटमेंट ले ठीक ठाक दवाई लेते हो, इसका कॉम्प्लिकेशन भी हम इसको कम कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं, ताकि यह साल दो साल तक ना चले। तो ये है आपका मेन, और आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे बीच बीच में थोड़ा सा ये होता है, दो तीन हफ्ते और मे बी टू थ्री मंथ्स बाद भी आपको ये फॉलोअप करना होता है।
2: सामने में आप सुन रहे थे कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: evening and welcome to Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. स्टूडियो में आज हमारे साथ श्रोताओं चर्चा करने के लिए विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
0: वेलकम सुषमा.
1: थैंक यू. आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23,350. आरबीआई एब्जॉर्ब्स नियरली 72,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम थ्रू ओवरनाइट variable rate reverse repo auction, estimates surplus liquidity in banking system to be over 4.9 lakh crore rupees. And global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 300

0: करोड़ अंकों से अधिक फिसला। निफ्टी 23,350 के नीचे बंद हुआ। रिजर्व बैंक ने ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो नीलामी के जरिए बैंकिंग सिस्टम से 72,000 करोड़ रुपए अंतर्लीन किए। बैंकिंग प्रणाली अतिरिक्त नकदी लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। और दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम घटे।
1: As a disclaimer, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और अब आइए जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। तो श्रोताओं, प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज 0.4% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 330 अंक गिरकर 74,529 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 85 अंक लुढ़ककर 23,329 पर स्थिर हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 सूचकांक में 0.1% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक 0.2% नीचे आया। इससे पहले बाजार सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण मामूली बढ़त के साथ खुले थे। हालांकि कारोबार के पहले ही घंटे में उन्होंने अपनी बढ़त गंवा दी और बाद में दोनों सूचकांक फिसलकर कारोबार करने लगे। बाजार ने दिन के निचले स्तर से उबरने की कोशिश की, लेकिन अंततः वे गिरावट के साथ बंद हुए।
1: Benchmark domestic equity indices ended 0.4% lower today. The Sensex lost 330 points to close at 74,529. The Nifty dropped 85 points to settle at 23,329. In the broader market of the National Stock Exchange, the Nifty Mid-Cap 100 index dipped 0.1%, while the Nifty Small-Cap 100 index declined 0.2%. Earlier, the markets opened with moderate gains supported by positive global cues. However, they surrendered their initial gains within the first hour of trading, with both indices subsequently moving lower. Although the markets tried to recover from the day's lows, but they ultimately ended in bearish territory.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 23 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक घाटे में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में बजाज फिनसर्व 1.5% से अधिक, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस में 1.5% तथा सनफार्मा में 1.3% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इटर्नल लगभग 2%, इंडिगो 1.5% से अधिक और टाइटन के शेयरों में 0.7% की वृद्धि हुई।
1: Sectors edged downward. Among the top losers, housing finance as well as focused IT lost 1%. Capital goods dropped 0.9% and IT fell 0.8%. In contrast, telecommunications climbed 1%, realty increased 0.8%, services rose 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,279 companies declined, 2,087 advanced and 215 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में आज 22 पैसे मजबूत होकर 95.59 रुपए पर बंद हुआ। सुषमा, हमने देखा कि बाजार ने जो आज अपने कारोबार की शुरुआत के सत्र की जो शुरुआत की वो हरी झंडी के साथ, लेकिन जब खत्म हुआ तो लाल झंडी थी। इस दरमियान क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसे क्रमबद्ध तरीकों से जो क्यूज जिसे हम कहते हैं वो नजर आए इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, जिसने इस तरीके की ट्रैजेक्टरी बनाने में मदद की?
2: देखिए, ये चार दिन के बाद ये बेरिश ट्रेंड फिर से आ गया और एक चीज तो जरूर है, इसको कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, ये भी है। और दूसरा ये है कि कुछ जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। हालांकि जुलाई और अगस्त में उन्होंने पैसा डाल दिया था इंडियन मार्केट में, सितंबर में खासकर वो बाहर निकाल रहे हैं। और एक वजह ये है कि एक तो उनको वैल्यूएशंस थोड़ी हाई लग रही है और दूसरा वो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गए हैं यूएस में और रेट्स उनको वहां वैल्यूएशंस वगैरह सब कुछ वहां ज्यादा मिल रहा है। तो मेरे

0: ख्याल में ये यहाँ पर जो ये जो माहौल आज का है वो इसी वजह से है। हालांकि फूड प्राइसेस नीचे आ रही हैं धीरे धीरे, फिर भी हमारे हमारे नजरिए में तो काफी हाई है, 98 डॉलर्स है, बिलो 100 डॉलर्स आ गई है।
1: क्षेत्रीय स्तर पर हमने बिकवाली देखी आईटी सेक्टर में।
0: हाँ, आईटी सेक्टर में अभी भी ये अगर आप देखें तो ये अभी भी ये एआई का जो असर है, ये जो डर लगा हुआ है कि हमारी आईटी कंपनीज बाहर के जो बड़े बड़े एआई जायंट्स के साथ कम्पीट ना कर पाए, वो जरूर ये आईटी क्षेत्र के ऊपर हावी है और ये कई दिनों से है, ये आज की बात नहीं है।
2: सो सुषमा, डिड एफआईआईज एंड डीआईआईज टुडे शो एनी क्लियर फ्लो पैटर्न that amplified the late session weakness?
0: Well, I think it's basically you are seeing this clear thing, even when the market was going up, that FIIs were pulling out and DIIs were, you know, still investing in the market. And this, of course, is sometimes, you know, analysts are analyzing this and puzzling over that. The fact is that FIIs have far more, you know, they can pick and choose in markets abroad. Their yield valuations are somewhat higher here. And of course, you are getting better rates, yields, bond yields have gone up. As far as Indian investors are concerned, they are looking at the long term. And, you know, if you know, these SIPs are going up, mutual funds, the numbers are going up day by day. And they are putting their faith in the long term growth story of this country. So I think there's a very different perspective of domestic retail investors as well as the foreign institutional investors, completely different outlook.
2: So how much was today's move F&O expiry driven versus fundamental risk off?
0: I would say it's largely expiry driven today because the you know, on the geopolitical front, you could see that, you know, the trends abroad have been better because there have been reports that probably the Strait of Hormuz may open in 7 days. Now we don't know, but these reports have come in, and therefore there was a sort of a feeling of cheer. Crude oil prices have come down below the psychological $100 mark, but despite this having happened, I think it is largely the expiry issue which has caused today's fall in the market.
1: Sushma, निवेश की क्या नीति होनी चाहिए इस संदर्भ में, जब हम देखते हैं कि जियो पोलिटिकल सीनेरियो जो वैश्विक परिदृश्य इतना अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, तो एक आम निवेशक क्या नीति बनाए अभी अगर वो बाजार में आना चाहता है तो?
0: देखिए, जो आम निवेशक है उसको तो लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस हाल में जो जियो पोलिटिकल टेंशन है उनकी वजह से मार्केट में बहुत ही वॉलिटिलिटी है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती है तो मार्केट गिर जाता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे जो जा रही हैं उनका असर है, क्योंकि इंडिया एक देश है जिसमें हम ज्यादातर अपने जो तेल की जरूरतें हम बाहर से लेते हैं, तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो अप्रैल के बाद जब से ये वॉर शुरू हुई है तो उसका भी बिल बहुत बढ़ गया है। तो ये जो निवेशक है उसको इस चीज से आगे देखना पड़ेगा, इसको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप शॉर्ट टर्म जो वॉलिटिलिटी है उसके ऊपर आप अपने जो बाइंग एंड सेलिंग के जो करने भर इसके ऊपर शॉर्ट टर्म पे ना करें।
2: If we were to look at the sectoral watch, how vulnerable are the rate-sensitive sectors like the realty, autos, and NBFCs if bond yields stay elevated?
0: They are, of course, going to be affected. But if you see, you know, sectors, for instance, like you mentioned, realty is doing well. It has rebounded. Auto is doing very well, and I don't think it's going to have much of an impact on auto because auto is driven largely by domestic consumption, although all exports have gone up a great deal. So I think these are two areas which are not likely to be affected as much by the global bond scenario.
2: So is banking and the energy, these two sectors, now the key anchors for stability?
0: Yes.
2: Or do they carry event risk with global rates and crude? Yeah, whatever is happening?
0: banking, of course, I would say certainly is an anchor, but energy, you know, has to face volatility. But at the same time, if you see the domestic oil producing companies, ONGC and Oil India, and even the oil marketing companies, they get the benefit of refining margins with high rates. So it's not that they are making losses throughout, because our pump prices are rather low and they are suffering. OMCs, oil marketing companies, are suffering under recoveries. At the same time, they are making money on what is known as the refining margins.
1: जो एक उभरता बाजार है, जैसा कि एक हमारा हम अगर अपने देश की ही बात करें, ऐसे परिदृश्य में हम कहाँ खड़े पाते हैं अपने आप को, कि जहां पर हम देख रहे हैं जी पॉलिटिकल तनाव इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट करता है, और सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है. मार्केट अपने आप में एक फैक्टर है ये देखने का कि ये सूचकांक है अपने आप में ये देखने का कि किस तरफ हमारी ग्रोथ स्टोरी जा रही है. ऐसे में हम अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं आपकी राय में?
0: आप मार्केट्स की बात कर रहे हैं
1: जी.
0: हाँ, तो देखिए, मार्केट्स जरूरी नहीं दिखाती है कि हमारी जो इकोनॉमी है कहाँ जा रही है. वो कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर निर्भर है, और वो जैसे आपने खुद ही कहा, सेंटिमेंट ड्रिवन होती है. तो अभी हाल ही में हमारा जो पहला क्वार्टर इस साल का 2026-27 में 7.8% ग्रोथ हुआ है, और ये भी उस वक्त जबकि ये यूएस ईरान का वॉर शुरू हुआ और हमें लगा कि शायद इतना अच्छा नहीं होगा. हाँ, और आगे वाले दिनों में हमारे बहुत चुनौतियां हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन है. अभी तेल की जो बात अभी हमने की है, तेल का जो के दाम बढ़ रहे हैं, हालांकि $100 से कम हुए हैं, लेकिन अभी भी 90 और 100 के बीच में है. इट इज अ वेरी वेरी हाई नंबर. तो हम इतना तो हम कह सकते हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन की वजह से और इन्वेस्टमेंट पिकअप की वजह से हम इन चीजों, ये जो एक्सटर्नल हेडविंड्स हैं
1: जी,
0: उनको काफी काफी जो देश हैं उनसे बेहतर इनको फेस कर सकते हैं.
2: सुषमा, इफ टॉक्स इन द यूएन डू नॉट लीड टू डी एस्केलेशन, व्हाट इज योर बेस केस ऑयल प्राइस पाथ ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर?
0: It's a very difficult question, because yes, if the UN talks do not lead to de-escalation, then certainly oil prices will go up. But we should hope that something will happen, because it is in the best interests of all concerned, all stakeholders, all the warring parties also, to ensure that prices are brought down to manageable levels, and also for Iran, which is blocking the Strait of Hormuz, and even the US, for Iran, they need to get their oil out there into the market, and they are having an economic crisis right now. So I think latest information, you know, reports are coming in that they may open up the Strait of Hormuz. There is a desire on both sides, but somehow there is always a spark that has arisen, and of course the entry of the Houthis into it has complicated matters. They are making attacks in Saudi Arabia, but one would hope that something would happen in the UN.
1: सुषमा जी, बाकी खबरों पर भी आपसे विवेचना करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे, मगर इससे पहले श्रोताओं, आइए रुख करें वैश्विक बाजारों की तरफ. आज एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक मामूली बढ़त के साथ 0.1% दर्ज किया गया, जबकि जापान का शेयर बाजार अवकाश के कारण बंद था.
2: मूविंग ऑन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई टुडे एब्जॉर्ब्ड 71,971 करोड़ रुपीज फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम थ्रू एन ओवरनाइट वेरिएबल रेट reverse repo VRRR auction. The operation was conducted to absorb surplus liquidity from the system and align overnight money market rates with the benchmark policy repo rate. According to an official release, the central bank fully accepted all bids received against a total notified auction size of 75,000 crore rupees. As per the RBI data, currently surplus liquidity in the banking system is estimated to be around 4.92 lakh crore rupees. In simpler terms, how would you explain it to our listeners?
0: Well, you know, this variable rate reverse repo is precisely what it, you know, what you say. It is a variable rate. It is not
2: a term.
0: Yes, it is not a fixed rate. And this rate is fixed through an auction and through competitive bidding. And banks submit bids stating the rate at which they want to lend money to the RBI, and the RBI accepts these bids. Now, the rate, as I said, is not preset, and therefore the banks are able to provide rates which are, you know, which are more attractive, and therefore they are able to mop up the excess liquidity. And this is one of the instruments that the Reserve Bank of India has formulated to mop up excess liquidity, and it has, of course, as you have pointed out, had tremendous success.
2: Okay. The Reserve Bank of India, RBI, said its special US dollar Indian rupee forex swap facility has received forex inflows of over 143.5 billion US dollars till September 18, 2026. According to the latest data, foreign currency non-resident bank FCNRB deposits accounted for the overwhelming majority, amounting to 132.98 billion US dollars. Meanwhile, overseas foreign currency borrowings, OFCBs, brought in 5.32 billion US dollars, and external commercial borrowings, ECBs, contributed 5.29 billion US dollars. The Apex Bank introduced the special USD-INR forex swap facility covering FCNRB deposits, ECBs, and OFCBs inflows on June 8, 2026, to boost the inflow of dollars amid a weakening rupee. The FCNRB deposit scheme was closed on August 31, 2026, while the facility for ECBs and OFCBs remain available until December 31, 2026. Sushma, quick comment on the forex swap data and how successful this has been.
0: This has been a tremendously successful scheme, and of course, so we all know that our foreign exchange reserves have gone up as a result of this, and also it has ensured that the rupee depreciation has been curbed. Rupee depreciation at least has been slowed down, and you know, we have had a strengthening of the rupee. So it's really been a win-win situation. And in fact, you know, the fact that it was closed on August 31st, I mean, it was much earlier than was it was supposed to, because the inflow was so huge.
1: अन्य खबरों में, अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के दूसरे चरण के सुधारों को आज एक वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में अप्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। नए कर ढांचे के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने चार स्तरीय व्यवस्था 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत को सरल बनाकर केवल दो स्तरीय व्यवस्था 5 और 18 प्रतिशत कर दिया। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के अंतर्गत पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करना आसान हुआ है, जबकि रिफंड की प्रक्रिया तेज हुई है और लागत में कमी आई है। इससे कारोबारियों, खासकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स के लिए प्रक्रियाएं जो हैं वो आसान हुई हैं। सुषमा, मैं आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी इस पर, किस तरीके से जीएसटी जो कर सुधार की जो व्यवस्था है उसने लाभान्वित किया है देश के नागरिकों को।
0: हाँ, तो आई थिंक दिस होल thing is linked to the other reform as far as UPI is concerned, and the merchant discount rate, which was supposed to, you know, the fee that was levied. The fee that was levied on UPI. ये अब तक तो हम सबको मालूम है कि UPI की जो facility है बिल्कुल बिल्कुल free थी, लेकिन अब इसके ऊपर एक समझ लीजिए एक tax समझ लीजिए एक charge है जो सिर्फ merchants को जाता है, सिर्फ जो small business के ऊपर लागू होता है, और वो भी transaction अगर 2000 से ऊपर हो। तो ये जो क्लैरिफिकेशन आज आया है, ये कहते हैं कि ये जीएसटी इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर, ये छोटे उद्योगपति और डिजिटल पेमेंट्स को और महंगा नहीं करेगा। हाँ, इनके ऊपर भार और नहीं पड़ेगा।
2: Securities and Exchange Board of India, SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey, highlighted the remarkable resilience and massive expansion of India's capital markets. Addressing a press conference, Mr. Pandey affirmed that SEBI's priority is to reduce avoidable friction and use technology intelligently while keeping trust at the center. He highlighted the Swagat F1 framework, which has fast-tracked the digital onboarding of over 200 trusted foreign investors since June this year. SEBI has also launched VMAT 2.0, a pilot project for the tokenization of corporate bonds using distributed ledger technology. The chairman also mentioned

0: जो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है यूएस और ईरान के बीच में, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, जब तक दूसरा स्ट्रेट जो है बाब अल मंडाब में अटैक्स हो रहे हैं वो यमन के हूती ग्रुप से, तब तक ये दाम तो बढ़ते ही जाएंगे। और ये जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता यूएस और ईरान और इसराइल के बीच में, तब तक मेरे ख्याल हमें यही ऊंचे ऊंचे स्तर पर तेल के दाम
1: We should hope so
0: because it's not just, of course, in India's case we know that we require a lot of food and therefore it's very expensive, but it is in everybody's interest. Even the US is feeling the pinch of higher gasoline prices at the pump. Iran is feeling the pinch because they're not able to get their crude out in the market, and they are facing economic problem of resources. So therefore everybody wants this war to end. Let's hope something happens.
2: भारतीय सलाफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.8% की गिरावट के साथ 1,52,136 रूपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.9% लड़ककर 2,32,922 रूपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सुषमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं आर्थिक सुर्खियों की तरफ।
1: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स below 23,350. RBI absorbs nearly 72,000 crore rupees from banking system through overnight variable rate, reverse repo auction, and global crude oil prices decline. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

सभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे हातिम ताई फिल्म का नगमा। मौसीकार थे एस एन त्रिपाठी। सुनिए ख्वाहिशमंद थी आप सब चंडीगढ़ से सतीश अनीजा और बिमला अनीजा, दिल्ली से इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी और रविंदर सिंह छाबड़ा, कोलकाता से राकेश पेट्रो और सानिका, उबई खेड़ा वाशी महाराष्ट्र से हीरमन खिलाड़े, सारिका खिलाड़े और सोनाली, और ये जनाब ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से मोहम्मद उमर रैना और इसरार अहमद, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग और सोनाली नारंग, अलीका दबाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, आखिरी जवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी और काजल, गांव लोगल ठाकरवाला से सरवण सिंघिल, दलजीत सिंघिल और राजदीप सिंह, केथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, सिद्धेश्वर नगर यावतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा राम टेके और शराबी राम टेके, भटवाड़ा छत्तीसगढ़ से इमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू, और ये जनाब मुल्लापुर दाखा से राजीव जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन, करनाल से बलविंदर सिंह सोडी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब। और समझ लीजिए, जब सुनिए सुमन कल्याणपुर और सुधीर सेन की आवाजों में एस एन त्रिपाठी की मौसीकी सजाए नगमा फिल्म है रानी चंद्रावती। सुनना चाहते हैं आप सब जमशेदपुर झारखंड से अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी और राकेश कुमार, जाफरगंज जहानाबाद से इंतजार अंजुम और आलमारा, और गंगवारा से जहरिया बेगम अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी और मोहम्मद अयान अंसारी, मंडू कटिल्ला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा, आसेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर, सिंधी बुजुर्ग महाराज से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर और पुन वडतकर, उत्तमनगर दिल्ली से कमला रानी, बुजराज खोरवाल और भानु प्रकाश, अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर और जयपाल यादव, मेहन जनाब आसरगांव बुल्डानमाला से संतोष एस काले और देवेंद्र भटकर, साथ में दादू माठे जी भी हैं, टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर देवी, रामताई डोंगर देवी और राहुल डोंगर दीवे, अमनगर चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, महनगर उमरखेड़ से विजीत गवाहनकर, श्रीमती सरिता गवाहनकर और अर्जुन गवाहनकर।

भूल न जाना। जी हाँ, ये है इस फिल्म का नाम जिसका नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में। मौसीकार हैं दान सिंह। सुनना चाहते हैं पहाड़ा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से रोशन बंछोर, चंद्र किरण और छाय बंछोर। मारूलवाड़ी महाराज से स्वपन तायरी, पी एस नावकर और वसंतराव भोजनी। और जनाब ये हैं कहां से इन्होंने मिलकर एक में जनाब मेल लिखे तो नाम के साथ कम से कम जगह जरूर लिखा कीजिए, जो कुछ दुश्वारी नहीं होती। सेक्टर कुटी सेक्टर 5 सोनी नगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कल्पित चौहान। लोरड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती और भुवनेश्वरी देवी। रघुवर बिल्लाम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम जैनब। आवास विकास कॉलोनी काजगंज से पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़ और सुरेश आशीष गौड़। खंडवा मध्य प्रदेश से साबरा शबाना और रईसा। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर गटे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। बड़े बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंदर विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा और सोनम विश्वकर्मा। लाल कुर्ती रोड की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा और निषाद वर्मा। पंडरकवड़ा जिला यवतमाल से अनिल, उषा बुरांडे, अनु श्री धनश्री बुरांडे। जनाब दुर्गा इसेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सीआर कुलकर्णी। रामोल्ला महलिंगापुर से अनुद्दीन बनाटी, मुमताज बनाटी और रियाज बनाटी।

और सेवन लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में सीएल रावल का लिखेगी जिसे मौसम की सजा है सोनी कोमी ने फिल्म है दिल ने फिर याद किया। सुनना चाहते हैं पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्रमोहन, ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और शकील अहमद इदरीसी, और जनाब ये हैं फातिमा कलून श्रीरामपुर महाराज से, नासिर शेख नादिर नासिर और साजिद शाहिद, शेरवानी स्कूल डंडनवारा से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी और गौरव सैनी, मुदला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आरती सुरलकर, और ये हैं जनाब सिद्धार्थनगर देवपुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले और सुशील येले, कृष्णा गौर के प्रशांत शिंदे और ऋषि शिंदे हैं, इनका मेल हमें मिला रविदास चौक पंडरपुर सिटी से, छत्रपति संभाजी नगर से मेल भेजने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, दीप राजेश और राशि राजेश, लाल मंदिर महसूल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम और रूबीना वसीम, साधु शाह राजस्थान से

राम कुमार रेवाल और चंद्रकला रेवाल, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत और किशुता सूर।

नूतन, किरण ठाकुर और संदीप गुगलानी जी, दतौंगी भटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, पोटियाला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू और शशांक साहू।

साल 2024 के लिए सिनेमा में ग्रां कद्र खिदमात के लिए फनकारों को एजाजात से नवाजा गया। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फिजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि खुद मुख्तार हमसाये के खिलाफ जारहियत के ऐसे वाकयात इलाकाई अमन इस्तेकाम के लिए खतरा हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के साथ साथ उसके अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भारत की फौरी मदद का आदा किया है। तर्जुमान ने फिजाई हमलों में जान गंवाने वाले शहरियों के तई ताजियत का किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस बयान पर कि पाकिस्तानी मुसल्लह फोर्सेज दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुसलसल अहद बस्ता है, जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में कार्रवाई और पुख्ता आजम का मुजाहरा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को इससे पहले कि दुनिया उनके कहे पर यकीन करे सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ मुअसर कार्रवाई करनी चाहिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात की तिजारत के खिलाफ ये कहते हुए सख्त और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है कि मंशियात मुल्क और दुनिया के लिए एक संगीन खतरा है। आज नई दिल्ली में रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सरबराहान की मंशियात के खिलाफ टास्क फोर्स की तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के नौजवानों के तहफ्फुज़ और भारत को मंशियात से मुबर्रा करने के लिए 2029 के लिए एक नक्श राह तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन को हासिल करने के लिए मंशियात से मुबर्रा भारत का हदफ इंतहाई अहम है। 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने आज नई दिल्ली में शहरी हवाबाजी की वजारत के साथ उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अगले मरहले के तहत एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने अगले मरहले के विजन को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने बताया कि स्कीम को मजीद 10 साल के लिए तौसी देने से हुकूमत का मकसद मुल्क में 100 नए हवाई अड्डे और 200 जदीद हेलीपोर्ट्स या हेलीपैड्स तामीर करना है। जनाब नायडू ने इस बात को उजागर किया कि 2014 में शहरी हवाबाजी के शोबे में तकरीबन 30 लाख मुलाजमतें थीं, जो बढ़कर आज तकरीबन 77 लाख हो गई है और 2040 तक इनकी तादाद 2.5 करोड़ होने की तवक्को है। जनाब नायडू ने बताया कि उड़ान स्कीम के तहत पिछले 10 वर्षों में 90 से ज्यादा हवाई अड्डे तामीर किए गए हैं, जिससे तकरीबन 1.54 करोड़ मुसाफिरों को आरामदायक फिजाई सफर की सहूलियत फराहम की जा रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। गेंडे राइनो डे के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए सींग वाले गेंडे निहायत अहम हैं और वो तमाम लोग एहतराम के काबिल हैं जो इसके तहफ्फुज में लगे हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि आसाम दुनिया में पाए जाने वाले एक सींग वाले गेंडों में 80% का घर है और उनके शिकार को कम करने के लिए काजीरंगा की कोशिशें काबिल सताइश हैं। भारतीय फिजाई और जापान के फिजाइये के दरमियान वीर गार्डियन 2026 के नाम से बाहमी फिजाई मश्क आज उदयपुर के एयरफोर्स स्टेशन में इख्तिताम पजीर हुई। वजारत दिफा ने बताया कि 14 दिन तक चलने वाली इस मश्क में दोनों फिजाइये के दरमियान अहम शराकतदारी को मजबूत करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया गया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के जापानी मेंबरान पार्लियामेंट के एक वफद से मुलाकात की। वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि फरीकैन ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी रवाबित को एक मुस्बत रुख देने पर तबादले ख्याल किया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने आज भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारती समझौते के मौसर निफाज पर तवज्जो मरकूज करते हुए यूरोपीय पार्लियामेंट के वफद के साथ एक तबादले ख्याल किया। मीटिंग के दौरान साइंस टेक्नोलॉजी और उभरती टेक्नोलॉजी में तआवुन को मजीद बेहतर करने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर डॉ सिंह ने कहा कि एफटीए सनअतों लोगों और हुनरमंद अफराद के लिए नए मौके खोलेगा और भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कसीर रुखी अहम शराकतदारी को रफ्तार बख्शेगा।
پاکستانی خواتین کے حقوق کی تحریک عورت مارچ نے آج پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے گھر کے لوگ جس میں ان کی بہن بھتیجی بھتیجا اور بچے شامل ہیں کو گرفتار کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے. عورت مارچ کی خواتین نے حکومت کے اس قدم کو خوفناک قرار دیتے ہوئے خاموش احتجاج درج کرایا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے خاندان کے لوگوں کو گرفتار کیے جانے کا مقصد پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے حامیوں کے ذریعے اسلام آباد کی سڑکوں پر ہوئے احتجاج کو کمزور کرنا ہے.

सौम्या रहगांव के अमरावती महाराज से दिलीप रामेकर, हर्ष रामेकर और अक्षय रामेकर, शेषगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नईम इदरीसी और नदीम इदरीसी, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, और जनाब ये है शायद मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम, लेकिन असली कई कई लोग मेल भेजते हैं इसलिए दादा जी इन रोड खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद हसनैन हस्तु बाबा और सफी अरहान खोकर तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबख्श बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना नामदेव यावतपाल, येताला महाराज से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल और शुभम प्रसाद जायसवाल।

और अब सुनिए रिश्ता फिल्म का नगमा तलत महमूद की आवाज में, नगमा निगार पंडित फानी, मौसीकार एन दत्ता। सुनना चाहते हैं सनावत वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद शादाब खत्री। साईनगर आरवी महाराज से, अच्छा देखिए इन्होंने फिल्म भेज दिया। मैं एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं भाई,

एक मेल भेजिए, आपका सबका शामिल होगा। इस तरह से आप मेल भेजते हैं, देखिए टाइम आप लोगों का वेस्ट हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, और कम मेल पढ़े जाते हैं फिर आप लोग परेशान होते हैं। रघुवी नगर दिल्ली से जफर मौजम शेख, फलक तबसुम शेख और बेबी अलसिबा शेख, कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद रुकनुद्दीन मंठाल, शब्बीर बन्नटी और आसिफ इकबाल, राजवंत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाहजहांपुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित, शिवजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, उमर ताम्रकार और दिलीप वर्मा, बलाला जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर और जयप्रकाश राहुल, और यही जनाब गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और बीबी कार्तिकी, रेलवे रोड डंडनवाड़ा से नजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा गाजी और मोहम्मद कलीम जख्मी, जारा नागपुर से अनिल कोहले, छाया कोहले और प्रियांश कोहले, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से मिथिल नचानी, रमेश नचानी और भारती नचानी, गांव फरासी स्थल से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी और पुष्पेंद्र कुमार डोडी, संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल वफार डावर, अब्दुलर डावर और जियाउलर डावर, पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र जुनेजा और सीमा जुनेजा, और यह जनाब अजमेर शरीफ राजस्थान से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा हाशमी और मोहम्मद असलम हाशमी। आप तमाम की पसंद आपकी नजर है।

Pasalnya jep suni Mukesh ki awaz ni dua duran film ke nama nama ni gar Indiwar Mausikar Kalyan ji Anand ji सुनने के ख्वाहिशमंद हैं रमजा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्री मास्टर अलीम पटेल मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल जेलोड आए अच्छा देख ही ले चुका हूँ अस्तपुर निलामों से मजहरन अंसारी रजे बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी आजाद नगर अक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राय और महराज जहां बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद खाजीपीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद नजीब खान और मंजू शरफ और जनाब ये हैं पांडरम चेन्नई से शाहिद अली इफत फारूकी और हिफ्जा अली खादर गंडोर गंडोडवारा से शादाब शमशाद अंदलीप खानम और सारा फातमा शेख निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई मतीन भाई और शेख चांद फारूक अमीर खुसरो रोड गंडनवार से डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम शबनम अनवार और भवन प्रकाश गौतम मोहल्ला नवगछिया बिहार से इसराइल अंसारी सीरत अंसारी और मुमताज कोई नंदेल माधव सिंह नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ और ओमकार गायकवाड़ नाला सुपारा मुंबई महाराष्ट्र से मोहम्मद आसिफ शेख मोहम्मद नौमान शेख और मोहम्मद सुलेमान शेख भट्टापारा छत्तीसगढ़ से बचकामल मोतीलाल यादव और बसंत भुर्गो मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी मंगलगेट मलकापुर से रमेश वल तलेकर वंदना तलेकर और भारती ठाकुर और ये हैं जनाब कहां से अच्छा गिरिडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अंजाद सायमा नवाज और हसन नवाज

0: प्रीमियम में 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामीन शब का एक वजह चाहता है, हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती है। सुबह 9:30 पर अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।
1: साथ में भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुअल लेनिन से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की, जिसमें खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। Expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और BB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: भारत और जापान ने रक्षा तकनीक में सहयोग बढ़ाने, संयुक्त सैन्य अभ्यास और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जापान के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तारो कोनो के नेतृत्व में आए जापानी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत हुई। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मैन सिन को 5-0 से शिकस्त

0: defeating hosts Japan by 2 runs in a rain-curtled 5-overs-a-side one-off T20 international match at Sano yesterday. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued red alert for extremely heavy rainfall over isolated places in Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. For Delhi, IMD said the national capital will witness mostly clear skies with no rain. And that is the end of this news bulletin.
1: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर मध्य रात्रि के 1:10। अब कार्यक्रम गीत सुनहरे आपको सुनवाएंगे। इस कार्यक्रम में पुराने फिल्मी नगमे, जी हाँ, और इस सफर पर हम चलेंगे पुराने गीतों के जरिए, उन यादों को, उन लम्हों को याद करेंगे जब इस तरह के गीत लिखे जाते थे और हमारे दिलों में जो आज भी बसे हुए हैं उनको गुनगुनाएंगे। मैं हूं कीर्ति आपके साथ। शुरुआत कर रहे हैं इस गीत से जिसमें आवाज है मन्ना डे की।

अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म पतीता से, जिसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत से पिरोया है शंकर जयकिशन ने। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में ये गीत।

सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अगला गीत जो आप तक आने वाला है वो है फिल्म आर पार से। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत ओपी नैयर ने दिया था। आइए सुनते हैं गीता दत्त के स्वर में ये गीत।

और अब पेश है 1991 में आई फिल्म अलबेला से अगला गीत लता मंगेशकर, चितालकर व अन्य आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के लिखा गीत है और संगीत सी रामचंद्रन ने दिया था।

आपका कोई दोस्त है, मित्र है, वो आपके लिए कोई कुछ काम कर दे, तो आप उसको क्या कहेंगे? धन्यवाद। और कोई आपके बहुत खास दोस्त है, तो आप उनको क्या कहेंगे जब आपके लिए वो कुछ काम कर दें, आपकी कोई सहायता कर दें? उनको भी आप दिल से धन्यवाद करेंगे, लेकिन मस्ती में आप कह सकते हैं कि एहसान तेरा है मुझ पर। तो समझ गए आप मैं कौन सा गीत आपको सुनवाने वाली हूँ? जी हाँ, फिल्म जंगली से आ रहा है, एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये खैर मजाक की बात है, पर हम इस गीत को सुनवाने जा रहे हैं। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के लिखे बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। अगला गीत फिल्म अमर प्रेम से आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत आर डी बर्मन साहब का। आइए सुनते हैं रैना बीती जाए।

अब ये गीत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से किशोर कुमार की आवाज में, अनजान ने इस गीत को लिखा था और संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया है।

और अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवाने वाले हैं, जो आपके और हमारे दिल की बात है। जी हाँ, बोल हैं अभी ना जाओ छोड़कर, फिल्म हम दोनों से मोहम्मद रफी की आवाज और साथ में आशा भोसले। साहिर कर लिखा गीत है, संगीत से पिरोया है जयदेव ने। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। हमारे अन्य कार्यक्रम आप सुन सकते हैं या लाइव न्यूज 24 चैनल 7 चैनल पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: क्षेत्रीय भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विदेश मंत्रालय की सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में वैश्विक शासन और उभरते देशों के लिए फ्रांस के विशेष दूत एमैनुअल लेनिन से मुलाकात की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर चर्चा की, जिसमें खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन पर बल दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। यह समझौता श्री ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड में अमरीकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की घोषणा के कुछ दिन बाद हुआ है। समझौते के तहत ग्रीनलैंड डेनमार्क के नियंत्रण में ही रहेगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौते के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। उन्होंने व्यापार संपर्क मंच का भी जिक्र किया। अभिनेत्री रानी मुखर्जी की मां और पार्श्व गायिका कृष्णा मुखर्जी का आज मुंबई में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यशराज फिल्म्स ने परिवार की ओर से निजता की अपील की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत एक स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्यरात्रि के 2:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बहार। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। जी हाँ, और मिलकर हम आनंद लेते हैं ठीक 3 बजे तक। तो चलिए निकल चलते हैं इन गीतों के सफर पर और आनंद लेते हैं।

0: द्रौपदी मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने नई दिल्ली में हितधारकों की एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें कारोबार को आसान बनाने, मुक्त व्यापार समझौतों के अवसरों और व्यापार से जुड़े सुधारों पर चर्चा हुई। कार्यशाला में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हुए। श्री गोयल ने निर्यात को आसान बनाने की सरकार की योजना पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय वायुसेना के बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण इस महीने की 26 तारीख से 12 अक्टूबर तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन और आसपास के हवाई अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य प्रतिभागी देशों को वास्तविक समकालीन युद्ध क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभियानों की योजना बनाने और उन्हें संचालित करने का अनुभव देना तथा सामरिक रूप से व्यवहार समाधान तलाशना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक में सुरक्षा मजबूत करने के लिए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग हुए इस कार्यक्रम में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। नेहरू तारामंडल प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय आज विश्व दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी इराटोस्थनीज प्रयोग का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य युवा विद्यार्थियों में जिज्ञासा, अवलोकन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का विषय है एक सूर्य अनेक परछाइयां एक पृथ्वी। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि देश और दुनिया भर में आयुर्वेद संस्थान, चिकित्सक और इससे जुड़े अन्य लोग समारोह में भाग लेंगे। इन कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक मंच पर लाना और ज्ञान का आदान प्रदान बढ़ाना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat yesterday. Addressing the film fraternity, President Murmu said cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations.

श्रोताओं, ये गजल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की मधुर आवाज में। आइए सुनते हैं ये दो गजलें उनकी पत्नी चित्रा सिंह की मधुर आवाज में।

इसी के साथ श्रोताओं, गजलों और गीतों के कार्यक्रम के इस कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल हरिहरन की मधुर आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4:20। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आश्विन मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 सितंबर सन 2026। सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुन सकेंगे। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुनेंगे। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे सबसे पहले भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर रामचरितमानस। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 57। 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। सुबह 7 बजे आप हिंदी समाचार सुनेंगे और 7:05 पर अंग्रेजी समाचार। सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर समय होगा कार्यक्रम गीतों भरी का। 8 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 8:15 पर अंग्रेजी समाचारों का। सुबह 8:30 पर आप सुन सकते हैं उर्दू समाचार। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर गंगा। ये समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का और 9:15 पर आप सुनेंगे साइंस मैगजीन। सुबह 9:30 पर समय होगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का और 10 बजे आप हिंदी समाचार सुन सकते हैं। 10:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकेंगे और 10:10 पर समय होगा कार्यक्रम आपकी पसंद का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार संसार सफल गंगा

रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ करे मन वंश जाकी शरणं सत गुर गुर सेव अलख

ਕਰਮ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ ਗ੍ਰਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਨੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਾ

ਤਨ ਤਰੋ ਸਮੁੰਦਰ ਉਦਰ ਖਿਨ ਇੱਕ ਮਹ ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਾਗ ਰਚਾ ਕੁੰਡ

गुरु साहेब सब ऊपर मन बच क्रम सेविया सच्चा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन बच

0: बाहों का बड़ा तमाशा, गुरमुख संगत सब विचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
1: क्या खेल बड़ मेल तमाशा,

0: वाहे गुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन प्याल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना, माने ब्रह्माद रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाये परमारथ सत संगत से ती मन खचना, किया खेल बड़ मेल तुमासा, वाह गुरु तेरी सब रचना।
1: अगम अनंत अनाद आद जिस को न जाने, सिर्फ बिरंच धर ध्यान निधय जिस बेद बखाने, निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, भंजन गलन समत तरन तारण प्रभ सोई, नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रसै, श्री सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चित है बसै।
2: गुरु समरथ गह करिया त्रु बुद्ध समत समारन को, पुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन को, मथुरा जन जान कही जी साच सो और कशु न बिचारन को, हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पव सागर पार उतारन को,
3: निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर अथायत बड सुपर सदा सब विदरत नागर, संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर, काल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर, हम अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिख बिखाई, माया मोह परम पै भूले सुत
4: प्रीत लगा,
3: उत्तम पंथ सुन गुर संगत है मिलंत जम त्रास मिटाई, एक

दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए।

Ramana Malini.

राम कर सनेही ताज परम करम वेदन।